मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की पहली तिथि, तदनुसार 23 अगस्त सन 2026 ईस्वी प्रातः के 5:50 होने को हैं। क्षमा करेंगे, प्रातः के 5:48 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी पहली सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, सुनते हैं चिंतन।
1: जितना सरल है हमने उसे उतना ही जटिल और बोझिल बना लिया है। हम उसकी सरलता को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे अहंकार ने और हमारी लिप्सा ने जटिलता को ही जीवन का स्वभाव बना दिया है। जीवन और दुनिया में सरलता तो तब दिखाई दे जब हमारी जरूरतें सीमित हों, हमारे जीवन में संतोष हो और हम थोड़ा में भी तृप्त महसूस कर सकें। लेकिन आधुनिक जिंदगी में हमारी जरूरतें ही नहीं, इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। बेहतर घर, ऊंचा पद, हम ज़्यादा सुंदर दिखना चाहते हैं, इसके लिए तरह तरह के जतन करते रहते हैं। हम चाहते रहते हैं कि हमारी व्यक्तिगत पहचान हो, समाज के बड़े लोगों से हमारी मित्रता हो, और एक इच्छा पूरी होती ही है कि नई इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं, और इस चक्कर में हम उन खुशियों से दूर होते जाते हैं जिसे प्रकृति ने सहज रूप से हमें भेंट स्वरूप दिया है। आपने बिना कारण के तनाव मोल ले लिया है और खुशियों की ताज़ा हवा को आने से रोक दिया है। हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से मापते हैं, अपने बच्चों की दूसरे के बच्चों से तुलना करना, अपने पारिवारिक संबंधों में तनाव के अवसर इसलिए ढूंढ लेना और परेशान रहने लगना कि हमने तो इसे इस रूप में नहीं चाहा था, हमारी जिंदगी की सहजता को छीनकर असहज बनाता है। दूसरों से खुद की और अपने परिवार के लोगों की तुलना करने की आदत को सोशल मीडिया ने और भी बढ़ाया है। आज के दौर में सबको ज़्यादा चाहिए, कोई भी चीज़, कोई भी उपलब्धि आज पर्याप्त नहीं, और सरल जीवन को अक्सर असफलता या पिछड़ापन समझ लिया जाता है। हमारा मन हमारे भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है। सुरक्षा, भविष्य की योजनाएं, बीमा, बैकअप प्लान, किसी का इस तरह सोचना स्वाभाविक है, लेकिन जब इसका दबाव ज़्यादा होने लगता है तो हमारी शक्ति छिन जाती है और भविष्य की अनिश्चितता में हम वर्तमान का सुकून खो देते हैं। वर्तमान में रहना ही सरलता है। जो बीत गया उसका क्या रोना, और जो आने वाला है वह भविष्य के गर्भ में है, मगर हमारी पकड़ में हमारा वर्तमान तो है, उसे बेहतर बनाना हमारे वश में है। बहुत से लोग मानते हैं कि रिश्तों की गर्माहट में, कीमती चीज़ों में, उपहारों और उपलब्धियों में खुशी छिपी होती है, मगर ऐसा नहीं है। चीज़ें तभी तक सोने और हीरे जवाहरात की तरह कीमती लगती है जब तक वह उपलब्ध नहीं होती, हाथ आते ही मिट्टी हो जाती है। इनके मिलने के बाद भी मन का खालीपन दूर नहीं होता और हमारी मांग बढ़ने लगती है, और वर्तमान में जो खुशी उपलब्ध थी वह गायब हो जाती है। वर्तमान में रहना ही सरलता है, और वर्तमान को नियंत्रित करने का प्रयास भविष्य में जीना है। आजकल लोग हर क्षण व्यस्त रहना चाहते हैं। व्यस्त रहना हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। खाली समय को बेकार समझा जाता है, मगर सरलता अक्सर उसी खालीपन और शांति में दिखाई देती है जिसे हम लगातार भरने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम धन की कामना न करें, उसके लिए कोशिश और मेहनत न करें? क्या हम फकीरों से ज़िंदगी जीने लगें और सारी भौतिक सुविधाओं से मुंह मोड़ लें? नहीं, ऐसा करना खुद को और जटिल और असामान्य बनाना होगा। बस इस पर ध्यान देना जरूरी है कि हमारी ज़रूरत क्या है

0: और हमारी इच्छा क्या है? इच्छा को जरूरत पर हावी नहीं होने देना ही सरलता है। कम चीजों से ज्यादा गहराई से जोड़ना और चीजों को समग्रता में समझना, अपने अंदर के शोर को कम करना। हमारे यहाँ कहा गया है, सादा जीवन उच्च विचार। यह वचन बहुत कीमती है। महात्मा गांधी की आधी धोती कीमती से कीमती राजसी परिधान पर भारी हो जाती है। महावीर ने अपरिग्रह की बात की है, तो बुद्ध ने भी यह समझाया है कि सारी जटिलताएं हमारे मन के बनाए हुए अर्थों से आती हैं, जिसे हम अपने अहंकार से बड़ा और बड़ा करते रहते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख एवं वाचन श्याम भास्कर का था। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनते हैं कृषि चर्चा। इसके अंतर्गत आज हम सुनेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित चर्चा। आलेख एवं वाचन मिहिर कुमार झा का है।
2: किसान भाई लोग के नमस्कार। आजुक कृषि चर्चा के संग हम मिहिर कुमार झा अखन अपना सब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चर्च करब। किसान भाई लोग अपना सब के बुझल है जे भारत कृषि प्रधान देश है। अपना सब के एहिठाम अधिकांश लोग कृषि कार्य क के अपन जीवन यापन करे छे। किसान भाई लोग अपना सब के देखल बुझल गमल है जे किसानक जीवन निस्वार्थ समर्पण से ओत प्रोत रहित है। एहि लेल न किसान के अन्नदाता सेहो कहल जाय छे। किसान भाई लोग परंतु ई विचारणीय विषय त छै के न एतेक पैघ जिम्मेदारी उठेनहार किसान भाई लोग के घर में पूर्णतया खुशहाली के प्राय अभाव देखबा में अबैत ई त वएह गप भेल जे महादेव के देवों का देव कहल जाय छन। यथार्थ सत्यो छै, परंतु महादेव के तो इहो कहल जाय छन तीन लोक बस्ती बसा के आप बसे बीराने में। कहबाक अभिप्राय हमर ई अछि जे किसान भाई लोग अपना सब एतेक मेहनत क के खेत के नीक जकां जोतै छी, ओकरा नीक तरह तैयार क के माटि के हल्लुक भुरभुरा बना के जैविक उर्वरक द के नीक उपचारित बीया के बाउग करै छी, फसल गाछ नीक जनमैत अछि। एतेक प्रक्रिया में अपना सब के कतेक मेहनत समय आ लागत लगैत अछि। एकर बादो जँ प्राकृतिक आपदा कीड़ा मकोड़ा आ फसलक गाछ में कतेको प्रकार रोग के कारणे फसलक गाछ खराब भऽ जाइत अछि वा जखन फसल तैयार भऽ जाइत अछि अर्थात फसल गाछ में पाकि गेलाक बाद खेत से फसल काटि के खरिहान में लाक बादो अत्यधिक बेमौसम बरखा के कारण एहि तरह कोनो प्राकृतिक आपदा के कारण जँ किसान भाई के नुकसान होइ छनि तऽ किसान लोकनि के वित्तीय सुरक्षा आ के मुआवजा देल जाइत अछि। किसान भाई लोकनि ई वित्तीय सुरक्षा आ मुआवजा के सुनिश्चित करबाक लेल भारत सरकार एक गोट योजना 2016 में अनलक। एकर नाम छै प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एहि योजना के मुख्य उद्देश्य छैक जे प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होयत तऽ किसान भाई सबके फसल के लागत अनुरूप वित्तीय सुरक्षा मुआवजा देल जाय। किसान भाई लोकनि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य उद्देश्य अछि, एकर विशेषता ई अछि जे जोखिम कवरेज। एहिके तहत फसल बाउग सँ लऽ कऽ कटाई के बादो सब चरण में प्राकृतिक आपदा जेनाकि सूखा बाढ़ ओलावृष्टि चक्रवात एहि सब तरहक कोनो आपदा के कारण फसल के नुकसान वा सुरक्षा करब। किसान भाई लोकनि ई फसलक नुकसानक भरपाई के लेल भारत सरकार ई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रहल अछि। एहिसँ किसान भाई के फसलक नुकसान सँ आर्थिक बोझ नहि के बराबर होइत छनि। किसान भाई सरकार फसलक नुकसानक आकलन के लेल तकनीकी सहायता के माध्यम जेना उपग्रह सेटेलाइट ड्रोन आ स्मार्टफोन ऐप के इस्तेमाल कऽ नुकसानक आकलन जल्द कऽ के मुआवजा के आर्थिक रूप में भेटैत अछि आ किसान के खाता में चलि जाइत छै। किसान भाई लोकनि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार किसान भाई सँ बड़ कम नहि के बराबर प्रीमियम रखने अछि जे किसान के देय होइ छै। किसान भाई लोकनि खरीफ फसलक वास्ते प्रीमियम दर 2% अछि तऽ रवि फसलक लेल 1.5% आ बागवानी वाणिज्यक फसलक लेल 5% प्रीमियमक दर किसान भाई के देव जाइत छनि। औरो बाकी प्रीमियम सरकार दैत अछि। पुनः बीमा कंपनी किसान के लेल सब किछु जोड़ि जाड़ि के मोट रकम किसानक बैंक के खाता में हस्तांतरित कऽ दैत अछि। किसान भाई लोकनि ई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से खेती पथारी में जोखिम के भरपाई कऽ दैत अछि, जाहिसँ किसान भाई लोकनि के अपन खेती पथारीक निष्पादन नीक रूप से अनवरत कऽ

0: अपन खेती पथारी के काज में मस्त रहित छथि। अखन एतबे, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस विषय पर ये कृषि चर्चा। आलेख एवं वाचन मिहिर कुमार झा का था। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती किरंगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री सिंह ने CBDT बेलापुर स्थित कपड़ा पुनर्चक्रण सुविधा TRF का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रतिमाह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसीलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को नवी मुंबई नगर निगम के साथ हुए समझौते के समान अन्य नगर निगमों के साथ भी समझौते करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा AIAPGET के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। NTA ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मेसर्स एडुकेटिव का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 उम्मीदवार परीक्षा पूरी नहीं कर सके। NTA ने सूचित किया कि प्रभावित छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर में आयोजित की जाएगी। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी BYC ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे साकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित उदारा शक्ति 2026 अभियान शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोग

0: को बचाया जा चुका है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वेगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम चार में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरा दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अलका। डॉक्टर अलका, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताइए कि दांतों में जो कैविटी है, इसका मुख्य कारण क्या है? उससे पहले आप ये बताएं कि कैविटी क्या होती है।
3: सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो हमारा दांत है, शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है
2: जी,
3: फिर भी कभी कभी इसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिनको आप कैविटी कहते हैं या खोदर कहते हैं या कीड़ा लगना कहते हैं आम बोलचाल के भाषा में।
2: अच्छा, दांतों में छेद होना या उसका कीड़ा लगना, उसको कैविटी कहते हैं।
3: हाँ
2: ठीक है। इसके ये क्यों होता है ऐसा?
3: हमारे दांत में जो है मिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। दांत जो हमारा है कई मिनरल से बना है, इसमें जो प्रोसेस चलते रहता है वो कंटिन्यू ऐसे चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप खाना खा रहे हैं और उसके खाने के जो कण हैं आपके दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं, फिर वहाँ पर बैक्टीरिया पनपने लगता है। वो बैक्टीरिया और मुंह का जो एसिड होता है अम्ल, जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड, वो दोनों के कारण
2: दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, मतलब एसिड की वजह से।
3: एसिड के कारण क्षरण शुरू हो जाता है। अच्छा, जो आपका इनर मेल है वो खत्म होने लगता है।
2: जी जी जी।
3: और इसके कारण वहाँ पे आपको छोटा सा छेद शुरू होता है जो फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अच्छा, अगर इसको कंट्रोल ना किया गया
2: तो उसी को कैविटी कहते हैं।
3: जी।
2: तो उसका कारण क्या है? उसका
3: आपके इनर मेल का डीमिनरलाइजेशन होना,
2: यानी कि खान पान की कमी की वजह से। कुछ लोग क्या खान पान की गड़बड़ी से होता है ये दांतों में?
3: नहीं, आपके मुंह में जब पीएच बैलेंस 5.5 से कम हो जाता है,
2: अच्छा,
3: तो वहाँ पे डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस से तेज हो जाता है।
2: तो ये जो आपने कहा पीएच वैल्यू 5 से कम हो जाता है, इसका कारण क्या? कुछ तो कारण होगा।
3: इसका कारण है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें एसिड ज़्यादा है।
2: अच्छा, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है।
3: और मुंह में आपके जो गंदगी के कारण बैक्टीरिया पनप रहे हैं
2: जी,
3: उसका कारण।
2: अच्छा।
3: इन दोनों के प्रोसेस से ही ये कैविटी का निर्माण शुरू हो जाता है।
2: तो किस प्रकार के खान पान की वजह से ये समस्याएं ज्यादा आती हैं?
3: मीठा खाना,
2: अच्छा,
3: तैलीय खाना, जैसे आपका कई कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज है, उससे जो लैक्टिक एसिड निकल रहा है वो सबसे मुख्य कारण है इसका।
2: जी। तो बहुत से लोग हैं जो जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले या जलेबी, इस प्रकार की रस वाली चीज़ें खाते हैं, उसमें तो ज़्यादा शिकायतें होंगी, या मिठाई या फिर टॉफ़ी, चॉकलेट्स।
3: शिकायत है खाइए, लेकिन उसके बाद मुंह को अच्छे से साफ कीजिए।
2: तो ये फिर ज़्यादातर बच्चों में होता है कि या ज़्यादातर बड़ों में ही होता है?
3: ये बच्चों में ज़्यादा देखा गया है।
2: बच्चों में,
3: अच्छा, खासकर 14 साल तक के बच्चों में। उनमें हड़बड़ी भी रहती है स्कूल जाने का, जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं, ठीक से ब्रश नहीं किए।
2: तो कैविटी से बचाव का क्या तरीका है?
3: आप चिपचिपे और मीठे पदार्थ कम खाइए।
2: अच्छा।
3: ब्रश कीजिए सुबह और शाम, फ्लोराइड युक्त पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए
2: जी,
3: और रात में आपको ये एक ग्लास नमक पानी से, गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ला किया कीजिए रेगुलरली।
2: अच्छा।
3: और नियमित रूप से दांतों का चेकअप करवाइए।
2: ये भी कहा जाता है कि हमें ब्रशिंग जो है सिर्फ सुबह नहीं, रात को खाना खाने के बाद भी करना चाहिए, यानी कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए।
3: जी बिल्कुल,
2: इससे ये शिकायत नहीं होगी।
3: हाँ, मतलब जिससे आपके जो खाने के जो कण फंसे हुए और निकल जाएंगे तो फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाएगा।
2: और लोग कहते हैं कि रात को जो ब्रशिंग है वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दांतों का सड़ना जो है, एसिड बनना ज़्यादातर रात में ही होता है, ऐसा कुछ है क्या?
3: जी बिल्कुल, क्योंकि रात में जो आपका खाना है उसमें आपका जो मुंह का लार है वो भी रीमिनरलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ावा देता है।
2: जी।
3: रात में आप खाने के कण रह जाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया का एक्शन ज़्यादा हो।

0: जाता है।
1: जी जी अच्छा, अगर किसी को कैविटी हो गया उसके बाद फिर उसका क्या इलाज है?
0: उसके बाद हम कैविटी को सिर्फ फिलिंग, जिसको आप कह सकते हैं, डेंटिस्ट लोग फिलिंग कहते हैं, फिलिंग करवा के उसको ठीक कर सकते हैं। एक तरह से वहाँ कहिए कि छह को रोक सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं वहाँ, कैविटी अरेस्ट।
1: अच्छा,
0: उस जो आगे नहीं बढ़े।
1: अच्छा, और ज़्यादा सड़न हो गई तो फिर तो कुछ और भी उसका दूसरा भी इलाज?
0: अगर क्षरण सिर्फ कहिए आपके डेंटिन तक है, तब तक सिर्फ फिलिंग से ठीक हो जाएगा। और अगर वही क्षरण आपके पल्प तक, सबसे भीतरी वाले पार्ट तक चला गया है, फिर उसके बाद हम लोग को आरसीटी करवाना पड़ेगा।
1: यानी जब समस्या गंभीर हो जाएगी तो फिर आरसीटी की नौबत,
0: वो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा।
1: ठीक, डॉक्टर साहब, आपने हमारे दांतों में कैविटी के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, इसके अंतर्गत आज का विषय था दांतों में कैविटी, कारण और बचाव। विशेषज्ञ थे डॉक्टर अलका कुमारी, इनसे बातचीत कर रहे थे रंजन कुमार। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

0: करने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ले। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: बड़ी बहू,
3: ये तुम्हारे नाम।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
2: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
4: दादी,
3: हाँ,
4: आपके नाम?
5: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: आरबीआई कहता है?
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
7: अनजान ऐप से बचें।
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: के बाद पुनः स्वागत है और कार्यक्रम के आगू बढ़वेत अपने के सुनबे छी आप एकटा चहटगर मिठगर मैथिली लोकगीत।

0: प्रवीण जी, ममता देवी और साथियों के स्वर में ये संवेद गीत हम सुन रहे थे।
1: और सने सने हम सब आगू बढ़ रहल छी ई पावन और पवित्र महीना सावन के जे अछि, और
0: एहि मे
1: अंतिम पड़ाव पर अछि, अंतिम सोमवारी से आगा आवय वाला अछि और शिवमय भेल अछि। तो शिवमय कांवरिया सब जे केने रहै छथि तऽ स्वाभाविक छै बेसी भीड़ रहै छै तऽ कनी मनी कष्ट हेबे करै छै, लेकिन ओ कष्ट जखन जलार्पण बाबा पर भऽ जाइ छै तऽ सुखमे परिणित भऽ जाइ छै। और ओ सुख के अहाँ पैसा सँ नहि खरीद सकै छी, ओ भावनात्मक चीज छै। हाँ, बेसी भीड़ो पर नियंत्रण आवश्यक हो जाइ छै, जे एकाएक कोनो जगह छै 200 आदमी के ओहिठाम तार जबरदस्ती भक्तिमय भाव में अहाँ ठेलैत ठेलैत आगाँ बढ़ा देबै तऽ ई भगदड़ सँ बची से मैं रही, लेकिन अपन ज्ञान आस्था के जगेने रही और कोनो तरहक भीड़ सँ बचाव के कोशिश करी। ठीक छै, कंवरिया में भीड़ हेबे करै छै, बाबा पर जल अर्पित हेबे करतै, कनी विलम्बे सँ भऽ जेतै, ठेलम ठेला नहि करी, एहिसँ आघात प्रतिघात हुअ लगै छै, से नीक बात नहि होइ छै। तै सावन के ई अंतिम आवय वाला सोमवारी और पवित्र महीना में गीत सुनलहुँ, मन गदगद भेल, आशा करै छी अहूँ सबके नीक लागल हैत।
0: और प्रवीण जी, अब समय हो चला है हाल चाल का, तो हाल चाल सुनते हैं प्रवीण कुमार झा से।
1: नमस्कार, हाल चाल संग हम प्रवीण कुमार। बिहारवासी सब के लेल लद्दाख सँ सिंधु दर्शन करक लेल हुनका वास्तविक व्यय के 50% सरकार द्वारा भेटत। बिहार पर्यटन विभाग योजना के अनुसार आवेदक लऽ रहल छथि इच्छुक आम जनता के ई यात्रा करक चाही, और जो करै छथि तो ओकर आवेदन आब ओ दऽ सकै छथि वेबसाइट पर ऑनलाइन। आवेदक के आयु कम से कम 18 साल से ऊपर हेबाक चाही, ओ बिहार के स्थायी निवासी कतौ के हेबाक चाही, यात्रा के उद्देश्य धार्मिक और पर्यटन हेबाक चाही और कोनो नहि। एहि यात्रा के लेल पर्यटन विभाग के किछु नियम छै जकर पालन आवश्यक होइत अछि। जे नियम में से 2-4 हम कहि दै छी, जेना कि कोनो तरहक यात्रा में पॉलिथीन के व्यवहार अहाँ बाहर नहि कऽ सकै छी, कोनो तरहक बंद बोतल बंद पानी के उपयोग कऽ कऽ बोतल कतौ इमहर उमहर अहाँ नहि फेंक सकै छी, स्वच्छता के ध्यान अहाँ के लिए सर्वोपरि होबाक चाही, और राष्ट्र भावना से अहाँ के मन ओतप्रोत हेबाक चाही। ई किछु नियम छै, एहि सबके पालन करि

0: के यदि यात्रा अहाँ करै छी यानी लेह लद्दाख आओर सिंधु दर्शन करै छी तऽ खर्च केला के बाद आबि कऽ आवेदन देला पर ओकर 50% खर्च के अहाँके उचित खर्च के अहाँके 50% भेट सकैत अछि जे बेसी से बेसी 20,000 रुपया भऽ सकैत अछि एक आदमी के। तऽ एहि यात्रा के लेल यदि तैयार छी हमजन तऽ एहि पर आवेदन अहाँ जाकऽ कऽ सकै छी। आओर आ यात्रा के उपरांत 0 दिन सँ लऽ कऽ 60 दिन के अंदर अहाँ 50% व्यय खर्च भेल राशि के लेल वापसी के लेल आवेदन दऽ दियौ, अहाँके तुरंत राशि अहाँके बैंक में आबि जायत। मिथिला के युवा युवती के लेल बढ़त रोजगार आ तकनीकी अवसर, सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि दरभंगा के सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार के मुख्य केंद्र बनाबक लेल अपन पहल कऽ रहल छी। सांसद दरभंगा कहलनि जे एहि के लेल हम भागीरथ प्रयास कऽ रहल छी, बहुत जल्दी हम दरभंगा के मुख्य हब बनायब सूचना और प्रौद्योगिकी के। एहि के क्रम में शनि दिन बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI के कार्यक्रम में देश के नामी IT उद्यमी और हुनक प्रतिनिधिगण संग एकटा बैठकी केलनि आ कहलनि जे दरभंगा के एकर केंद्र बनाओल के लेल अहाँ सब प्रयास करियौ और अहाँ सबके आमंत्रित करै छी दरभंगा में IT कंपनी आ नवाचार आधारित उद्यम के दरभंगा में STPI सँ जोड़ल जाए आ एकर शाखा दरभंगा में तुरंत देल जाए। ई निवेदन दरभंगा जाले प्रखंड महाकवि कालिदास सूर्यदेव महाविद्यालय त्रिमुवाई चंदौना में शनि दिन महाविद्यालय के 59वां स्थापना दिवस स्नेहपूर्वक मनाओल गेल। विधायक जीवेश कुमार कहलनि जे मॉडल साइंस के शिक्षा के संग नैतिकता और कौशल विकास एहि युग में आवश्यक भऽ गेल अछि। तै नव शिक्षा के लेल नैतिक शिक्षा और मॉडल और उद्यमिता पर बेसी जोर देबाक चाही जे के लेल कौशल विकास आवश्यक अछि। ई हालचाल एकर आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी, एकटा अल्प विराम।
1: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: एक बेर हालचाल में पुनः स्वागत अछि। दरभंगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा निजी अस्पताल जे सूचीबद्ध करय के लेल जिला में स्वास्थ्य सेवा के मजबूत करय के लेल शनि दिन जिला अधिकारी कौशल कुमार के अध्यक्षता में एकटा समीक्षा बैठक भेल। एहि अनुसार आयुष्मान के सूचीबद्ध निजी अस्पताल सब के लेल नियमित जांच आवश्यक भऽ गेल अछि। जिला सिविल सर्जन एकर विशेष निगरानी कऽ रहल छथि और विशेष जांच ओ करा सकै छथि आ महीने महीने एहि स्वास्थ्य केंद्र सबके जांच भऽ सकैत अछि। कमतौल ऐतिहासिक आ धार्मिक स्थल अहिल्या स्थान में शनि दिन ग्रामीण सब माता अहिल्या के पूजा अर्चना श्रद्धाभाव भक्तिभाव सँ कयलनि। एहि अवसर पर घी के लड्डू आ खीर सँ हुनक भोग लगाओल गेल। दरभंगा सशक्त पंचायत, समृद्ध और मजबूत बिहार बनेबाक लेल शनि दिन लहरियासराय सभागार में बिहार ग्रामीण बैंक के तरफ सँ मुखिया आउटरीच कार्यक्रम आयोजित भेल, जाहिमे मुखिया सबके स्वागत भेल और कहल गेल जे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लेल कखनो अहाँ बैंक के सहारा लऽ कऽ ग्रामीण क्षेत्र के विकास कऽ सकै छी, एहि के लेल बैंक तैयार अछि। एहि संग हालचाल सम्पन्न भेल। एक नजरी मौसम पर, आइ जे उच्चतम तापमान रहत से 35 डिग्री तक रहि सकैत अछि और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहि सकैत अछि। मौसम के उतार चढ़ाव रहत, उत्तर बिहार में खास कऽ मौसम शुष्क रहत।

0: तो कतौ बूंदाबांदी भऽ सकैत अछि, कतौ कतौ वर्षो भऽ सकैत अछि। आओर जतऽ बाढ़िवला क्षेत्र अछि ओहिठाम नदीसँ सब दूर भऽ जाए सैह नीक, किएक तऽ नदीके उतार चढ़ाव एखन बेसी भऽ रहल अछि, तैँ बाढ़िके सब बचि कऽ रही। नमस्कार, हालचाल एहि सङ्ग सम्पन्न भेल।
1: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रवीण जी, एक बार हम पुनः स्वागत करते हैं अपने श्रोताओं का कार्यक्रम में। और हम बातचीत कर रहे थे, आज का दिन अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज ही के दिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान मिशन 3, ये जो स्वप्न था हमारा, ये पूरा हुआ था और हम चंद्रमा के उस सतह पर पहुँचे जहाँ अब तक किसी देश के द्वारा पहल नहीं की गई थी, और जिसके कारण हमारा जो अंतरिक्ष विज्ञान था वह उसमें बहुत सारी नई जानकारियाँ शामिल हुई। तो अंतरिक्ष विज्ञान के नए क्षितिज पर पहुँचने का ये जो स्वप्न था हमारा, ये नासा का मिशन और इसके बाद हमारा इसरो, इसने इसको पूरा कर लिया।
0: सत्य कहलूँ, चाँद पर बचपन में सुने छलहुँ चाँद मामा, लेकिन चाँद पर मनुष्य जो आयत, यंत्रो जो आयत, ई कल्पना छलै जकरा साकार रूप देलनि हमर इसरो देश के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जे छथि से। आओर ओहि चाँद के ओहि क्षेत्र में ओ सॉफ्ट लैंडिंग करेलनि, जतऽ आइ तक संसार भरि के कोनो देश, अन्य देश सब गेल छलै, मशीन ओकर गेल छलैया, लेकिन जतऽ भारत सॉफ्ट लैंडिंग करेलक ओहि क्षेत्र में क्यों नहीं गेल छल, तै गौरव के तऽ क्षण छै। किए तऽ कोनो कोनो चीज जे नव करब अहाँ, नया करब जे क्यों नहि केने छै संसार भरि मे, तऽ निश्चित रूपसँ ओ गौरवशाली क्षण होइ छै देश के लेल और देश के नागरिक के लेल।
3: और हम सैल्यूट करते हैं अपने इसरो के वैज्ञानिकों को, जिनमें बहुत सारी हमारी महिला वैज्ञानिक भी थी, और इसलिए इस दिन को हम अपने इतिहास का गौरवमय दिन मानते हैं। इसने हमें ब्रह्मांड के बहुत सारे नए रहस्य के बारे में जानकारी दी, और जिसके कारण न्यू होराइजंस यान जो 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के पास से गुजरकर उसके हृदय में आकार की सतह और बर्फीले पहाड़ों की अद्भुत तस्वीरें भेजी थी, हमें वो जानने का मौका मिला। गैलेक्सी और ग्रहों की खोज, जिस पर भारतीय वैज्ञानिकों ने उन्नत तकनीकों से दूरस्थ आकाश गंगा जैसे अलकनंदा का पता लगाया, वहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बहिर्ग्रहों की खोज जारी रखी, उसके बारे में हमें जानकारियां मिली। और भारतीय अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक माइक्रोगेविटी, जिन्होंने पौधों की वृद्धि और नैनो मटेरियल्स का उन्नत प्रयोग किया था, हमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिली। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से लगभग 330 प्रकाश वर्ष दूर स्थित गैसीय ग्रह, जिसे हम T1-199b के वायुमंडल छोर के रूप में जानते हैं, वहाँ क्या और कौन सा गैस है, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों के मजबूत संकेत के बारे में हमें जानकारियां मिली। तो आज का ये जो दिन है ये बहुत खास है, अंतरिक्ष के वैसे गूढ़ रहस्य जिसके बारे में हमारी कम जानकारियां थी, या फिर दूसरे अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा हमें कुछ कुछ जानकारियां मिली थी, पर उस सतह पर पहुंचकर जब हमारे वैज्ञानिकों ने महसूस किया तो वो सारी जानकारियां जिसके बारे में

0: कभी कभी सुना गया था, उन सभी जानकारियों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिली और जिससे हमारा अंतरिक्ष जो जगत है वह बहुत मजबूत हुई है, या कहिए तो अंतरिक्ष के नए क्षितिज को क्षितिज पर जाने का भारतीयों को मौका मिला।
1: सत्य कहे छी, एखन विश्व में भारत अंतरिक्ष मामला में सबसे कम खर्चा में नीक काज कर रहा है से विश्व जान गेल अछि। और हमर अर्थ व्यय कम होइए लेकिन हम दूर तक ओकर अवसर ढूंढ लै छी। एक युग छल जे कहियो हम बैलोगाड़ी पर किछु अंतरिक्ष के सामान उघने रही, साइकिलो पर उघने रही, और आई युग है जे संसार भर के नजर हमरा पर छे। अंतरिक्ष विज्ञान में हम केना बैलगाड़ी से और ऐसे ल क साइकिल से ल क जे सामान
0: चंद्रयान मिशन
1: से चंद्रयान तीन क लेलहुँ, और आई नित्य नव रहस्य पर से पर्दा उठा हमारे वैज्ञानिक देश के नव तकनीक वैज्ञानिक सब जे छथि ओ दिवा रात्रि मानव कल्याण हेतु अंतरिक्ष के रहस्य के सुलझा रहल छथि, और ई सुलझते रहता किए तो अंतरिक्ष तो आखिर रहस्यमय छे।
0: और भारत को विश्व गुरु बनना है
1: जी।
0: प्रवीण जी, बहुत एक दो चंद्रयान मिशन जब असफल हुआ, द्वितीय चंद्रयान मिशन जब असफल हुआ, तो हम सभी भारतीय लोगों ने इसको अपने दिल पर लिया था, परंतु उसके कुछ ही दिनों बाद जब चंद्रयान मिशन तीन हुआ, तो आपको याद होगा कि हम सभी लोग उसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, और कितनी अच्छी खुशी हमें मिली थी जब हमारा चंद्रयान मिशन तीन स्वप्न पूरा हो गया।
1: हम सब वही युग में थी,
0: वही दिन है, इस दिन पर हम गर्व करते हैं। और अब आज चूंकि हमारा रविवार है, हमारे कार्यक्रम में हमारा खास दिन होता है रविवार, जब हमारे बहुत सारे श्रोता घर पर होते हैं और इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, तो इस वक्त कार्यक्रम में गीत के आनंद लेने का समय आ गया है। हम सुनवाते हैं एक सुमधुर गीत अपने श्रोताओं को।

आया सावन झुमके, ये गीत एखन सुनलहुँ सावन के महीना में। और सावन तो सही बात है, सावन के शोभा तखने होइ छै जे झमझम वर्षा होए, मुदा एखन उत्तर बिहार झमझम वर्षा से सुखायल अछि, ओना नदी सब उफरायल अछि, ई दुनू मिश्रण भऽ रहल छै। उत्तर बिहार में जतौ नहर के सुविधा छै ओतौ तऽ पानि अछि, खेती पथारी ठीक अछि, लेकिन जतौ नहर नहि छै उत्तर बिहार में ततौ खेती भेल खेती पथारी सुखायल रहल अछि। ई सावन महीना में दरारि फाटि रहल अछि, ई चिंता के विषय कृषक सब के लेल छनि। लेकिन एक तरफ सावन में हम सब झूमै छी, लेकिन ओ केना झूमे जकर अंग भंग छै, और

0: यदि कनी संवेदना हमसब जगा ली तो अंग भंग बिलाब सो अंगदार भ सकै छथि। कहबाक तात्पर्य अहाँ सब बुझैत आयब, अहाँ सब चेतक छी, सामाजिक जाय प्राणी छी और हमरा सबके परम कर्तव्य अछि जे मनुष्य सबसँ पहिले एकटा सामाजिक प्राणी होइत अछि, नहि कि पारिवारिक, नहि कि अपन। तैं एहि भावके अहाँ सब यदि जीवै छी तऽ अंगदान महादान,
1: जुग जुग जियो अभियान,
0: जुग जुग जियो अभियान। और ओ अंगदान जे राष्ट्रीय सेवा मे अपन अंग गवाबैत अछि करैमे, ओकरा लेल एकटा वरदान भऽ जाइ छै और ओकर जीवन मे फेर सावन झूमे लगै छै।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने प्रवीण जी। 3 अगस्त 2026 को 16वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर यह स्लोगन दिया गया, अंगदान महादान जुग जुग जियो अभियान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खासकर अभी जिसकी चर्चा की आपने कि देश के प्रति समर्पित होने वाले बहुत सारे ऐसे हमारे सैनिक जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, अगर हम उन्हें अंगदान करें तो जो उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी जो इच्छा तृप्त होगी, उसके द्वारा हम निश्चित रूप से उस आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य यही है कि अंगों की मांग और आपूर्ति के बीच में अंतर को कम करना और अंगदान के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता फैलाना इस अभियान का उद्देश्य है। और संकल्प यही है कि अधिक से अधिक लोगों को और उनके जीवन को बचाने के लिए अंगदान का संकल्प लेने के लिए हम प्रेरित करें। यदि 1 साल तक चलने वाला यह राष्ट्रव्यापी अभियान है तो गांव और सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण और अर्ध शहरी समुदायों तक पहुंचेगा यह अभियान और इसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य के द्वारा आधार प्रमाणीकरण से जोड़ा जाएगा, जिससे पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वह सरल और सुरक्षित हो जाएगी। तो अंगदान महादान जुग जुग जियो अभियान ये हमारा चल रहा है अभी तक अभी। और
0: ना देखल जाओ संगीता जी, तो इस शरीर न स्वरे एक दिन ने एक दिन माइट में एक जेबाक है, पंच तत्व में विलीन हेबाक है, प्रकार अनेक है, क्यों गाड़ि दैए, क्यों जला दैए, क्यों बहा दैए, क्यों मतलब कहब जे दफना दैए, लेकिन जाइ छे माइटे में और माइट में पंच तत्व है और पंच तत्व में विलीन तो कह दी शरीर, लेकिन कनी सोचियो, कनी ठमकू और यदि अहाँ मृत्यु उपरांत अपन कोनो अंग जीवित रखा चाहे छे, के नहीं चाहे जो अमर भ जाए, हम हमर नाम अमर हुए, तो अह महाअभियान में अहाँ शामिल हो, क्या तो ई युग युग तक जियो वाला एक अभियान छे और अहाँ के कोनो अंग एक कोनो नव आदमी के नव ढंग से जीव के लेल मजबूर सहारा बनत। तैं अपने जिलों तो की जिलों, दोसर के सहारा यदि दिलिए तो ओ महान छे। तै अंगदान सबसे महान छे, युग युग जियो अभियान छे, ऐसे जुड़ी और लोग स्वेच्छा से बहुतो आदमी मृत्यु उपरांत अपन पूरा शरीर के दो दे छथिन रिसर्च सेंटर अस्पताल में, जो बच्चा पर वही पर शोध करे जो व्याधि जे लगे छे, केना लगे छे, ओकर कारण की सब होय छे, बहुतो शरीर में अस्पताल में अछि जो ओहिना एखन तक पड़ल अछि और ओकरा पर बच्चा सब शोध कऽ के पड़े, यानी ओ अपन जीवन दधीच कोना अपन हड्डी गला कऽ विश्व कल्याण के नहीं रहते।
1: सही बात कि हमारी प्राचीन परंपरा रही है, यह कोई हमारी नूतन परंपरा नहीं है, यह भारतीय संस्कृति इतनी गौरवमयी रही है, जहाँ एक से एक ऋषि महर्षि का जो दान है वह उसने विश्व का कल्याण किया है, तो हम उसी संस्कृति के सोपान हैं और उसी संस्कृति के उन तत्वों को आज भी समाहित करने की ज़रूरत है जिस पर हम अभिमान कर सकें। और वास्तव में आपने जो कहा कि अपना जीना बहुत बड़ा नहीं है, परंतु यदि अपने जीने के साथ हम दूसरे को जीवन दान दे सकें तो यह जो अभियान है यह निश्चित रूप से जुगजुग जीने वाला अभियान है। तो अंगदान के लिए अगर हम सभी लोग

0: हो सकें, संकल्पित हो सकें, तो यह एक बहुत बड़े विश्व कल्याण का मार्ग बनेगा।
1: सच ये जीवन छे, आत्मा छन्मंगूर छे, शरीर एकटा ओकर रूप रहै छे, शरीर में आत्मा अबै है जाइ है, एक तक क्रम चलै छे, चलते रहते। लेकिन एहनो बहुतो दधी चेला संसार में विश्व कल्याणार्थ, ओ अपन सशरीर दान दिला है और ओसे जीवन कल्याण मिले, समाज के कल्याण मिले है। भागरथी यदि प्रयास नहीं केने हेतै तो एखन जे गंगा हमर नदी छथि से पृथ्वी पर नहीं आयल हेतथि। ते प्रयास मनुष्य करै छै, समाजे के मनुष्य होइ छै और सामाजिक प्राणी
0: मन में वो सोच होनी चाहिए।
1: लेकिन मन एक मजबूत है, एक भ्रांति है, यदि अंग दान करब हम तो हमरा से मोक्ष नहीं भेटत, अधूरा शरीर हमर माने पंचतत्व में विलीन है, ये सब कोनो भाव नहीं छे। अहाँ के तो और मोक्ष भेट गए, अहाँ ककरो सहयोग द कर गए, आ मान लिये ककरो कोनो अनहर छे क्यों और दृष्टि नहीं छे ओकरा, और ओकरा यदि अहाँ आँख दान करै छी ओकरा ओ आँख जाकर लगै छे तो अहाँ तो जीवित रह गेलहुँ, आत्मा तो अहाँ के दोसर शरीर में जेबे करत, लेकिन वो अंग तो अहाँ के जीवित है, तो इससे पेश निक की भ सकै छे।
0: बहुत अच्छी बात।
1: और आज रवि दिन है और समय कहित है जी, आप समय बेसी हमरा सबके नहीं है, जल्दी जल्दी सामान सब बिलहो के है और दर्शक सब इंतजारो करी थोड़ा फिर गीतो ना देते, तो चलू आप देखे
0: साप्ताहिक गतिविधि शामिल कर ले। प्रस्तुत है गत सप्ताह की प्रमुख गतिविधियाँ। गत सप्ताह रविवार यानी 16 अगस्त को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की 2 दिवसीय बिहार यात्रा आरंभ हुई। दोपहर 2 बजे पटना हवाई अड्डे पर पहुँचे। उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ बिहार दौरे पर पहुँचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, जिलाधिकारी कुंदन कुमार, एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि देश में मतदाता सूची शुद्धिकरण का सबसे सफल आयोजन बिहार से शुरू हुआ। वर्ष 2005 के बिहार विधानसभा आम चुनाव में आज़ादी के बाद सर्वाधिक मतदान हुआ और मतदान कई देशों से अधिक रहा। उन्होंने कहा, मैं बिहार की पावन धरती को नमन करने आया हूँ, जहाँ वैशाली जो लोकतंत्र की जननी है, मैं यहाँ के मतदाताओं के प्रति अपना आभार प्रकट करने आया हूँ। यहाँ से वो पुनौराधाम यानी सीतामढ़ी के माता जानकी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। अमेरिका में रहने वाली विदेशियों व भारतीयों के लिए इमिग्रेशन से जुड़ा अहम बदलाव होने जा रहा है। अमेरिकी नागरिकता एवं आवर्जन सेवा 15 सितंबर 2026 से स्टेटस बढ़ाने या बदलने और वर्क परमिट के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 प्रमुख फॉर्म के नए संस्करण लागू हुए। इसके द्वारा अस्थायी निवासियों के ठहरने की अवधि बढ़ाई गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स व समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा करने की घोषणा की गई। इस पेपर में तथ्यात्मक टंकन और अनुवाद संबंधी कई त्रुटियां मिलने के बाद ये घोषणा की गई। NTA के अनुसार अंग्रेजी की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर की सुबह 9 से 12 बजे तक पहली पाली में, उसी दिन कॉमर्स का पेपर 3 बजे से 6 बजे तक तथा समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 से 12 बजे तक पहली पाली में होगी। ये परीक्षाएँ NTA ने UGC नेट 22 से 30 जून के बीच 87 विषयों के लिए आयोजित की थी। गत रविवार को यूक्रेन ने रविवार को रूस के कई हिस्सों में सैकड़ों ड्रोन से हमले किए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा, यूक्रेन के अब तक 822 ड्रोन नष्ट किए। गत सप्ताह 15 अगस्त को गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई प्रमुख घोषणाएं की, यथा राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन, राज्य के अगले 6 महीने में अंदर 5 अन्य चीनी मिलें खुलने का की घोषणा, 6 नई हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा। साथ ही रक्षाबंधन से छात्राओं की सुरक्षा में राज्य के स्कूल कॉलेजों पर पुलिस दीदियों की नियुक्ति इत्यादि।
1: आप समय कहित चलत चलत एक फिर गीत नाद के आनंद ली तो आओ सुनै छी एकटा फिल्म संगीत।

0: आओर आजुक एहि अंकसँ समय कहैत अछि जे हमरा सबके आज्ञा लेबाक बेर आबि गेल अछि। तऽ प्रिय स्नेही श्रोतागण, हमरा प्रवीणके
1: और संगीता को दीजिए आज्ञा के इस जगह से यहीं पर नमस्कार मिथिला।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222241। मोबाइल नंबर है 9430029353।
2: भोर होते उठ जाओ किएक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घुराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
3: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
4: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की
5: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
6: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण

0: इस संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HIST और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जॉइंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
3: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के

0: रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
1: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तट रक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायु सेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित Under-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने 6ठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर

0: पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब

0: इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत US संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमरीका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब US और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honour and protection of historic legacy of Vande Mataram. Centre notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS Sports Ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And in wrestling, Mansi Lathar wins silver medal at Under-20 World Championships in Slovakia. Tanvi and Komal claim bronze medals. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the new

0: उम्र तक की आलमी चैंपियनशिप में मानसी लाथर ने चांदी का तमगा जीता, जबकि तन्वी और कोमल ने कांसे के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि तंजीम की मीटिंगें नए ख्यालात और नुक्ते नज़र पर मबनी हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत बनाना और अवाम के साथ उसके ताल्लुक को मजीद गहरा करना है। बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने भी पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान बीजेपी ने कौमी गीत वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने कहा कि बीजेपी की टीम भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के वजीर आजम ने मोदी के अज़्म को पूरा करने के लिए पार्टी की बुनियाद को वसी करने की खातिर मुकम्मल लगन और खलूस के साथ काम करने के लिए अहदबस्ता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नबीन ने कहा कि वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक करारदाद में पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले की मजम्मत और वाज तौर पर मुखालफत की है जो इस माह की 19 तारीख को लिया गया था। इस फैसले के तहत कांग्रेस ने अपनी 1937 की करारदाद को दोबारा नाफिज करने और कांग्रेस के प्रोग्रामों में वंदे मातरम को सिर्फ उसकी पहली दो बंद तक महदूद रखने का फैसला किया था। पार्टी ने यह अज़्म भी जाहिर किया कि पूरे वंदे मातरम के एहतराम, वक़ार और विरसे और कौमी हैसियत को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम भारत के कौमी गीत के तौर पर मुल्क के कौमी शऊर और आज़ादी की जिद्दोजहद की एक लाजवाल अलामत है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि बीजेपी कारकुनों के जरिए मुल्कगीर मुहिम चलाई जाएगी ताकि वंदे मातरम की तारीख, मफहूम, कौमी अहमियत और शानदार विरसे को मुल्क के हर कोने तक पहुंचाया जा सके। कौमी ओहदेदारों की पहली मीटिंग के अख्ताम के बाद रियासती सुदूर जनरल सेक्रेटरीज और दिगर ओहदेदारों के साथ सेवा संकल्प अभियान के लिए एक कौमी वर्कशॉप मुनक़िद की गई। सहाफियों को जानकारी फराहम करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने ऐलान किया कि बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 17 सितंबर को आने वाली सालगिरह के मौके पर एक माह तवील मुल्कगीर सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस मुहिम का मकसद अवामी खिदमत के लिए उनके अज़्म को उजागर करना और बिलखसूस नौजवानों को खिदमत के काम अंजाम देने की तरगीब देना है। नई दिल्ली से सौम्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: मरकजी हुकूमत ने टेलीविजन चैनलों के लिए इश्तहारात की 12 मिनट की हद खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क ज़वाबित 1994 में तरमीम को गजट में शाया किए जाने के बाद नाफिजुल अमल हो गया है। इससे कबल वजारत इत्तला नशरियात ने कहा था कि टेलीविजन नशरियात के शोबे में आने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र इश्तहारात की मुद्दत से मुतालिक मौजूदा ज़वाबित पर दोबारा गौर करने की जरूरत महसूस की गई थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: वजारत ने कहा है कि भारत में टेलीविजन नशरियात का शोबा वसी हद तक इश्तहारात पर मुनहसर है, ख्वाब वो पे चैनल हों या फ्री टू ईयर। वजारत ने मजीद कहा कि रिवायती टेलीविजन चैनल और डिजिटल मीडिया के दरमियान गैर मुसाबकती माहौल था, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर इश्तहारात के दौरानिए की हद से मुतालिक ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं थी। केबल टेलीविजन नेटवर्क्स जाब्ते 1994 के तहत 2006 में पहली मरतबा टेलीविजन इश्तहारात के लिए दौरानिए की हद मुतारिफ की गई। इसके बाद से टीवी नशरियात के शोबे में नुमाया तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। वजारत के मुताबिक नशरियाती शोबे में नुमाया तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। 2006 में जहां सिर्फ 62 टीवी चैनल्स थे, वहां अब इनकी तादाद 900 से ज्यादा हो गई है। पहले केबल टीवी टेलीविजन चैनल्स की जरूरियात की बुनियाद का जरिया था और इसकी नशरियाती गुंजाइश महदूद थी, जिसके बाइस सारिफिन के पास पसंद या नापसंद का महदूद मौका था। आकाशवाणी दिल्ली से जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत ब्रिक्स 2026 की अपनी सदारत के तहत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेलों के वुजरा की मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन ममालिक के खेलों के वजीरों और वफूद के सरबराहान के साथ मीटिंग में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स मुल्कों के खेलों के वजीरों की मीटिंग का मकसद खेलों के जरिए ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान ताउन को मजीद मुस्तहकम करना और अवाम से अवाम के दरमियान करीबी राबते को फरोग देना है। मीटिंग में रिवायती और मकामी खेलों, खेलों की टेक्नोलॉजी और खेलों के साजो सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मीटिंग में ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन ममालिक के नुमाइंदों के हुकूमती बयान, दो तरफा मीटिंगें और सकाफती सरगर्मियां भी शामिल होंगी। तवक्को है कि मीटिंग के अख्ताम पर

0: job.bihar.gov.in/registration पर जाएं और आज ही अपना पंजीकरण करें। बिना पूर्व पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के आप इस मेले में भाग नहीं ले सकते हैं। साथ अपने निर्धारित तिथि और समय पर ही साक्षात्कार के लिए आएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-296-5656 पर संपर्क करें।
1: आपकी सफलता हमारी प्रतिबद्धता। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: और इस गीत के बाद
5: छाया की

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज युवा रोजगार और कौशल विकास मेले के तहत चयनित युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए संसदीय समिति दल आज पहुंचेगा पटना। और गंगा, पुनपुन, सोन, गंडक और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच प्रदेश के कई जिलों के दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है। एक रिपोर्ट।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
2: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहाँ हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: श्री ताबरे ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
2: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना

0: योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के ज्ञान भवन में चल रहे युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग मेगा जॉब फेयर 2026 में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। युवा कौशल और रोजगार विभाग के अनुसार इस मेगा जॉब फेयर में कल 3,727 युवाओं का चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित रोजगार मेले में 20,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। राज्य सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ी शैक्षणिक संस्थानों की जांच का फैसला किया है। योजना के तहत सूचीबद्ध निजी शिक्षण संस्थानों की भौतिक जांच कराई जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित संस्थानों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की जांच के लिए जिला स्तर पर समिति गठित करने का निर्देश दिया है। विभाग ने संबंधित संस्थानों को निर्धारित पोर्टल पर अपनी आवश्यक जानकारी और अभिलेख 1 सितंबर से 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही जिलों में स्थित संबंधित संस्थानों की स्थलीय जांच की प्रक्रिया 30 दिसंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है। यह जांच शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए होगा। राज्य के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की वास्तविक स्थिति जानने के लिए डाक विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण सर्वेक्षण करेगा। इसके तहत प्रदेश के 8,000 से अधिक ग्रामीण शाखा डाकघरों में तैनात लगभग 15,000 ग्रामीण डाक सेवक गांवों में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का सर्वेक्षण करेंगे। यह सर्वेक्षण वे अपने दैनिक डाक वितरण कार्य के दौरान करेंगे। सर्वेक्षण का उद्देश्य नेटवर्क के ब्लैक स्पॉट, इंटरनेट की गति, कॉल की गुणवत्ता और कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं की जानकारी जुटाना है। इसके लिए दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए ई केवाईसी कराने की आज अंतिम तिथि है। कंपनी के अनुसार ई केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को व्यावसायिक दर पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। कंपनियों ने उपभोक्ताओं से ई केवाईसी की प्रक्रिया को कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से करने की अपील की है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 31 सदस्यीय दल आज राज्य के दौरे पर पहुंच रहा है। राज्यसभा सांसद और संसदीय समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि समिति में लोकसभा और राज्यसभा के 31 सांसद शामिल हैं। समिति कल पटना में केंद्र और राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगी। इस दौरान राज्य में हवाई अड्डा और हवाई संपर्क के विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के साथ साथ प्रदेश की कला संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन की समीक्षा करेगी। इसके बाद समिति बोधगया में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में पर्यटन की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति और उनके विकास की योजनाओं की समीक्षा करेगी। इसके उपरांत बोधगया, राजगीर और नालंदा के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर स्थल निरीक्षण करेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले दो दिनों तक राज्य के उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। विभाग ने राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई है।
1: दिनांक 23 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के समस्त उत्तर भाग एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना।
0: गंगा, पुनपुन, सोन, गंडक और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच प्रदेश के कई जिलों के दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। पटना जिले के सदर प्रखंड के कुर्जी बिंद टोली, LCT घाट के आसपास, बख्तियारपुर और अथमल गोला के दियारा क्षेत्रों के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: बाढ़ नियंत्रण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मनेर में गंगा का जलस्तर 52.1 मीटर और दीघा घाट पर 50.53 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इधर पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि क्षेत्र से बहने वाली नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी तटबंधों की निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा की स्थिति में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 120 शरण स्थल बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 219 निजी नाव मालिकों के साथ बाढ़ राहत के लिए समझौता किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि SDRF की एक कंपनी 12 नाव और 32 जवानों के साथ गायघाट और पटना सिटी में तथा NDRF की दो टीमें 8 नाव के साथ तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर 24 घंटे एक नियंत्रण कक्ष कार्य कर रहा है। कोई भी व्यक्ति दूरभाष संख्या 06122101118 और मोबाइल नंबर 8235449748 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही जिले के सभी प्रखंडों में नियंत्रण कक्ष कार्य कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार।
0: वहीं मुंगेर और भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। भागलपुर में नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से 17 सेंटीमीटर ऊपर है। जलस्तर में वृद्धि से भागलपुर के बरारी, फरक्का, बाबूपुर, शंकरपुर और अठगामा समेत तटवर्ती इलाकों में पानी लगातार फैल रहा है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल भागलपुर के कार्यपालक अभियंता आदित्य प्रकाश ने बताया कि ऊपरी क्षेत्र में भी नदी के जलस्तर का दबाव बना हुआ है। अभियंता ने बताया कि आने वाले दिनों में गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी रहने की संभावना है। दूसरी ओर मुंगेर में गंगा का पानी चेतावनी स्तर के आसपास बना हुआ है। जिले के प्रसिद्ध चंडिका स्थान परिसर के गर्भगृह में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। चंडिका स्थान के पुजारी ने बताया कि श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इधर सिवान जिले में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 0.38 मीटर ऊपर है। पटना के कदमकुआं स्थित बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में जीवन ज्योति एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिव्यांगजनों के लिए दिव्य सावन संगम महोत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें अपनी कला दिखाने का मौका देने के लिए आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपये के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपये की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय राजपत्र में केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। अररिया जिले में स्मैक तस्कर

0: करने के आरोप में गिरफ्तार पंचायत रोजगार सेवक को उप विकास आयुक्त ने सेवामुक्त करने का आदेश दिया है। पटना जिले के मनेर थाना पर गोलीबारी करने के आरोप में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, देश में 9 करोड़ युवा रोजगार और पढ़ाई से दूर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में नीति आयोग का बड़ा खुलासा। दैनिक जागरण ने लिखा है, पाटलिपुत्र टाउनशिप में किसानों की मर्जी के खिलाफ नहीं ली जाएगी जमीन। प्रभात खबर का शीर्षक है, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रिजल्ट पर बवाल, कई कॉलेजों में नर्सिंग फार्मा में 90% तक छात्र फेल। दैनिक भास्कर लिखता है, राज्य में 5 साल से खाली सरकारी पद खत्म होंगे, नई नियुक्तियां की जाएंगी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, केंद्र सरकार ने कहा, चीनी के दाम बढ़ने का कारण एथेनॉल उत्पादन नहीं। आज अखबार ने लिखा है, 18 माह के DELED योग्यताधारी शिक्षकों की होगी सेवा समाप्त। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज युवा रोजगार और कौशल विकास मेले के तहत चयनित युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए संसदीय समिति दल आज पहुंचेगा पटना। और गंगा, पुनपुन, सोन, गंडक और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच प्रदेश के कई जिलों के दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: क्या उन नुस्खों के ऊपर अमल करना सही है?
1: देखिए, एक मुहावरा आमतौर पर कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो यह इंसान का जो जिस्म है बहुत ही डेडिकेट ऑर्गन है, बहुत ही नाजुक जिस्म है, और एक एक सेल की हिफाजत करना, एक एक खलिए की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। आमतौर पर जो देखने में ये आता है कि लोगों ने कोई दवा बता दी कि फलां दवा फलां मर्ज़ में बहुत ही मुफीद होती है अपने तजर्बे की बुनियाद पर, या फिर कि किसी ने इस्तेमाल किया और वो बता दिया कि साहब आप इस दवा को इस्तेमाल कीजिए, फलां साहब को फ़ायदा हुआ। एक दवा जो होती है वो किसी पर्टिकुलर शख्स के लिए वो फ़ायदेमंद होती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वही दवा दूसरे इंसान के लिए भी फ़ायदेमंद हो। लिहाजा ये एक मिसकंसेप्शन है। इसकी बहुत सारे वजूहात होती हैं जहाँ पर इंसान एक लाइलमी में इस चीज़ को इस्तेमाल करता है, साहब ये दवा हमें भी फ़ायदा करेगी, उसको भी फ़ायदा करेगी। या इसकी दूसरी वजूहात ये होती हैं, इंसान जो है गुरबत का शिकार है और उसके घर पर दवा मौजूद है और उसने कहा कि साहब ये मेरे फलां शख्स को ये दवा इस्तेमाल की गई थी इस मर्ज़ में, लिहाजा जो है इस दवा को हम इसमें इस्तेमाल कर लें। या फिर दवाएं जो है बहुत महंगी होती जा रही हैं, इंसान के पहुंच से बाहर हो रही हैं, डॉक्टर की फीस वो नहीं पे कर पा रहा है, तो इन सब सूरत हाल से बचने के लिए वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाता है। आजकल थोड़ा सा रुझान ये बढ़ा है कि लोग इंटरनेट या गूगल पर सर्च कर लेते हैं और सिम्टम्स और साइंस डालने के बाद उसका ट्रीटमेंट खुद करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही डेंजरस और बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि दवा के बारे में हमें मुकम्मल इल्म नहीं है कि दवा जिस्म में जाने के बाद क्या क्या करती है और दवा का ग़िज़ाओं से क्या इंटरेक्शन है और दवाओं का जो है दूसरी दवाओं से क्या इंटरेक्शन है। इसलिए हमें दवाओं को बहुत एहतियात के साथ और बग़ैर किसी डॉक्टर की सलाह और मशवरे के हमें दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
0: तो सामीन, इस बात का ख्याल रखिए कि आइंदा अगर घर में किसी को कुछ परेशानी हो तो बिना किसी इल्म के उसके इस्तेमाल से बचें, जो कि कहीं ना कहीं जाकर के आपको साइड इफेक्ट दे सकता है। डॉक्टर साहब, अब रुख करते हैं उस जानिब के जिसके माहिर आप हैं। सामीन को बताइए कि ये जो तिब्बी या यूनानी जो इलाज होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है?
1: देखिए, यूनानी मेडिसिन, इसकी जो शुरुआत जैसा कि इसके लफ्ज़ से जाहिर होता है कि इसकी इब्तिदा जो है इसकी ओरिजिन ग्रीक यानी कि यूनान से है, और हिप्पोक्रेट यानी कि बुकरात ने इसकी बुनियाद रखी थी। इसको मुजद्दित्तिब इसी बुनियाद पर कहा जाता है या अबुत्तिब कहा जाता है, फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन। इन्होंने फोर ह्यूमरल थ्योरी अखलात अरबा की बुनियाद पर जो है इस तिब की बुनियाद रखी। तिब एक तरीके से एक ग्लोबल मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, और इसकी थ्योरी ये कहती है कि हमारे जिस्म के अंदर जो रतूबात या फ्लूइड्स पाए जाते हैं उनको हम ह्यूमर्स या अखलात कहते हैं। इन अखलात को बुकरात ने रंग की बुनियाद पर चार हिस्सों में तकसीम किया। पहली जो खिल्त है वो खिल्त बलगम कहलाती है, उसके बाद खिलते सफरा, खिलते दम और खिलते सौदा। इन चारों अखलात में क्वालिटी और क्वांटिटी के अतबार से अगर बैलेंस होता है तो हमें सेहत हासिल होती है, और अगर यही बैलेंस बिगड़ जाए तो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियां लाहिक होती हैं। यही जो खिलते हैं इन्हीं को दुरुस्त करने के लिए जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तिब में इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि जो भी अमराज हमारे जिस्म में होते हैं, जैसा आपने बताया कि खिल्त की वजह कर होते हैं, तो आखिर ये जो खिल्त का जो कॉन्सेप्ट है आपके तिब्बी या यूनानी इलाज के तहत, इससे मरीज़ को क्या नफ़ा और नुकसान होता है? मतलब उससे मरीज़ का जो जिस्म है, जो बीमारी है, उसमें अगर वो ट्रीटमेंट के लिए जाए जब आपकी तरफ, यूनानी वाली दवाइयों की तरफ, जैसा अभी आपने खुद कहा कि दवाइयाँ महंगी हो रही हैं तो लोग खुद से डॉक्टर बन रहे हैं और खुद से ही घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो यूनानी दवाइयों की तरफ कोई मरीज़ अगर जाता है, उसके जो असरात होते हैं जिस्म के ऊपर, तो वो कैसे मुरतब होते हैं?
1: देखिए, हमारे यहाँ जो इलाज होता है बीमारियों का, वो उसको हम लोग जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी पैथीज में ख़ासतौर से एलोपैथिक में देखने में ये आता है कि ज़्यादातर सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। तो हम लोगों की अप्रोच ये होती है कि बीमारी का जो सबब है उस तक पहुँचा जाए, और जब बीमारी का जो सबब है वो दूर हो जाएगा तो फिर वो बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो जाती है। जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर जो चार अखलात या चार खिलतें पाई जाती हैं, ये दरअसल हमारी जो बैलेंस डाइट है उसी से बनती हैं। लीवर में, लीवर के थ्रू इनका प्रोडक्शन होता है और ये चार खिलतें वहाँ से प्रोडक्ट पाती हैं या बनती हैं। जब इन खिलतों को पर हम जब एड्रेस करते हैं तो हमारी जो अप्रोच मरीज़ या मर्ज़ पर होती है वो हॉलिस्टिक अप्रोच होती है। जब मर्ज़ का इलाज करते हैं तो मरीज़ भी हमारे सामने होता है, उसका मिजाज भी हमें पता होता है और मर्ज़ का मिजाज भी हमें मालूम होता है। तो इस तरीके से हम किसी एक सेल या किसी एक मॉलिक्यूलर

0: बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बल्कि हम पूरे जिसमें इंसानी को एज ए होल मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच हमारी होती है। तो इस तरीके से जब इलाज किया जाता है तो फिर बीमारी जो होती है वो रूट कॉज उसका मालूम हो जाता है, तो रूट कॉज से उसको जड़ से ख़त्म करते हैं। जैसे खिलते बलगम है, बलगम का मतलब है कि जिसमें इंसानी के अंदर हमारे यहाँ जो सफ़ेद रंग की रुतुबात या बेरंग रुतुबात पाई जाती हैं उनको हम लोग खिलते बलगम में शुमार करते हैं। फिर इसी एतबार से बलगमी अमराज तय किए जाते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां बलगमी अमराज में आती हैं, कौन कौन सी बीमारियां सफरावी अमराज में आती हैं, कौन सी बीमारियां दमवी में आती हैं और कौन सी सौदावी में आती हैं। हर खिल्त का अपना एक मिजाज होता है, तबई मिजाज होता है उसका, फिर गैर तबई का मिजाज होता है। इसी तरीके से जो बीमारियां होती हैं उनका अपना मिजाज होता है, दवाओं का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका भी मिजाज होता है, जो मरीज़ होता है उसका भी मिजाज होता है। तो तीनों के मिजाज को हम मुताबिकत रखते हुए मरीज़ का जो है ट्रीटमेंट तजवीज़ करते हैं, नुस्खा तजवीज़ करते हैं।
1: तो जैसे अभी आपने बताया कि खिल्त को समझते हुए फिर आप उस मरीज़ के मर्ज़ को दूर करने की कोशिश करते हैं, उसका इलाज करते हैं, तो जिस तरीके से खिल्त बलगम है तो इस तरीके से और भी कोई खिल्त कहलाते हैं उसमें?
0: जी, जैसा कि खिलते बलगम है हमने कहा, खिलते सफरा है एलो बाइल, खिलते सौदा है एलो ब्लैक बाइल, और खिलते दम यानी कि ब्लड। तो ये चार खिलते हमारे जिस्म के अंदर पाई जाती हैं और जितनी भी बीमारियां होती हैं इन्हीं चार खिलतों से वो रिलेटेड होती हैं।
1: तिब्बी और यूनानी इलाज की तरफ अगर हम रुख करें तो बहुत तरह की बीमारियां अभी हो रही हैं जैसे, और हर बार कुछ नया नया आ ही रहा है, लोग परेशान हैं। जैसे अभी पिछले 2 साल से लोग परेशान हैं कोरोना में, तो क्या कोरोना के वक्त में जो इतनी जो परेशानियां हुई, खास करके सर्दी खांसी वाली, तो अगर मैं ये कहूँ कि आपकी इलाज की तरफ अगर कोई रुख करता है तो क्या उसका ट्रीटमेंट है वहाँ पर?
0: जी बिल्कुल, यूनानी तिब में कंप्लीट एक सिस्टम ऑफ यूनानी मेडिसिन है ये, और तकरीबन हर किस्म की बीमारियों को ये सिस्टम एड्रेस करता है। अभी पिछले गुज़िश्ता दिनों हम लोगों ने जो वबा को देखा, कोरोना वायरस, तो इसमें भी बहुत सारी दवाएं बहुत ही मुफीद पाई गईं, और बल्कि एक जुशादा या काढ़ा की शक्ल में मालेगांव में एक काफ़ी तजर्बा हुआ और बहुत लोग जो है उससे फ़ायदा हुआ और उस वबाई मर्ज से बच पाए। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग यूनानी मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और बहुत ही उम्मीद अफजा भी है, और इस्तेमाल कराने के बाद हमें बहुत सारे फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं। कोविड में जैसा कि हमारे यहाँ जो तरीके से हुम्मा वबाइया या नज़ले वबाइया की एक शक्ल थी, बेशुमार नुस्खे जात हैं इस ताल्लुक़ से।
1: तिब्बी इलाज के कोई साइड इफेक्ट, इसका कोई मनफी असरात भी पड़ता है हमारे जिस्म के ऊपर?
0: जी बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि जो आवाम में एक गलत तासुर ये पाया जाता है कि दवाएं या यूनानी दवाएं जो है नुकसानदेह नहीं होती हैं, ये एक गलत तासुर है। दवा जो भी है वो हमारे जिस्म के लिए एक फॉरेन बॉडी है, जिस्म का वो खारजी हिस्सा है। दवा अगर है तो बिल्कुल उसके नुकसानदेह असरात मुरतब होंगे। इसी वजह से दवा और ग़िज़ा में फ़र्क हम करते हैं। ग़िज़ाएं जो होती हैं हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती हैं, दवाएं जो होती हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती हैं, बल्कि कैफियत से असर करके वो जिस्म से खारिज हो जाती हैं। यूनानी दवाएं भी साइड इफ़ेक्ट रखती हैं और उनके मुज़िर असरात होते हैं। चूँकि हम लोग मर्ज़ के दर्जात और दवा के जो मिजाज के दर्जात होते हैं और फिर दवा को मुख्तलिफ तरीक़ों से मॉडिफाई करके इस्तेमाल करते हैं, तो जब इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो फिर दवा के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। लिहाजा इस बुनियाद पर हम लोग कहते हैं कि हमारी दवाएं बहुत ही सेफ़ होती हैं। इन दवाओं को भी किसी तबीब या हकीम डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि अभी वबा के अयाम में देखने को मिला कि लोगों ने घरों में कोई दारचीनी का काढ़ा बनाकर पी रहा है, कोई काली मिर्च का काढ़ा बना के पी रहा है, तो कोई लौंग का काढ़ा बना के पी रहा है, तो उससे जो साइड इफ़ेक्ट सामने आए कि लोगों को अल्सर या गैस्ट्राइटिस की शिकायत होने लगी। तो अब ये चीज़ लाइलमी में हुई कि हमें दारचीनी का इस्तेमाल करना है, काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, लौंग का इस्तेमाल करना है, तो कब करना है, कैसे करना है, ये चीज़ जो है किसी हकीम या किसी तबीब के मशवरे से ही करना चाहिए। लिहाजा इस तरह के अवारजात सुनने को और देखने को मिले।
1: तो सामीन, जब भी अगली बार आप काढ़ा बनाएं किसी भी वजह कर, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि जो भी चीज़ हम उसमें इस्तेमाल करते हैं उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसे हमें कब और कितना किस मकदार में लेना भी चाहिए, ये भी बहुत अहमियत रखता है हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, कहते हैं कि हमारे किचन में जितनी भी चीज़ें हैं, गर्म मसाले हैं चाहे कुछ भी हो, प्याज ही क्यों ना

0: लहसुन ही क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरह से तिब्बी नुस्खे का काम करती हैं और उससे बीमारियां ठीक होती हैं, जो हमने अभी वबा के वक्त में देखा या हम अक्सर देखते हैं घर में। अगर किसी को पेट में नॉर्मल सा दर्द भी अगर हो जाता है तो शुरू हो जाते हैं लोग नींबू पानी पी लो, तो कभी क्या पक्खी खा लो या कुछ भी उस तरीके से बना करके लोग देते हैं। तो इस तरीके का जो इस्तेमाल करते हैं, इसका मैंने एक बहुत अभी रिसेंट में एक बहुत ख़तरनाक क्या कहूँ कि उसके असरात देखे हैं। एक जानने वाली हैं जिनको किसी ने बताया कि लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा। बात तो सही है, लहसुन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। उन्होंने खाना तो शुरू किया और वो काफ़ी लंबे वक्त खाते रह गई और अभी ऐसा हुआ है कि उनको पेप्टिक अल्सर हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो घर में हमारे जो किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं उसे भी हमें खुद से नहीं इस्तेमाल कर लेना चाहिए, बल्कि उसका इल्म हमें होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहना
1: जी
0: चाहेंगे आप इसके ऊपर?
1: जी किचन जो हमारा है वो एक तरीके से देखा जाए तो एक दवाखाना है। यूनानी तिब के एतबार से जितने भी मसाले जात हैं वो बतौर दवा हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। जितने भी मसाले जात हैं ज़्यादातर का जो मिजाज हम लोग देखते हैं वो गर्म खुश्क है, यानी कि ये हमारे जिस्म में पहुँचने के बाद हमारे जिस्म के अंदर हरारत और यबूसत पैदा करते हैं। आपने जैसा कि जिक्र किया कि लहसुन का इस्तेमाल किसी ने किया और उसको इफाक़त तो हुआ, लेकिन लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया और किस तरीके से इस्तेमाल किया, किसी तबीब की निगरानी में किया, ये जो है तय करना ज़रूरी है। कुछ दवाएं हम लोग जो मसाले जात इस्तेमाल करते हैं तो अब यह कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या उसकी मकदार खुराक है और कब इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कुछ मसाले जात ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए एलर्जिक हो सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो हम कोई दवा ले रहे हैं तो उसके साथ इंटरेक्शन भी उस दवा को हो सकता है। अगर कोई शख्स वारफरीन या मॉडर्न ड्रग्स ले रहा है तो अगर उसके साथ हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हैमरेज ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। इसी तरीके से देखने में आया है कि मुलेठी जो है बहुत कॉमन ड्रग है और लोग खांसी के लिए आमतौर पर मुंह में रख लेते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स के साथ अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। तो ग़िज़ाओं का और इस तरह के चीज़ों का, अशिया का भी दवाओं के साथ जो है इंटरेक्शन होता है, तो ये चीज़ें जो है तबीब के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ तक बात है कि जो मसाले जात हमारे किचन में हैं इनको इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए, तो बिल्कुल इनको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि एक तरीके से इनको हम फर्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कंटिन्यूअस बहुत लंबे वक्त तक ज़्यादा मकदार में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड के तौर पर, इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर गैस की प्रॉब्लम हुई, अचानक पेट में दर्द हुआ, तो अब दर्द गैस की वजह से है या कोई और काज है हमें नहीं मालूम होता है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अजवाइन का इस्तेमाल हम करते हैं या जीरे का इस्तेमाल करते हैं, तो अब ये कि इसको कितनी मकदार में लेना है, इसकी मकदार खुराक कितनी होती है। अगर उस मकदार खुराक आपने कम ली है तो वो भी हमारे जिस्म को उतना असर नहीं करेगी, और अगर आपने ओवरडोज ले लिया है तो आपके जिस्म को नुकसानदेह साबित होगी। इस तरीके से डोज का जानना बेहद ज़रूरी है। तो डोज़ हमें कैसे मालूम होगी, या तो हम उसके बारे में कंप्लीट मुताला करें, कंप्लीट स्टडी करें तब उसको इस्तेमाल करें, या फिर किसी तबीब या किसी हकीम से मशवरा करके जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए।
0: इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि जब भी हम किचन में जाते हैं और ये सोचते हैं कि जैसे किसी ने बता दिया कि अदरक खाने से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कई बार कुछ अलग बीमारियों की शक्ल में भी निकल करके आता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, सामिंग हजरात, की ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमारे हर एक जिस्म को सूट कर सके, यानी कि इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम जब भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो उसकी मकदार भी जाने और ये भी जाने कि सामने वाले को उससे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उसकी कुछ अलग से कुछ दवाइयाँ अगर चल रही हैं तो उस पर भी शायद उस पर नुकसान हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, दवाएं
0: तो
1: पहले
0: इस
1: से
0: बात
1: चल
0: का
1: रही
0: ख्याल
1: हैं।
0: रखिए। अब मैं चलती हूँ उस जानी, नई नई कुछ बीमारियाँ जो हमारे जिस्म में पनपते हैं, तो उसमें खास करके हम परेशान होते हैं कैंसर जैसी मौलिक बीमारी से। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं साइनस, अक्सर इसका इलाज लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ है तो वो ऑपरेशन ही है, बहुत ज़्यादा अगर वो बढ़ गया है तब। और फिर उसके साथ साथ जैसे थायराइड आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ये अक्सर जो हमारी ख्वातीन हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो क्या इसका इलाज हमारे तिब्बी नुस्खे में है इस तरीके का कि उसमें इस्तेमाल से उनकी इस बीमारी से निकाला जा सके?
1: देखिए हमारे यहाँ मुज़मिन अमराज जो हैं, जो अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रीट नहीं हो पाते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट होता है, और जो एक्यूट डिसऑर्डर्स होते हैं उसका भी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन चूंकि ये आमतौर पर पब्लिक में ये है कि अल्टरनेटिव

0: मेडिसिन है या ट्रेडिशनल मेडिसिन है, लोग पहले रुख करते हैं मेन स्ट्रीम मेडिसिन की तरफ, एलोपैथिक की तरफ। और एलोपैथिक में जब उनको इफाका नहीं होता है, तब वो लौट के ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ आते हैं। तो अगर वो चीज़ें अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही अगर हमें मालूम हो जाए, तो उसका इलाज तिब के ज़रिए या रिवायती या ट्रेडिशनल मेडिसिन के ज़रिए करना आसान होता है। जैसा कि आपने जिक्र किया, कैंसर का जो एक तरीके से एक वबा की शक्ल इख्तियार कर रहा है, बहुत ही मौजी और जानलेवा मर्ज़ है ये। तो इसमें बहुत सारे नुस्खे जात तो बाज़ दफ़ा मुफीद भी साबित हुए हैं, जैसा कि गिलों के बारे में देखने में आया, सदाबहार एक प्लांट है उसके वे काम हुआ है और असरात देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप्स के कैंसर्स होते हैं और कैंसर टिश्यूज़ पे अलग दवाएं एक्ट करती हैं। तो अभी यूनानी सिस्टम मेडिसिन में भी इस पे काम हो रहा है, इलाज जो है मौसर साबित हुए हैं। जैसे डायबिटीज़ है, ये भी एक वबा की शक्ल अख्तियार कर रहा है, तो डायबिटीज़ में भी जो है कोई सा कोई क्योर तो नहीं है, लेकिन ऐसी बीमारियों के लिए हम लोग तिब की तरफ रजू करते हैं, क्योंकि जो दवाएं लंबे अरसे तक इस्तेमाल करनी हैं, वो दवाएं किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज करने लगती हैं, क्या तो लीवर डैमेज होता है या फिर किडनी डैमेज होता है। हम लोग तिब की तरफ ऐसे मरीजों को ला सकते हैं और तिब भी नुस्खों का इस्तेमाल करके फाका हो सकता है। ऐसी थायराइड प्रॉब्लम जो बहुत कसरत से खवातीन में हो रही है, तो थायराइड दरअसल ये हार्मोन्स की डिस्टरबेंस है, उसमें भी बहुत सारी दवाएं कारामद होती हैं और उसकी वजह से थायराइड जो है जो हाइपो या हाइपर कंडीशन बन जाती है, तो उसको हम लोग रेगुलेट करते हैं और वो प्रॉपर फंक्शन अंजाम देता है।
1: एक सवाल और बनता है कि जब आपके तिब्बी नुस्खे में इन तमाम बीमारियों का इलाज है, तो ये कितना वक्त लेती है किसी भी एक बीमारी को ठीक करने के लिए? मान लीजिए कि किसी एक मरीज के अंदर में एक ही बार में दो तीन बीमारियां हैं, क्या टाइम लगता है इस आपके यूनानी नुस्खे के जरिए से इन तरह के अमराज को ठीक करने में?
0: जी, हमारे यहाँ ये है कि आम तौर पर दवाएं फौरी तौर पर असर नहीं करती हैं, बल्कि थोड़ा वक्त लेती हैं। तो मिनिमम 3 से 7 दिनों में दवाओं का इफेक्ट देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है या फौरी तौर पर रिलीफ के लिए चीज़ें नहीं हैं, फौरी तौर पर रिलीफ के लिए भी दवाएं दी जाती हैं, लेकिन मरीज़ जो है अब उतने उस वक्त पहुंच नहीं पाता है, या फिर वो जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, या मरीज़ के लिए इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये दवाएं ऐसी हैं जिनको हम लोग नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो मरीज़ जो है उसको ले नहीं पाता है। प्रॉब्लम कभी कभी आती है, मॉडर्न में आपने इंजेक्शन दे दिया, आपने टैबलेट खिला दी, लेकिन हमारे यहाँ इंजेक्शन तो नहीं है,
1: जी
0: लिहाजा उसका काढ़ा बनाकर मरीज़ को पिलाना बहुत ही जो है उसके लिए बदमजगी होती है। इस तरीके से मरीज़ बेहोश है या नहीं ले सकता है, तो किसी और रूट से दवाओं को देना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन जो होती है उसमें तो हम लोग थोड़ा सा एड्रेस नहीं करते हैं, लेकिन जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, जो मुजमिन अमराज हैं, उसमें यूनानी दवाएं बहुत ही अच्छा काम करती हैं। और उसमें आमतौर पर जो मुद्दत होती है, कम से कम 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जिस तरीके का मर्ज होता है उस तरीके से उसकी मुद्दत भी तय की जाती है।
1: अगर ये कहा जाए कि यूनानी दवाइयाँ अगर हम शुरू करते हैं किसी भी मर्ज़ के ट्रीटमेंट के लिए, उसके इलाज के लिए, तो हमें कम से कम 3 महीने तक इंतज़ार करना
0: बिल्कुल
1: चाहिए,
0: जी,
1: क्योंकि हर
0: खास
1: किसी
0: खास जो है कुछ
1: हाँ
0: बीमारियां ऐसी जिसमें 3 महीना है, कुछ बीमारियां ऐसी जिसमें है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक हमें वेट करना पड़ सकता है। जैसे हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस के केसेस में बहुत सारे केसेस जो है यूनानी दवाओं से सही हुए, में जो वायरस जो है वो नेगेटिव होने के लिए कम से कम 6 मंथ जो है दरकार होता है। इस तरीके से हम कोई एक टाइम फिक्स नहीं कर सकते कि इतने दिनों में ही हर मर्ज़ का इलाज 3 महीने 2 महीने में हो सकता है, ये वेरी करता है डिजीज़ के अतबार से।
1: यानी कि जो हमारी बीमारियां हैं उस बीमारियों के हिसाब से, यानी कि वो बीमारी हमारे जिस्म में दरअसल कब से है, कितने वक्त से है, कितने लंबे वक्त से हम उस बीमारी से दोचार हैं, उसका भी असर करता होगा। अच्छा, ये तो दवाइयों की बात हुई। जहां अगर बात करें, आप ये कह रहे थे कि हमारी जो ग़िज़ा है वो भी बहुत अहमियत का हामिल रखती है, तो क्या इन दवाइयों के साथ, जैसे होम्योपैथिक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप होम्योपैथिक ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं खानी हैं, या एलोपैथिक में भी कई बार ऐसा होता है कि आप जब ट्रीटमेंट में हैं उसके, तो कुछ चीज़ों को मना करते हैं डॉक्टर कि आपको ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, तो क्या यूनानी दवाइयों में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जब यूनानी तिब्बी इलाज जब करवा रहे हैं किसी मर्ज़ के लिए, तो कुछ ऐसी चीज़ जो आप खाते थे पहले बट अभी नहीं खाना है, ऐसा कुछ?
0: जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो उसूल इलाज है वो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पहले इलाज बिल गिज़ा से, यानी कि डाइटोथेरेपी, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं इलाज बिल तदबीर यानी कि रेजिमल थेरेपी, उसके बाद फिर जो है इलाज बिल दवा यानी कि फार्माकोथेरेपी, उसके बाद फिर सर्जरी। एक तरह हमारे यहाँ एक सीक्वेंस है। तो उसमें जैसा कि आपने बताया कि गिज़ाएँ, जो गिज़ाएँ हम लोग लेते हैं वो गिज़ाएँ भी अगर ओवरडोज होती

0: नहीं तो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं, जैसे कि अगर कोई शख्स गोश्त का इस्तेमाल न करे, सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल करता है, तो उसके अंदर देखने में आएगा एनेमिक होता है वो ज़्यादातर केसेस में। ऐसे ही कुछ लोग सिर्फ चावल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर सर्टेन किस्म की विटामिन की कमी हो जाती है। एक तो ये कि ग़िज़ाओं का सही तनासुब बहुत ज़रूरी है इटसेल्फ। उसके बाद आपने जिक्र किया कि क्या किसी शख्स का कोई इलाज चल रहा है और यूनानी दवाओं का ट्रीटमेंट हो रहा है, और उसके साथ क्या ग़िज़ाओं में भी कुछ परहेज़ होता है या नहीं? बिल्कुल, ग़िज़ाओं में भी परहेज़ होता है। और अगर किसी शख्स को बारिद मर्ज़ है, यानी कि बरूदत की वजह से मर्ज़ लाहिक हुआ है, तो जाहिर सी बात है ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि बारिद हुआ करती हैं, जिनका मिजाज बारिद होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि चावल है, अचार है, या फिर जो है खीरा है, ककड़ी है, इस तरह की चीज़ें उसको नुकसानदेह होती हैं, लिहाजा उसको परहेज़ बताया जाता है कि आपको ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है।
1: तो यूनानी इलाज की तरफ भी अगर हम रुख करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है सामीन हजरात कि हम कोई भी इलाज करवाएं, हमारा मस तभी ठीक होगा जब हम अपने डॉक्टर के हिसाब से पूरी तरह से अमल पैरा होंगे उसके ऊपर, और जो भी एहतियात बताई जाए, जिन चीज़ों से रोका जाए, हमें हमें उसको नहीं करने की ज़रूरत है ताकि मर्ज़ जल्द अज़ जल्द ठीक हो सके। तो सामीन हजरात, जाते जाते हम एक बार फिर से डॉक्टर साहब से बस इतना ही पूछना चाहेंगे कि आप हमारे सामीन के लिए ऐसी कौन सी अहम बात बताने वाले हैं जिससे कि हमारे सामीन को इस्तफादा हो।
0: आपने जैसा कि टॉपिक रखा था कि अपना डॉक्टर आप ना बने, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही और मौजू टॉपिक है, क्योंकि आपका जिस्म आपके लिए बहुत ही अहमियत रखता है। अगर सेहत आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो मैं समझता हूँ कि जो गुफ्तगू अभी आपसे हुई है, आपने मुलाहजा फरमाई, उसमें बड़ी अहम बातें आपने सुनी। इससे ये अखज़ किया होगा कि हमें खुद सेल्फ मेडिकेशन या खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। हमारे किचन में भी अगर चीज़ें मौजूद हैं तो उसको भी जो है किसी तजर्बाकार या किसी हकीम या किसी तबीब के मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए। और पैसों की खातिर या सुस्ती काहली में या किसी और वजह से हमें इन सब दवाओं को या इन सब चीज़ों को अख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि सीधे डॉक्टर या तबीब से मशवरा करके दवा का इस्तेमाल करना चाहिए।
1: इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे सामीन के लिए, और हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी सेहतमंद रहिए और हमारे सामीन, हमारी आवाम को भी सेहतमंद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
2: अभी आप समाअत फरमा रहे थे सेहतनामा, अपना डॉक्टर आप ना बने के मौजू पर डॉक्टर मोहम्मद अनस से शगुफ्ता परवीन की बातचीत। सामईन, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर शायरा परवीन शाकिर के बारे में। 26 दिसंबर 1994 की एक धुंधली सुबह इस्लामाबाद में एक अलमनाक कार हादसे ने जिस्मानी तौर पर इस महकते हुए वजूद को हमसे छीन लिया, मगर सच तो यह है कि खुशबू कभी मरा नहीं करती, वह हवाओं के दोष पर हमेशा सफ़र में रहती है। परवीन शाकिर आज भी हर उस दिल में धड़कती हैं जो एहसास की पाकीज़गी और मोहब्बत की सच्चाई पर यकीन रखता है। परवीन शाकिर का यह शेर कि हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कपन नहीं जाता,

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।
3: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।

0: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
1: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
0: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।

0: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: साहित्य संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया था, बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। इसके साथ ही आप अपने मोबाइल सेट के माध्यम से वेब्स OTT एवं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से हमें आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म मेरा नाम जोकर से। गायक कलाकार हैं मन्ना डे। नीरज के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो क्या
3: RBI कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से। वाह
6: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: अगला गीत हमने लिया है फिल्म दीवाना से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में ये गीत। अगला गाना हमने लिया है फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक।

कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए फिल्म प्यार किया तो डरना क्या फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, भूकंप या बाढ़ जैसी जानलेवा आपदाओं में अपनी सुरक्षा के लिए हमें सतर्कता के साथ साथ बचाव के तरीके भी अपनाने की जरूरत होती है। भूकंप और बाढ़ में सावधानी एवं बचाव के उपाय, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के आज के विषय का अंक। विशेषज्ञ होंगे प्रणव राज, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी। कार्यक्रम के दौरान आप हमसे फोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0627222481 एवं मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें, आज यानी रविवार को 23 अगस्त 2026 को दिन के 11 बजे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, आप अपने रेडियो सेट के अलावे हमें आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी वेब्स OTT एवं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम फुलवारी। सूत्रधार हैं रजनी कुमारी, प्रस्तुतकर्ता हैं अमरनाथ प्रसाद।

0: जय हिंद प्यारे बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
2: आप सभी का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम फुलबाड़ी में हार्दिक स्वागत है। फूलों की खुशबू, तितलियों की रंगत और बच्चों की प्यारी मुस्कान के साथ मैं रजनी दीदी आपके प्रिय कार्यक्रम फुलबाड़ी में उपस्थित हूँ। ज्ञान, मनोरंजन और नई नई जानकारियों से सजी इस रंग बिरंगी दुनिया में हम लेकर आए हैं आपके लिए कई रोचक बातें। तो आइए हंसी खुशी, कहानियों और सामान्य ज्ञान के इस सुंदर सफर की शुरुआत करते हैं। तो बस कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए मेरे साथ और चुपचाप शांति से सुनिए अपना प्रिय कार्यक्रम फुलवारी। बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और शरारत थोड़ी कम कर रहे होंगे, है ना? पढ़ाई पर खूब ध्यान दे रहे होंगे, है ना?
0: मैं हूँ आपकी अपनी रजनी दीदी। आइए आज कुछ अच्छा सीखें, कुछ नया जानें और कुछ प्यारी सी बातें अपने नन्हे दोस्तों के साथ बांटें। संस्कार, सामान्य ज्ञान और बच्चों की मीठी बातें, इन्हीं रंग बिरंगी रंगों से सजी है आज की फुलवारी। तो मुस्कुराइए, सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि बचपन ही भविष्य की सबसे सुंदर नींव है, है ना बच्चों? तो आइए आज हम सबसे पहले बात करेंगे अच्छे संस्कार और शिष्टाचार की, फिर सुनेंगे बच्चे मन के सच्चे अंक में नन्हे मुन्नो दोस्तों की प्यारी बातें। तो आइए शुरू करते हैं आज की फुलवारी और जानते हैं अच्छे संस्कार और शिष्टाचार के बारे में, जो हमें अच्छा इंसान बनाता है। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग

मुलाकात में ही सबका दिल जीत लेते हैं। इसका कारण उनका सुंदर व्यवहार होता है ना? मीठी बोली, विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान, यही अच्छे संस्कार हैं। प्यारे बच्चों, पता है आपको, अच्छे संस्कार और शिष्टाचार मनुष्य के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। धन, ज्ञान और पद से अधिक महत्वपूर्ण हमारा व्यवहार होता है ना? एक संस्कारी और विनम्र बच्चा हर जगह सम्मान और तारीफ पाता है, लोग उसे दुलारते हैं, है ना बच्चों? आप में से भी कई बच्चे ऐसे हो ना, जिसे सभी दुलार करते हैं, सभी मानते हैं, सभी उसका सम्मान करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, है ना? गंदे बच्चे की कोई बड़ाई नहीं होती है। अच्छे संस्कार हमें परिवार, विद्यालय और समाज से मिलते हैं। माता पिता, दादा दादी और शिक्षक हमें बचपन से ही सच बोलना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना और सभी के साथ मिलजुल कर रहना सिखाते हैं, है ना? बच्चों, शिष्टाचार का अर्थ है विनम्र और सब व्यवहार करना। किसी से मिलने पर नमस्ते कहना, धन्यवाद कहना, कृपया जैसे शब्दों का प्रयोग करना, अपने बारी का इंतजार करना और दूसरों की बात ध्यान से सुनना और गलती होने पर क्षमा मांगना अच्छे शिष्टाचार के उदाहरण हैं। ये छोटी छोटी आदतें हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। तो बच्चों, आप भी अच्छी आदतों को अपनाओगे ना? आज के समय में बच्चों के लिए अच्छे संस्कार पहले से भी अधिक आवश्यक है। मोबाइल, इंटरनेट का उपयोग करते समय शालीन भाषा का प्रयोग करना, किसी का मजाक न उड़ाना और ऑनलाइन भी दूसरों का सम्मान करना अच्छे संस्कार का ही हिस्सा है। प्यारे बच्चों, एक संस्कारी बच्चा केवल अपनी पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार से भी सबका दिल जीत लेता है। वह अपने देश, समाज और पर्यावरण वरन के प्रति भी जिम्मेदार होता है। ऐसे बच्चे भविष्य में अच्छे नागरिक बनते हैं और साथ ही देश की प्रगति में अपना पूरा योगदान देते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, समय का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए और सभी के प्रति प्रेम सहयोग की भावना रखना ही अच्छे संस्कार शिष्टाचार का सच्चा रूप है। प्यारे बच्चों, यही गुण आपके जीवन को सफल, सुखी और सम्मान पूर्वक बनाते हैं और सभी आपका सम्मान करते हैं। अगर सभी आपका सम्मान करते हैं, दुलारते हैं, तो आप खुश हो जाते हो ना? और भी खुश करने के लिए आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा बाल गीत।

बच्चों अच्छा लगा ना ये गाना। आइए अब आपको रजनी दीदी कथा कहानियों की दुनिया में ले चलती है और सुनाती है एक प्यारी सी छोटी सी कहानी। आप लोग शांति से बैठ जाइए और शरारत कतई नहीं। और कहानी का शीर्षक है नन्हा पौधा और मोहन। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बालक रहता था। उसे पेड़ों और पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन उसके विद्यालय में शिक्षक ने बच्चों को पर्यावरण की रक्षा का महत्व बताया और प्रत्येक बच्चे से एक पौधे लगाने का आग्रह किया। मोहन ने घर आकर अपने दादाजी से आम का एक छोटा सा पौधा मांगा। दादाजी बहुत खुश हुए और दोनों ने मिलकर घर के आंगन में वह पौधा लगा दिया। मोहन रोज उस पौधे को पानी देता, उसके आसपास की घास साफ करता और उसकी देखभाल करता। कुछ महीने बाद वह छोटा पौधा बड़ा होने लगा। उसकी शाखाओं पर चिड़िया आकर बैठने लगी। राह चलते लोग उसकी छाया में आराम करने लगे। मोहन को अपने पौधे पर बहुत गर्व होता था और क्यों ना हो भला। उसने अपने मेहनत से, अपने लगन से उस पौधे को छोटे से बड़ा किया, है ना। एक दिन गर्मी में गांव में पानी की कमी हो गई। कई

0: पौधे सूखने लगे, लेकिन मोहन ने अपने पौधे की देखभाल जारी रखी। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा और घना बन गया, एक बड़ा सा पेड़ बन गया। पूरे गांव के लोग उसकी छाया और फलों का आनंद लेने लगे। गांव के मुखिया ने एक सभा में मोहन की प्रशंसा करते हुए कहा, यदि हर बच्चा मोहन की तरह एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे तो हमारा गांव हरा भरा और सुंदर बन जाएगा। मोहन की प्रेरणा से गांव के अन्य बच्चों ने भी पौधे लगाए और उनकी देखभाल करने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव हरियाली से भर गया। तो बच्चों, छोटे छोटे अच्छे कार्य मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, और पेड़ लगाना प्रकृति की सबसे सुंदर सेवा है। आप सभी बच्चे पेड़ लगाइए और उसकी सेवा करिए, क्योंकि पेड़ ही हम लोगों का अच्छा और सच्चा वाला दोस्त है। पेड़ अवश्य लगाएं। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी से प्रेरित होकर आप सभी अपने आसपास पेड़ लगाओगे, उसकी देखरेख करोगे। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बच्चे मन के सच्चे अंक, छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चों की प्रस्तुति पर आधारित ये कार्यक्रम। अभी मैं मूसा साध मध्य विद्यालय दरभंगा के प्रांगण में उपस्थित हूँ और यहाँ के कुछ नन्हे मुन्हे बच्चों से बातचीत करते हैं, उनकी प्रस्तुति सुनते हैं बच्चे मन के सच्चे के अंतर्गत।
1: जय हिंद प्यारे बच्चों।
2: जय हिंद दीदी।
1: कैसे हो आप लोग?
2: अच्छे हैं।
1: पढ़ाई लिखाई चल रही है?
2: यस दीदी।
1: और इसके साथ साथ धमाल चौकड़ी भी चल रही होगी?
2: यस दीदी।
1: स्कूल जाने आने में मजा आता है ना?
2: यस दीदी।
1: बारिश का मौसम है और बारिश में छपा छप करना अच्छा लगता है?
2: यस दीदी।
1: बारिश में भीगना कतई नहीं चाहिए, वायरल इन्फेक्शन आपको हो सकता है ना? बारिश को दूर से देखना अच्छा लगता है ना? और मम्मा का हाथ का बनाया हुआ बारिश में पकौड़ी खाना है ना?
2: यस दीदी।
1: तो पकौड़ी खाती हो कि नहीं? मम्मा बना के देती है ना?
2: यस दीदी।
1: अच्छा, आपने कभी शिष्टाचार का नाम सुना है? क्या होता है शिष्टाचार?
3: अच्छी आदतें।
1: अच्छी आदतें आप लोग करते हो ना? अच्छी आदतें जैसे कि आप एक दो अच्छी आदतें का नाम बताओ।
4: हमें ब्रश करना, मैम नहाना चाहिए,
1: हाँ,
4: मम्मी पापा का आदर करना चाहिए।
1: हाँ, अपने से बड़े बुजुर्ग का
4: आदर करना चाहिए।
1: और
0: शिक्षकों का कहना तो मानना ही चाहिए बच्चों को, है ना?
1: क्योंकि शिक्षक का जो ओहदा होता है भगवान से भी बड़े होते हैं, है ना? आपको पता है ना? नहाने के फायदे एक दो बता सकते हो?
3: कीटाणु नहीं लगते, हम साफ रहते हैं
4: और बीमार नहीं होते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या करते हो आप लोग घर में? मम्मी का हेल्प करते हो?
2: यस दीदी।
1: आप अपने छोटे भाई बहन को लाड करो, प्यार करो, है ना? और बड़ी बहन और बड़े भाई को सम्मान करो। अभी तो भाई बहन का पर्व फेस्टिवल राखी भी आने वाली है ना? तो आप लोग रक्षाबंधन की तैयारी की हो कि नहीं? रक्षाबंधन में अपने भाई से बहुत बड़ा गिफ्ट लेना है ना? ये रक्षाबंधन पर्व होता है कि पर्व किस लिए होता है? हाँ, भाई बहन का आपसी प्यार संबंध, ये जो धागा होता है ना, वो एक दूसरे को प्यार के बंधन में बांधता है ना? ना कि केवल गिफ्ट लेने के लिए। हाँ, गिफ्ट लेना अधिकार है बहनों का, है ना? इसी में तो प्यार बढ़ता है ना? और आप लोग अपने से बनाती हो राखी या खरीद के लाती है मम्मा? आप कुछ सुनाना चाहोगी आप लोग? क्या सुनाना चाहोगी? पहले अपना नाम बारी बारी से बताइए।
3: मेरा नाम रचना कुमारी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मूसा साह मध्य विद्यालय लालबाग है।
1: आप क्या सुनाना चाहती हैं आज
3: दीदी? गाना, वंदे मातरम।
1: गाना सुनाइए।

0: गया दीदी।
1: वाह बहुत अच्छा गाया आपने। और आपका क्या नाम है और कोई सुनाना कुछ चाहते हो? क्या नाम है आप दोनों का? बारी बारी से नाम बोलिए।
2: माय नेम इज अलीना फातिमा, आई रीड इन क्लास 5। माय स्कूल नेम इज मूसा हसन मिडिल स्कूल लाल।
1: क्या सुनाना चाहती हैं? कविता सुनाइए।
2: हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वे।

0: सब एक है, धर्म है अनेक, जिनका सार वही है, पंथ है निराला, सबकी मंजिल तो एक है।
1: वाह बहुत अच्छा, अपना नाम बोलिए। हाँ हाँ बताइए क्या सुनाना चाहती हैं, थोड़ा जोर से गाइए।
0: चल

0: ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम है उमरा परवीन, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम है मूसा समद विद्यालय स्कूल।
0: हाँ, क्या कुछ सुनाना चाहती हैं आज?
1: जी दीदी।
0: तो सुनाइए।
1: ऐ मेरे जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे मेरी आन पे सिद्ध के, चाहे मेरी जान रहे या न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरे, मेरे नस नस में तेरा एक सुबह, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून बहे, तेरी मिट्टी में मिल जाए।

0: बहुत अच्छा गीत आपने गाई, और देशभक्ति का ये गीत देश दिलों में जोश जगाने वाली थी, है ना? किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? 5 में पढ़ते हो? और कौन से स्कूल में पढ़ते हो?
1: मध्य विद्यालय लालबाग दरभंगा।
0: आपको कुछ सुनाना है?
1: हाँ।
0: तो सुनाइए।
1: चित्रकार सुनसान जगह पे बना रहा था चित्र, इतने में आ गया यमराजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए उस नदी पहाड़ पर पत्तों का नारा हो गया कुछ जोश। फिर उसे कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दू, बैठ जाइए। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया, वो सारे अंग बटरू बढ़ गया।
0: वाह बहुत अच्छा। और आपको भी कुछ सुनाना है? पहले अपना नाम बताइए।
2: माय नेम इज मोहित कुमार, आई रीड इन क्लास 5। मेरे स्कूल का नाम मूसा सा मध्य विद्यालय लालबाग दरभंगा।
0: अब क्या सुनाना चाहते हो? सुनाइए।

0: तालाब में कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेढ़ प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गए सागर में हुई सब एक है, धर्म अनेक जिनका सार वही पथ निराने सबकी मंजिल तो एक है।
1: हाँ, बहुत अच्छा और एकता वाली कविता आपने सुनाया, और ये कविता हमें क्या सीख देती है कि चाहे हम जिस भी प्रांत के हों, चाहे हम काले हों, गोरे हों, किसी भी समुदाय से आते हों, लेकिन सब एक हैं और एकता से बहुत बड़ी ताकत बनती है। ये पांच उंगलियां मिल करके जो एक मुट्ठी बनती है ना, तो कितना मजबूत बन जाती है ना। बहुत अच्छा।
2: दीदी मेरा नाम कौशिक कुमारी है, मैं आप लोगों को आज एक भक्ति गाना सुनाने वाली हूँ।
3: सुनाओ गुड़िया।
2: बाबा तुमको आना होगा।

वाह वाह गुड़िया, आपने तो बहुत अच्छा गाना गाया, और वो भी सावन के पावन महीने में शिव भक्ति से भरा हुआ। अभी आप नन्हे मुन्नों की प्रस्तुति सुन रहे थे, अब प्रस्तुत है समान ज्ञान अंक। आज हम जानेंगे बिहार की धरती पर जन्मे एक महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। प्यारे बच्चों, उनका नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सीतावदियारा गांव में हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी, जिज्ञासु और देशभक्त स्वभाव के थे। आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका गए, लेकिन उनका मन हमेशा देश की सेवा में लगा रहा। भारत लौटने के बाद वे महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। सन 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तब जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन उनका साहस और देशभक्ति कभी कम नहीं हुई। उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में देश की आज़ादी के लिए संघर्ष जारी रखा। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उन्होंने समाज की सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। वे चाहते थे कि देश में ईमानदारी, समानता और लोकतंत्र मजबूत हो। उन्होंने हमेशा युवाओं से कहा है कि वे देश के अच्छे नागरिक बने, सच का साथ दें और साथ ही अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएं। उनके महान कार्यों के कारण लोग उन्हें प्रेम से, सम्मान से लोकनायक कहने लगे। उनका सबसे बड़ा संदेश था सत्य, ईमानदारी, लोकतंत्र और देश सेवा। प्यारे बच्चों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देशभक्ति वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और देश की भलाई के लिए कार्य करे और जिम्मेदार नागरिक बने। तो यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बच्चों, इसी प्रेरक संदेश के साथ सामान्य ज्ञान का आज का अंक यही समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, आज के फुलवारी में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की सी प्रेरक कहानी, नन्हे दोस्तों की प्यारी बातें और महान स्वतंत्रता सेनानी की प्रेरक कहानी आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई प्रेरणा को लेकर आएगी। हमेशा अच्छे संस्कार अपनाइए, मन लगाकर पढ़िए, खेलिए, मुस्कुराइए और बड़ों का सम्मान करिए तथा देश का नाम रोशन करिए। इसी शुभकामना के साथ मैं आपकी रजनी दीदी, प्रस्तुत करता अमरनाथ प्रसाद के साथ विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे फुलवारी के अगले अंक में नई सीख, नई जानकारी और नई खुशियों के साथ। तब तक खुश रहिए और शिष्टाचार के नियमों का पालन करिए। जय हिंद।

प्रस्तुतकर्ता थे अमरनाथ प्रसाद। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी। आज का विषय है भूकंप और बाढ़ में सावधानी और बचाव के उपाय। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं प्रणव राज, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 0627222481 और हमारा मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें अब से कुछ ही देर बाद दिन के 11 बजे से। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो जिंदगी।

कल तक जो खड़े आशियाने, थे कल तक जो खड़े आशियाने, आज ढह गए खंडहर बनके, कोई पुकारे कोई तलाशे, मलबे में दबी है सांसे। दीवारें गिरती चीखें गूंजती, बिखरी राखी चूड़ियां टूटी। इसमें कोई दो मत नहीं कि पृथ्वी पर जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ, प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियां कभी कम नहीं रहीं। इन्हीं चुनौतियों के बीच मानव ने पाताल की गहराइयों से लेकर धरती और धरती से लेकर असीम आकाश की ऊंचाइयों तक अनगिनत आविष्कार किए और जीवन को आसान बनाने के निरंतर प्रयास भी। बावजूद इसके प्राकृतिक आपदाओं से हम हमेशा जूझते ही रहे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले अपने देश की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि हमें किसी न किसी क्षेत्र में कभी न कभी भूकंप की त्रासदी भी झेलनी पड़ती है और अक्सर बाढ़ की विभीषिका भी। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ का पूर्वानुमान तो आज संभव है, लेकिन भूकंप का सटीक पूर्वानुमान अभी भी संभव नहीं हो पाया।

0: है। यही वजह है कि भूकंप में जान माल की भारी क्षति होती है और पीड़ा हृदय विदारक है। अब सवाल ये है कि क्या भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान जैसी आपदाओं को लेकर हम ऐसी सतर्कता बरत सकते हैं जिससे हमारी और हमारे परिजनों की ज़िंदगी सलामत रह सके और साथ ही होने वाला नुकसान भी कम हो सके? जवाब है बिल्कुल हाँ। अब सवाल है कैसे? ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही अहम सवालों के जवाब तलाशने के आपके प्रयास को थोड़ा और आसान बनाने का हमारा भी एक प्रयास है, ये कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओ नमस्कार, संजय की तरफ से। भूकंप और बाढ़ में सावधानी और बचाव के उपाय, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय। और इस बेहद ज़रूरी विषय पर आप श्रोताओं को उचित मार्गदर्शन के लिए, सुझाव देने के लिए, परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में इस समय आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं प्रणव राज साहब। प्रणव राज सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी हैं दरभंगा में। श्रोताओं, भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं में सुरक्षा को लेकर आप अपनी जिज्ञासा प्रणव राज से व्यक्त कर सकते हैं, उचित जानकारी और परामर्श ले सकते हैं। आप हमें फ़ोन करें, नंबर हम बताते हैं 9430029353, दूसरा नंबर है 0627222481। श्रोता हम आपको बता दें कि हमारा बेसलाइन जो है उस पर आप अगर फ़ोन करें तो हमारी आपकी बातचीत सही तरीके से हो जाएगी, इसलिए बेसलाइन का नंबर हम एक बार फिर से बता दें आपको 0627222241, 0627222481। दूसरा नंबर आपकी सहूलियत के लिए है 9430029353। विषय आज का भूकंप और बाढ़ में सावधानी और बचाव के उपाय। विशेषज्ञ हैं दरभंगा के आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, सहायक पदाधिकारी प्रणव राज। प्रणव राज जी, आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में और कार्यक्रम हेलो जिंदगी में पहली मर्तबा आप पधारे हैं, आपका स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं सर, ये बताइए।
1: नमस्कार, आपके माध्यम से हम आकाशवाणी दरभंगा के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं। हमारा
0: जी बहुत सारी बातें होंगी आज भूकंप और बाढ़ को लेकर, जो आप प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आपदाएं तो बहुत सारी हैं
1: जी,
0: प्राकृतिक भी है और कुछ आपदाएं हम लोगों के द्वारा बनाई हुई आपदाएं भी। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के भी लोग कहते हैं कि हमने कुछ ऐसे कार्य किए हुए हैं कि प्रकृति हमसे रूठ गई है, और भूस्खलन हो, बाढ़ की विभीषिका हो, ये सारी चीज़ें हम पूरे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि किसी की भी ज़िंदगी बहुत ही अहम है, और आपदाओं में ज़िंदगी चली जाए
1: जी,
0: परिवार का परिवार नाश हो जाए, जान माल का नुकसान हो, भारी नुकसान हो, ये ना हम चाहते हैं ना कोई चाहता है।
1: ये जो क्षेत्र है सर, आपका श्रवण क्षेत्र और उत्तर बिहार का क्षेत्र, ये बहु आपदा प्रवण क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की आपदाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं तथा कुछ स्थानीय प्रकृति की आपदाएं भी जैसे कि सर्पदंश, वज्रपात, डूबने की घटनाएं होती रहती हैं।
0: जी,
1: भूकंप के संदर्भ में ये कहना है कि हिमालय से समीप निकट होने, हिमालय के निकट होने के कारण यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रोन है, काफ़ी ज़्यादा प्रवण है भूकंप के लिए। बाढ़ जैसे कि आपने बताया कि बाढ़ में हमें पहले से वार्निंग मिल जाती है, एक दो दिन का समय रहता है कि हम लोगों को रेस्क्यू करके ले जा सकें। भूकंप में अगर सूचना मिल भी जाती है तो ये चंद सेकेंडों या फिर चंद मिनटों का रहता है।
0: प्रणव राज जी, बहुत सारी बातें होंगी भूकंप से बचाव को लेकर, बाढ़ की विभीषिका में अगर हम घिर भी जाएं तो कैसे अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिजनों को सुरक्षा के दायरे में लाएं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे आज पूरे कार्यक्रम में। एक सहज सी जिज्ञासा उन सब के लिए तो ज़रूर होगी ना कि प्रणव राज जी कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आते हैं और जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के पद तक आप पहुँचे हैं, ये सफ़र कैसा रहा है संक्षेप में बता दें। एक श्रोता हमारे इस समय फ़ोन लाइन पर हैं, पहले हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर ज़रूरी बातें उनकी रह जाएंगी।
1: जी
0: नमस्कार, हेलो।
2: हेलो
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: नमस्कार सर, जय हिंद।
0: जय हिंद।
2: मैं मोहन पासवान गाँव बसतपुर

0: गाजीपुर जिला दरभंगा से बोल रहा हूँ सर।
1: मोहन पासवान जी बताइए क्या जिज्ञासा है।
0: जिज्ञासा है सर की भूकंप क्यों कब कैसे आता है, जानलेवा भूकंप से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या सब हो सकता है सर। दूसरा है सर की पूरे देश के छोटे बड़े नदियों में फाटक बांधने का सरकार की योजना है क्या, जिससे बाढ़ और सुखाड़ से बचा जा सके सर। हम लोग यहाँ सर बाढ़ नहीं आता है सर, आंगन का चापाकल और वनों का बोरिंग हमारा और किसानों का पानी नहीं देता, ऐसे में बाढ़ से या सुखाड़ से कैसे सामना किया जा सकता है सर, जबकि नजदीक में कुछ नदियां हैं जीवच कमला और छोटे नदियां, उसमें भी पानी नहीं रहता है सर। कुछ सुझाव है सर बाढ़ और भूकंप के बारे में, सुझाव है सर
1: जी जी,
0: पानी तो ऊंचे स्थान से नीचे की ओर छोटा चलने लगता है सर, हिमालय ऊंचे स्थान है जहाँ से पानी का बहाव नदियों में योजना के तहत जोड़कर सुखाड़ और बाढ़ से किसानों को बचाया जा सकता है सर। पूरे देश में सर ये काम प्रधानमंत्री जी की योजना में है या नहीं सर। दूसरा है कि सर हवा मापी यंत्र पानी मापी यंत्र बना हुआ है सर, भूकंप से पहले हवा और पानी में ही प्रभाव दिखाई देता है सर। तो देश दुनिया में नदियों में पहाड़ों में गांव के बोरिंग में वाटर प्रूफ भूकंप मापी यंत्र लगाकर पहले ही भूकंप के बारे में पता लगाया जा सकता है सर।
1: चलिए बहुत सारी बातें आ गई हैं मोहन पासवान जी, और आपने सहर्ष जिज्ञासा पहले व्यक्त कर दी कि भूकंप आता कैसे है, बचाव के उपाय क्या है, बाढ़ तो आती नहीं, सुखाड़ की भी स्थिति आ जाती है, चापाकल सूख गए हैं।
0: क्या है कि जब ज्वालामुखी को जब चट्टान द्वारा धुआं आता है तो भूकंप आता है सर। सर ज्वालामुखी बनने एवं उस पर दबाव बनने में तो क्रिया प्रतिक्रिया वर्षों बरस तक होता होगा, इस बीच विज्ञान क्यों नहीं पता लगा
1: विज्ञान। देखिए विज्ञान ने इतने खोज तो कर रखे हैं कि मोहन पासवान जी के पास ये सवाल बचा हुआ है ना। चलिए सुनिएगा कार्यक्रम को, एक एक कर हम चर्चा करेंगे पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि आपके सवाल बहुत बहुत से हैं और एक जगह सारे सवाल का जवाब दे दें तो पूरा कार्यक्रम निकल जाएगा। मोहन पासवान जी सुनिएगा रेडियो को बढ़िया से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन पासवान जी।
0: जी
1: प्रणाम। मोहन पासवान जी के बहुत सारे सवाल आ गए हैं, लेकिन उससे पहले जो सवाल वो है कि प्रणव राज जी कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आते हैं और जहाँ तक पहुँचे हैं, ये सफ़र कैसा रहा है?
2: सर मैं पूर्वी चंपारण जिले का रहने वाला हूँ। प्रारंभिक मेरी शिक्षा दीक्षा सैनिक स्कूल गोपालगंज से हुई थी।
1: अच्छा।
2: उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से किया। उसके बाद 68वीं बीपीएससी के माध्यम से जो संयुक्त परीक्षा होती है उससे चयनित होकर मैं सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के पद पर चयनित हुआ और मेरा पहला पदस्थापन ही दरभंगा में था, वर्तमान में मैं यहीं पर।
1: हमारी शुभकामनाएं हैं प्रणव राज जी, और जिस क्षेत्र विशेष में आप अपनी सेवा दे रहे हैं आप आगे तक जाएं और आपकी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो, हमारी शुभकामनाएं। सवाल पहला ये आ गया है कि भूकंप आता कैसे है।
2: जी जी।
1: ज्वालामुखी की उन्होंने चर्चा खुद ही कर दी है, ये भी कह दिया कि इस पर रोक लगाने के लिए साइंस अब कहाँ है।
2: थोड़े सामान्य शब्दों में हम समझाएं तो जो हमारी धरती की बहुत सारी प्लेट्स हैं उन प्लेट्स के टकराव से, उनके अलग होने के खिंचाव से भूकंप आता है। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारे देश के या फिर राज्य के उत्तरी हिस्से में हिमालय पर्वत है वो काफ़ी एक्टिव है, भौगोलिक रूप से काफ़ी एक्टिव क्षेत्र है, तो वहाँ पे नए पर्वतों का निर्माण होते रहता है जिसकी वजह से वहाँ के जो प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। उसकी वजह से प्लेट्स में हल्की सी भी यदि मूवमेंट होती है तो उससे वेव्स जनरेट होती हैं और वो वेव्स नीचे ट्रांसमिट होती हैं। हमारे यहाँ ये है कि जो जलोढ़ मिट्टी है हमारा, वो काफ़ी नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं, इस वजह से जो मिट्टी है वो भूकंप के प्रभावों का विस्तारण काफ़ी तेजी से करती है, जो उत्तर भारत उत्तर बिहार खास करके जो क्षेत्र है, तो इसी कारण जो हिमालय से वेव्स जनरेट होती हैं यहाँ की मिट्टी में काफ़ी तेजी से वो बढ़ती हैं और जो भवनों के बेस होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से भूकंप का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है।
1: यानी जो नींव है मकान के मिट्टी के साथ जो उसका कसाव है
2: वही कमज़ोर है, मिट्टी यहाँ की फ्लूइड नेचर की है, तरलीय।
1: लेकिन सच तो ये भी है कि धरती कांपती है।
2: जी जी।
1: सच तो ये भी है कि जब धरती कांपती है अगर वो जोर से कांप देना 8 से ऊपर अगर रिस्कल

0: पर उसका चला जाए पैमाना, तो अच्छी अच्छी इमारतें जो है ढह जाती हैं, ये भी तो सच है।
1: अगर भवनों के हिसाब से बात करें तो वो भवन जिनके नींव एकदम धरती से अटैच्ड रहते हैं, जैसे कि आजकल भूकंपरोधी मकानों के निर्माण की चर्चा होती है, उसमें एक टर्म आता है कि बेस को आप रिमूव कर दे धरती से।
0: अच्छा,
1: तो बेस अगर एकदम धरती से जुड़ा हुआ रहेगा तो जितना इम्पैक्ट आएगा उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, लेकिन वहीं आप डैम्पनर वगैरह की मदद से, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे बिहार राज्य में जो एक सरदार पटेल भवन है जहाँ पे बिहार पुलिस का मुख्यालय भी अवस्थित है और आपदा प्रबंधन विभाग का कार्यालय भी अवस्थित है, बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि आप बेस को अलग कर देते हैं जमीन से डैम्पनर वगैरह के यूज करके न्यू में, तो उस वजह से जो पूरा फोर्स होता है पूरा ट्रांसमिट नहीं होता है और बहुत हद तक वो खाली चला जाता है, जो कि हम कहें कि वार खाली चला जाता है।
0: अच्छा अच्छा यानी अगर साइंटिफिक तरीके से जो चीज़ें बताई जाती हैं विशेषज्ञों के द्वारा कि आप इस तरह से अपने मकान की संरचना रखें, तो फिर भूकंप की जो त्रासदी है, इमारतों के ढहने की जो समस्या है, वो कम हो,
1: काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। इस संबंध में हम दर्शकों को एक और बात बताना चाहेंगे, दरभंगा जिले

0: में ट्रांसमिट हो जाएगा, लेकिन वहीं आप डैम्पनर वगैरह की मदद से, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहेंगे बिहार
1: जी
0: राज्य में जो एक सरदार पटेल भवन है जहाँ
1: जी
0: पे बिहार पुलिस का मुख्यालय भी अवस्थित है और आपदा प्रबंधन विभाग का कार्यालय भी अवस्थित है, बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि आप बेस को अलग कर देते हैं
1: जी
0: ज़मीन से डैम्पनर वगैरह के यूज़ करके न्यू में, तो उस वजह से जो पूरा फोर्स होता है पूरा ट्रांसमिट नहीं होता है और बहुत हद तक वो खाली चला जाता है, जो कि हम कहें कि वार खाली चला जाता है।
1: अच्छा, यानी अगर साइंटिफिक तरीके से जो चीज़ें बताई जाती हैं विशेषज्ञों के द्वारा कि आप इस तरह से अपने मकान की संरचना रखें, तो फिर भूकंप की जो त्रासदी है, इमारतों के ढहने की जो समस्या है, वो कम हो
0: काफ़ी
1: जाएगी।
0: हद तक कम हो सकते हैं। इस संबंध
1: हाँ,
0: में हम दर्शकों को एक और बात बताना चाहेंगे,
1: हमारे
0: दरभंगा ज़िले में ही
1: दर्शक तो नहीं लेकिन श्रोता
0: श्रोता, जी, माफ़ी चाहूँगा, मैं श्रोताओं
1: है।
0: को मैं
1: जी जी
0: बताना चाहूँगा
1: हाँ,
0: भूकंप रोधी मकानों के
1: लेकिन
0: जो मॉड,
1: एक एक जो है ना अक्स, एक इमेज
0: सर
1: दिमाग में भी
0: जी जी
1: बनता
0: बिल्कुल
1: है। जो
0: माफ़ी
1: लोग
0: में
1: सुन रहे होंगे उनके दिमाग में भी एक इमेज होगा कि हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं, इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो वो दर्शक भी हैं, श्रोता भी हैं, कोई बात नहीं है। इमेज भीतर है, आवाज़ कान में आ रही है।
0: एक
1: जी
0: बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हम मकानों को भूकंप रोधी निर्माण के समय ही बना सकते हैं,
1: जी
0: निर्माण जिन मकानों का हो गया उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हम दूर करना चाहेंगे कि रेट्रोफिटिंग जो टेक्निक होती है उससे आप पूर्व से निर्मित मकानों को भी भूकंप रोधी बना सकते हैं। जैसे कि मकानों में कुछ कमजोर हिस्से होते हैं, जैसे खिड़की के ऊपर वाला हिस्सा पहले भूकंप आने पे वहीं ढहता है और कांच उसमें लगे रहते हैं जिसकी वजह से और ख़तरनाक हो जाता है, उनकी रेट्रोफिटिंग के माध्यम से आप जैकेटिंग या ब्रैकेटिंग कर सकते हैं लोहे के सरिया या छड़ डाल के। इस संबंध में हम यही बता रहे थे कि दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 मॉडल हैं, यदि आप
1: अच्छा।
0: नए मकान बना रहे हैं तो भी, और अगर आपके पास पहले से निर्मित मकान है तो उसकी रेट्रोफिटिंग करके उसको कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, या फिर इस क्षेत्र में बहुत बार बांस के घर बनाए जाते हैं तो
1: हाँ,
0: बांस का घर भी भूकंप रोधी मॉडल कैसे हो सकता है, कैसे उसको बेस से अलग करके रखा जाता है। 3 फुल साइज मॉडल है, हमारा आपके श्रोताओं से अनुरोध होगा कि एक बार जाके वहाँ पर देखें और उसको अपना, अगर यदि घर बना रहे हैं तो खर्च में ज़्यादा नहीं बढ़ता है, 10 से 25% के बीच में बढ़ता है, थोड़ा अच्छा नक्शा थोड़ी अच्छी प्लानिंग से भूकंप रोधी मकान बनाया जा सकता है जिससे आप फर्स्ट लेवल ऑफ जो पहला स्तर होता है भूकंप से बचाव का वो आप पार कर लेते हैं यदि आपका घर सुरक्षित है तो।
1: जिन लोगों ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है, या फिर जो बिल्डर्स ऊंची-ऊंची इमारतें बनाते हैं, अगर उसमें वो फ्लैट लेने वाले हैं और इमारतें बनाई जा रही हैं, तो एक बार ज़रूर पूछिएगा बिल्डर से कि भाई आप जो बना रहे हैं वो भूकंप रोधी है या नहीं है। अगर है तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसका तरीका क्या है, ये सब समझ लेने से ज़्यादा सहूलियत होगी, पहली
0: बिल्कुल
1: बात।
0: बिल्कुल
1: दूसरी बात कि लोगों में एक जागरूकता भी आएगी, हम आंख मूंद कर घर फ्लैट क्यों खरीदें, है ना। पैसे आपके हैं, ज़िंदगी आपकी है, बचाव भी आपकी होनी चाहिए, सुरक्षा भी आपका सवाल है, तो एक बार तय कर लें। और अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने मकान बनाने को लेकर के, तो एक बार ज़रूर सोचें और अच्छे से सोचें, समय ले लें थोड़ा सा, और उसके बाद पिलर डालें, नींव खोदें, जैसे आप मकान बनाते हैं उस तरह से मकान बनाएं, लेकिन भूकंप रोधी मकान बनाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है।
0: एक और सुझाव होगा, यदि
1: हाँ
0: बहुमंजिली इमारतों में आप घर ले रहे हैं तो वहाँ सिर्फ भूकंप रोधी मकान होने के अलावा इवैक्यूएशन प्लान होना भी जरूरी है। यदि भूकंप
1: अच्छा।
0: आ जाए तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं उसमें लोग लिफ्ट के माध्यम से ही आते जाते हैं, बहुतों को पता ही नहीं रहता है कि सीढ़ियाँ भी हैं।
1: इस चर्चा को जारी रखेंगे, हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, हेलो।
2: अशन नमस्कार, हेलो।
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम आस्था है और मैं बलभद्रपुर मैपटोल से बोल रही हूँ।
1: जी आस्था जी, बताइए क्या जिज्ञासा है।
2: मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा 2 मंजिला घर है, मैं ऊपर में रहती हूँ, तो अगर भूकंप आएगा तो मैं उससे बच कैसे सकती हूँ।
1: 2 मंजिला घर है आस्था का। ये ऊपर की मंजिल पे रहती हैं, इनकी चिंता ये है कि अगर भूकंप आ गया तो फिर ये बचेंगी कैसे। जी
0: जी सबसे पहले तो आस्था जी नमस्कार, यदि आप इंडोर हैं और दूसरी मंजिल पे हैं तो सबसे पहले भूकंप आने की स्थिति में आप बाहर निकलने का प्रयत्न करें, कोई मजबूत फर्नीचर जैसे कि टेबल होता है झटके मुश्किल से 5 से 7 सेकंड के लिए रहते हैं, तो किसी मजबूत फर्नीचर को पकड़ के उसके नीचे आप शरण ले लें और उसको पकड़ के रखें जब तक कि झटके ख़त्म नहीं हो जाते हैं। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके सिर का बचाव, क्योंकि जो हमारा सिर होता है जनरली हमारी लाइन ऑफ साइट के ऊपर होता है तो ऊपर से गिरने वाले मलबे को हम नहीं देख पाते हैं, तो ज़्यादा सेफ होता है कि आप पहले सिर को बचाएं, झटकों के ख़त्म होने का इंतज़ार करें। आप दूसरी मंजिल पर रहती हैं तो सीढ़ी से ही नीचे उतर के आती होंगी, दूसरा भूकंप का जब झटका खत्म होता है तो सबसे पहले पावर स्विच ऑफ कर दीजिए,

0: क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बिजली के तारों में, स्पार्क प्लग वगैरह में आग लग जाती है और आप घर छोड़ के जा रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप बिजली के उपकरणों को बंद, बिजली के उपकरण नहीं, मेन स्विच को बंद कर दे और बाहर घर से निकल जाए, सीढ़ियों से निकले। दूसरा मेरा सुझाव होगा कि
1: गैस सिलेंडर को बंद कर दें।
0: जी जी बिल्कुल, गैस लीकेज जी जी, और यदि गैस लीकेज की आशंका हो तो खिड़कियों को खोल दें। खिड़कियां जनरली खुल जाती हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा आशंका हो कि आपके घर में गैस लीक हो रहा होगा तो खिड़कियों को खोल के बाहर निकले। एक और सुझाव होगा कि पहले से आप एक इमरजेंसी किट बना के रखें। बहुत बार आपदा की स्थिति में हम लोग अपने जरूरी कागजातों को छोड़ देते हैं, जरूरी कागजात छूट जाते हैं, या फिर यदि हम किसी दवा पे होते हैं, मेडिकेशन पे होते हैं, घर में कुछ बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए दवाइयाँ जरूरी होती हैं। तो निकलने का तो मार्ग ये है कि 5-7 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा झटका, आप सीढ़ियों से बाहर निकल जाए, लेकिन अपने साथ एक इमरजेंसी किट जरूर तैयार रखें जिसे लेके आप बाहर निकल सके, ताकि वो आपके बाद में काम आ सके।
1: इतना अगर कर लें आस्था, है ना, तो बचाव हम समझते हैं कि करना आसान होगा। जी नमस्कार जी, आस्था की मुश्किल ये है कि 2 मंजिला इमारत में ऊपर रहती हैं और भूकंप आ जाए तो फिर कैसे निकले।
0: इसमें हम थोड़ा सा और एलोबोरेट करना चाहेंगे जो मैंने उनको बताया कि हमें सर ही बचाना होता है भूकंप में, क्योंकि आँख हमारा सर के ऊपर की चीज़ों को नहीं देख पाता।
1: सही बात है।
0: तो यदि कुछ नहीं मिल रहा हो तो उकड़ू बैठ के अपने सर को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोगों के घर में फर्नीचर वैसा नहीं रहता है कि जिसमें आप अंदर घुस पाए, बहुत सकरा होता है टेबल, आजकल ड्रॉर वाले आने लगे हैं तो आप उसके अंदर तो नहीं ही जाएंगे। तो किसी भी कोने में बैठ के, कुछ नहीं हो तो सर पे एक तकिया रख के अपने सर को प्रोटेक्ट कर ले 5-7 सेकंड के लिए, ताकि उसके बाद आप निकले, क्योंकि सर का बचाना उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। जो हेड की इंजरी होती है वहीं ग्रीवियस हो जाती है बात।
1: प्रणव राज जी, जब भूकंप की संभावना क्या होती है, भूकंप तो कभी कह करके आने वाली स्थिति होती ही नहीं है, ऑल ऑफ सडन होता है, लेकिन कहा जाता है कि जब भूकंप आता है ना तो कई बार लगातार आने की संभावना रहती है।
0: जी जी,
1: थोड़े थोड़े अंतराल पर, तो पहला झटका हो सकता है कमज़ोर हो, दूसरा झटका उससे ज़्यादा घातक हो।
0: इसे स्वाम्स कहते हैं कि 2-3 घंटे तक झटकों में विभिन्न, क्योंकि जो धरती के चट्टानें फंसी हुई हैं या प्लेट्स जो फंसी हुई हैं वो अचानक से तो छूट नहीं जाती है, हल्का सा छूटती हैं फिर हल्का सा छूटती हैं, इसीलिए प्रथम झटके के बाद ही सलाह दिया जाता है कि प्रथम झटके को आप इंडोर में झेल लें, अपने घर के अंदर झेल लें, लेकिन उसके बाद आप बाहर आ जाए खुले मैदान में। खुले मैदान में भी आते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि आप बिजली के पोल या फिर पेड़ वगैरह से दूर रहे, ताकि बिजली का तार आपके ऊपर न गिरे। ये इसीलिए दिया जाता है, जैसा कि आपने बताया कि पहला झटका बहुत बार कमजोर रहता है, जो दूसरा झटका रहता है वो ज़्यादा मजबूत रहता है। तो यदि आप किसी ऐसे खुले जगह पे खड़े हैं जो कि गली है, 2 मकानों के बीच की गली, तो आप और ज़्यादा असुरक्षित हो जाते हैं पूर्व की तुलना में।
1: सही है। और कभी कभी पहला झटका भी बहुत ही मजबूत आ सकता है, ये भी है, ऐसा नहीं है कि हम पहले झटके को कम समझ के उसको इग्नोर करें, ऐसा नहीं है। कभी कभी पहला झटका भी बहुत दमदार आ सकता है। ऐसी स्थिति में पहला काम है, जैसा कि प्रणव राज जी ने बताया, कि पहले अपने प्राण की रक्षा करनी है, ज़रूरी किट हमेशा रखना है भाई, 24 घंटे, चाहे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आप हों या फिर भूकंप की संभावना को देखते हुए कुछ दवाइयाँ ऐसी रखनी है जो सबके काम आ सके, सिर्फ आपके नहीं पूरे परिवार के काम आ सके। और एक किट और रखनी होगी जिसमें टॉर्च हो, रेडियो।
0: जी जी, इमरजेंसी किट, बैटरी चालित रेडियो सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हमारा पावर कनेक्शन ही खत्म हो जाता है। आज के समय में लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो मेरा सुझाव होगा कि एक पावर बैंक रखें ताकि आप अपना फोन चार्ज कर सके। टॉर्च जो होते हैं वो रिचार्जेबल नहीं, एक बैटरी चालित टॉर्च भी रखें, क्योंकि बिजली कटेगी तो अगले 2-3 दिनों तक बिजली के आने की संभावना नहीं रहती है।
1: सही बात।
0: तो बैटरी चालित रेडियो, बैटरी वाला टॉर्च, पावर बैंक, आवश्यक दवाइयाँ, आवश्यक कागजात। बहुत बार ऐसा होता है कि भूकंप के बाद धूल काफ़ी फैलती है, मलबा गिरता है, तो मेरा सुझाव होगा कि आप सब N95 या मास्क रखें, ताकि यदि आप मूव कर रहे हैं कहीं पे तो धूल से आप खुद को बचा सके। उससे ज़्यादा आप इंतज़ाम करना चाहते हैं तो 3 दिनों का सूखा राशन आप रख सकते हैं, ताकि आप किसी और पर आश्रित नहीं रहें, आप खुद से ही अपने परिवार की ज़रूरतों को मैनेज कर सके। हैलोजन टैबलेट्स जरूरी है, क्योंकि पेयजल दूषित हो जाता है, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता किसी भी आपदा की स्थिति में एक बड़ी चुनौती होती है। तो हैलोजन टैबलेट्स रखें ताकि अपने वाटर को आप खुद प्योरीफाई कर सके और पी सके।
1: सबसे पहले जब हम बाहर निकल आए घर से भूकंप के समय, उसके बाद हम क्या करें, क्योंकि जो समय होता है वो बहुत तेज़ी से बीत रहा होता है और घबराहट और बेचैनी का समय होता है। मोबाइल काम करना बंद कर देता है प्रणव राज जी।
0: जी जी,
1: एक दशक पहले जब भूकंप आया

0: था तो अचानक से कुछ घंटे के लिए मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे से जुड़ना चाह रहे थे। क्षति नहीं हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि खंबे उखड़ गए थे, मोबाइल टावर गिर गए थे, ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी, फिर भी बात नहीं हो रही थी।
1: ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आप अगले झटकों के लिए खुले मैदान में जाए, वहाँ पे प्रशासन की तरफ से आपको कोई ना कोई मदद पहुँची जाएगी, और कोई भी सरकारी बिल्डिंग वहाँ का जो कि चिन्हित होता है, सामुदायिक भवन।
0: एक श्रोता जुड़ गया है।
1: जी जी बिल्कुल, पहले उनका।
2: हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा रही है।
3: हेलो
2: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: नमस्कार
2: जी, अपना नाम बता दें और जिज्ञासा व्यक्त करें। जी
3: सर,
2: अपना नाम बता दें।
3: रमेश कुमार।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं रमेश?
3: दरभंगा से।
2: जी क्या सवाल है, क्या जिज्ञासा है, बताइए।
3: सर मेरा कोई जिज्ञासा नहीं है, मैं यही कहना चाहता था सर, ये आपका धन्यवाद कि आपने ये प्रोग्राम दिया है।
2: अच्छा,
3: जो हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है,
2: रमेश
3: मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा।
2: अच्छा, रमेश क्या करते हैं आप बताइए, आप क्या करते हैं रमेश?
3: क्या चीज़ सर?
2: आप क्या करते हैं रमेश?
3: मैं सर अभी पढ़ाई करता हूँ।
2: अच्छा, तो क्या आपको बाढ़ और भूकंप में सुरक्षा को लेकर कुछ पूछने की कोई जरूरत महसूस हो रही है?
3: नहीं आ रही है।
2: मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बाढ़ और भूकंप को लेकर, सुरक्षा को लेकर के कोई चीज़ आपको पूछनी है, कोई सवाल पूछनी है? लगता है
3: क्या आवाज़ नहीं आ रही आपके सर क्लियर?
2: मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोई सवाल भी है आपकी तरफ से?
3: नहीं सर,
2: सवाल नहीं है, बस इन्होंने धन्यवाद दिया है। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद हमारी तरफ से भी कार्यक्रम को सुनने हैं इसलिए। रमेश जुड़े थे, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं ये कार्यक्रम में, और ये एक अच्छी बात है। और सवाल ये भी है कि ये कार्यक्रम है भी इसीलिए कि हमारे जो श्रोता हैं वो जागरूक हों और कार्यक्रम से लाभ उठावें।
1: श्रोताओं को हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे,
2: जहाँ से बात शुरू हो रही थी कि प्रशासन के लोग होंगे मैदान में, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो राहत का जो कार्य है ना, प्रशासन की तरफ से उसी जगह, किसी ऐसी जगह पर शुरू किया जाता है जहां बहुत सारे लोग हों और लोगों की आवश्यकताएं एक जगह पूरी हो सके,
1: और ऐसे समय में प्रशासन ही आपके हेल्प करने के लिए आता है। तो कोई भी प्रशासनिक जगह, यदि आप हेल्प के लिए, पहली बात तो यह है कि प्रशासन आप तक खुद पहुंच जाएगा, वैसी स्थिति में जो आपातकालीन सेवाएँ होती हैं वो पहुँच जाते हैं, अग्निशमन सेवाएँ रहती हैं, वॉलंटियर्स रहते हैं, SDRF रहते हैं, वो पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि आपको उस समय समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई भी प्रशासनिक कार्यालय, कोई भी प्रशासनिक भवन, उसकी तरफ जाने की कोशिश करें, कि वो मतलब सुरक्षित भवन हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पुलिस थाने के पास चले जाएं। पुलिस जनरली प्रशासन का सबसे विजिबल, सबसे दृश्य चेहरा होता है, उसको सब लोग पहचानते हैं। ऐसे आप किसी और प्रशासनिक कर्मी को या अधिकारी को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन आप पुलिस को पहचान सकते हैं। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए भी उस समय आ जाती है, तो उनको जाके अप्रोच करें। वो संबंधित राहत शिविर जो कि बनाए जाते हैं ऐसी आपदा की स्थिति में, या फिर वैसे शिविरों में जहाँ पे लोगों को रखा जाता है, वहाँ पे आपको ले जाएंगे। वहाँ
2: श्रोता जुड़ गए। हेलो
4: जी,
2: जी नमस्कार
4: जी, मैं अरुण कुमार लाल दास सुंदर कुरबीरा दरभंगा से बोल रहा हूँ।
2: जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अरुण कुमार लाल दास जी बताइए।
4: पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि आपके जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जो आपने भूमिका जो आप बांधते हैं वो बहुत अच्छी होती है ना, और इससे जानकारी भी लोगों को मिलती है। एक्सपर्ट के पहले जो आप बोलते हैं वो बहुत अच्छी बोलते हैं,
2: धन्यवाद।
4: पहली बात। दूसरी बात ये आप कहना चाहेंगे कि 15 जनवरी 1934 को दरभंगा में भयंकर भूकंप आई थी, इसके बाद फिर अगस्त 1988 में आई थी। उस समय में जो यहाँ पर विनाशकारी घटना हुई उससे सरकार ने कोई भी, आज तक दरभंगा में तो कम से कम हमने नहीं देखा कि भूकंप से संबंधित कोई ऐसा माने सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम चलाया गया हो। आप बताइए कि अभी क्या चल रहा है सरकार के पास?
2: अरुण कुमार लालदास जी जुड़ने के लिए धन्यवाद, भूमिका की बात की उसके लिए भी धन्यवाद, और इतने अहम विषय को लेकर आज कार्यक्रम है। आपने 15 जनवरी 1934 की त्रासदी याद दिला दी, क्योंकि वो त्रासदी इतनी बड़ी थी कि उसी दिन से जो है विशेष सप्ताह मनाया जाता है।

0: ने पूछा है कि आखिर हम अपनी मतलब घटनाओं से सीखते क्यों नहीं है और कार्य ऐसे क्यों नहीं करते हैं कि इस त्रासदी को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके।
1: बड़े ही सम्मान के साथ अरुण जी, हम आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करते हैं। 1934 के भूकंप की आप बात कर रहे थे, 1934 के भूकंप से बाकी लोगों ने सीखा हो या नहीं, लेकिन जिस जिले के हम निवासी हैं, दरभंगा शहर ने बिल्कुल सीखा था। एक नरगोना पैलेस है दरभंगा जिले की ऐतिहासिक धरोहर। 1934 भूकंप में यहाँ के बहुत सारे बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गए थे, तो जो नरगोना पैलेस का निर्माण किया गया था, ये भारत का सबसे पहला भूकंपरोधी बिल्डिंग माना जाता है। 1988 के भूकंप में ये पैलेस सुरक्षित रहा, 2015 में भी ये सुरक्षित रहा। तो ये तो खैर पुरानी बातें हो गई, इस वर्ष का हम बताते हैं। 1934 के ही भूकंप के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा 15 जनवरी से 21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें कि विभिन्न जो एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा लोगों को जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है तथा प्रशिक्षित किया जाता है। इस वर्ष के संबंध में हम आपको बताएंगे, 2026 में ही फरवरी 26 को दरभंगा जिले में व्यापक रूप से NDMA के सहयोग से भूकंप मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया था, प्रॉपर मॉक ड्रिल मॉक अभ्यास।
2: कहां पर हुआ था ये आयोजन?
1: ये दरभंगा जिले के 6 स्थलों पे हुआ था। उदाहरण स्वरूप हम आपको बता देते हैं, एक कलेक्ट्रेट का बिल्डिंग था, एक रिलायंस ट्रेंड था राजकुमारगंज, यदि आप मीडिया में फॉलो कर रहे होंगे तो वीडियो फुटेज भी उसकी आई होंगी, सैदनगर का पेट्रोल पंप, इन सब जगहों को सिमुलेशन साइट के रूप में चिन्हित किया गया था। यहाँ प्रशासन के लोग थे, स्वास्थ्यकर्मी थे, SDRF के लोग थे, अग्निशमन के लोग थे, कि यदि वास्तव में भूकंप आता है, मलबा गिरता है, कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो उनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। हमारा सुझाव होगा आप YouTube पे जाके उस दिन की वीडियो सर्च कर सकते हैं, ताकि हम थोड़ी सी, हम मानते हैं हमारे पार्ट में कमी रही कि आप तक ये खबर नहीं पहुंची, लेकिन उस समय दरभंगा जिले में काफ़ी व्यापक स्तर पे हुआ था, सिमुलेशन साइट, राहत शिविर वगैरह का चयन करके। जी जी, 26 फरवरी 2026, कहीं भी आपको इसका साक्ष्य मिल जाए
0: जिला प्रशासन की तरफ से। जी हाँ,
2: और साहब एक मिनट आपको रोकेंगे
0: जी,
2: मकान जब हम बना रहे हैं उस वक्त, मकान बनाते वक्त में क्या क्या क्या मैंने हम लोगों को सुरक्षा का उपाय करना चाहिए नींव में?
0: नींव डालने के समय क्या करना चाहिए?
1: जी, नींव के संबंध में ये कहा जाता है कि बेस आइसोलेशन, आप नींव को जितना अलग करके रख सकते हैं जमीन से, बेस आइसोलेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप नींव का जो कॉन्सेप्ट आया था वहीं से आया था, पहले लोग सीधे धरती पे मकान बना देते थे, लेकिन उसके बाद पिलर का कॉन्सेप्ट आया कि लोग पिलर देते थे फिर मकान बनाते थे। इसका यही होता है मेन रीज़न कि आप धरती से उसको अलग करके रखें। अभी के समय में बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कि आप नींव को जितना धरती से अलग करके, अलग करने का तात्पर्य यह नहीं कि आप धरती से ऊपर उठा के रखें, लेकिन इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें कि जो धरती पे प्रेशर है या फोर्स है वो नींव से अलग रहे। इसके अलावा जो आपकी दीवारें हैं, जो लिंटल वगैरह आप डालते हैं, उसमें जो हम लोग छड़ों को डालते हैं उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, डेढ़ गुना कर सकते हैं, जिसको जैकेटिंग बोला जाता है। जैसे कि आपकी खिड़की है, खिड़की के आपके जो शीशे होते हैं, बहुत बार भूकंप के झटकों से उनको टूटने की संभावना रहती है, बड़ी इमारतों में आप देखे होंगे जी, तो क्रिस क्रॉस करके जो रहते हैं उसको जैकेटिंग बोलते हैं, ताकि यदि झटका आए भी तो वहीं पर रुक जाए, गिर के बाकियों को क्षति न पहुँचाए। दीवालों में आप ब्रेसिंग करा सकते हैं, दीवाल जनरली खाली रहती है तो थोड़े थोड़े अंतराल पे आप वहाँ पे छड़ डाल के दीवालों की ब्रेसिंग करा सकते हैं। यही सब तरीके हैं, इनसे आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं।
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: और एक बात और भी,
2: धन्यवाद
0: अरुण लालदास जी, एक बात और भी सुन लीजिए, जिन जो जो लोग मकान बना चुके हैं वो चाहें तो उसके उसकी संरचना में थोड़े से परिवर्तन से भी भूकंपरोधी जो मकान की परिकल्पना है वो पूरी की जा सकती है, उसमें सिर्फ 1/4 ज़्यादा खर्च आएगा। जितने का मकान बना चुके हैं उसमें अगर 25% खर्च अगर आप और जोड़ लेते हैं तो बहुत हद तक भूकंपरोधी क्षमता आपके मकान में आ जाएगी। अगर ज़्यादा जानना चाहते हो तो फिर प्रणव राज जी बता सकते हैं आपको ये कैसे हो सकता है। प्रणव जी,
1: जी मैंने पहले आपको जो वहीं बताया था जैकेटिंग की टेक्निक, कि आपके पुराने जो बने हुए घर रहते हैं वो कुछ कुछ हिस्सों पे कमज़ोर रहते हैं, जो कि खिड़की के पास का रोशनदान होता है वहाँ के पास का, वहीं पे सबसे कमज़ोर रहते हैं और वहीं से टूटने की आशंका या संभावना रहती है, तो उन क्षेत्रों को आपके मकान के, उनको मजबूत किया जाता है वापस छड़ डाल के।
0: एक बात और भी है कि अगर नीचे के मंजिल में जहाँ खिड़की है, हमने देखा है कि ऊपर के मंजिल पर वहाँ लोग खिड़की नहीं डालते हैं, उसके साइड में या फिर दूसरी साइड में खिड़की डालते हैं,
1: ताकि बैलेंस अगर फोर्स आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फोर्स डिसिपेट हो जाए, अलग अलग हिस्सों पे वो चला जाए।
0: अरुण कुमार लालदास जी, कार्यक्रम सुनने के लिए और फोन लगाने के लिए आपका हृदय से आभार, धन्यवाद
2: जी,
0: नमस्कार। एक और श्रोता जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लें। जी नमस्कार।

0: नमस्कार, हेलो, अपना नाम बताएं
1: बोल
0: जी। अपना नाम बताएं।
1: रहा हूँ
0: मुंबई से कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ थोड़ी कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बता दें जी। हाँ, कृष्ण कुमार मंडल जी। जो लोग बाहर रहें घर से और उस समय भूकंप आ जाए तो क्या करेंगे, यही यही पूछना है जी। कृष्ण कुमार मंडल जी मुंबई से सवाल कर रहे हैं कि जो लोग बाहर हैं
2: जी,
0: और उस समय भूकंप आ जाए तो वो क्या करें।
2: यदि आप घर से बाहर हैं तो खुले मैदान में जाएं, क्योंकि खुले में भूकंप से क्षति नहीं होती है, भूकंप से गिरने वाले मलबे से क्षति होती है। तो यदि आप खुले मैदान में जाएंगे तो वहाँ आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आप अगर मैदान में जा रहे हैं, किसी भी खुली जगह में जा रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहले भी मैंने बताया था कि बिजली के तार और पोल जो खुले मैदान के ऊपर से गुजर रहे होते हैं वो खतरे की घंटी होते हैं, या फिर आप मुंबई शहर में रहते हैं तो वहाँ होर्डिंग रहती हैं। बहुत बार आप चले जाते हैं मैदानों में, आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन होर्डिंग काफ़ी मजबूत और बड़े रहते हैं, यदि वो गिरे तो उससे जान माल की क्षति हो सकती है। तो यदि आप आउटडोर हैं, घर के बाहर हैं, तो खुले मैदान में जाएं, झटकों के खत्म होने का इंतज़ार करें और बिजली के पोल, पेड़, होर्डिंग वगैरह से दूरी बनाकर रखें।
0: ये ज़रूरी है। अगर आप किसी कार्यालय में हैं या किसी ऐसी बिल्डिंग में हैं, बहुमंजिली इमारत में हैं, तो फिर उस
2: लिफ्ट
0: समय
2: का प्रयोग गलती से भी ना करें, सीढ़ियों से उतर के नीचे हैं।
0: हाँ, इसका ख्याल रखना है। हड़बड़ाएं नहीं, घबराएं नहीं, और हिम्मत रखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही ज़रूरी, यही आपका सबल है उस समय। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार मंडल जी हमसे जुड़ने के लिए। कृष्ण कुमार मंडल जी का फ़ोन था ये, और ये पूछ रहे थे कि अगर बाहर हैं तो, ये बाहर हैं असल में, इसलिए ये सवाल भी कर रहे हैं। एक बार फिर से अपने सुनने वालों को बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ज़िंदगी। हेलो ज़िंदगी में आज का विषय है भूकंप और बाढ़ में सावधानी एवं बचाव के उपाय। बतौर विशेषज्ञ प्रणव राज, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी दरभंगा, कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं। 06-2722-2228, 06-2722-2228 इस नंबर पर फ़ोन लगाकर आप प्रणव राज से भूकंप और बाढ़ में सावधानियों को लेकर बचाव के उपाय के बारे में सवाल कर सकते हैं, जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा नंबर 9430029353 भी काम कर रहा है। अगर आपको बेस लाइन पर दिक्कत हो तो आप मोबाइल लाइन पर भी फ़ोन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बेस लाइन पर कॉल लगाएं तो हमें सहूलियत होगी। प्रणव राज जी, एक और श्रोता जुड़ गए
2: जी
0: हैं।
2: जी
0: जी नमस्कार, हेलो।
3: हेलो, प्रणाम श्रीमान। मैं राम कुमार साहब, सिमरिया भिंडी पंचायत कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ।
0: राम कुमार साह जी, बताइए जिज्ञासा क्या है।
3: जिज्ञासा बहुत साधारण सा है सर। पहले तो आपको और विशेष विशेष विशेषज्ञ महोदय को प्रणाम मैं करता हूँ।
0: हमारे तरफ से भी प्रणाम निवेदित है आपको
3: जी
0: जी।
3: सर,
0: सवाल कीजिए।
3: सवाल तो छोटा सा है कि प्राकृतिक प्रकोपों में सबसे अधिक विनाशकारी और प्रभावशाली प्रकोप भूकंप है।
0: सही,
3: पृथ्वी भूकंप से न तो मुक्त है और न मुक्त हो सकती है। प्रायः
0: जी हाँ,
3: प्रतिदिन भूकंप आते रहते हैं और प्रत्येक भूकंप का हमें अनुभव नहीं होता है। भूकंप तो पूर्णतः प्राकृतिक आपदा है, इसमें हमें पता नहीं चलता कि कब भूकंप आने वाली है। यूं तो संसार में प्रतिदिन भूकंप आते रहते हैं, परंतु सभी भूकंपों का पता हमें नहीं चलता, क्योंकि अधिकांश भूकंप जो है वो पर्वतों और सागरों में आते हैं।
0: जी
3: भूकंप और बाढ़ में अंतर यह है कि भूकंप के आने का समय तो अनिश्चित है, अर्थात सावधानियां क्या हो यह स्पष्ट पता नहीं चल पाता। हाँ, वर्तमान समय जो नई तकनीक आई है, AI, उसके माध्यम से हो सके तो भूकंप का प्रायर जो इन्फॉर्मेशन वो पता चल सके और
0: जी
3: इसमें बचाव किया जा सकता है। दूसरी ओर बाढ़ जो है प्राकृतिक और मानव जनित दोनों है।
0: जी
3: मानव ने
0: ये तो जानकारियां,
3: नदियों
0: ये जानकारियां आपने दी। सवाल क्या है राम कुमार साह जी?
3: सवाल तो एक तरह से यही है कि वर्तमान समय जो नदियों के प्राकृतिक मार्ग हैं उनको हमने अवरुद्ध कर बांध बना दिया है, फलतः ज्यादा पानी आ जाने से

0: उसके कि वो जो पानी किनारे में फैल कर बाढ़ का मैदान बन जाता है। बिल्कुल हमारा है कि यदि बाढ़ के बांध को हटा दिया जाए यानी अवरुद्ध न किया जाए तो बाढ़ का खतरा तो कम हो सकता है, और जहाँ तक बचाव की बात है तो इसके बारे में तो श्रीमान चर्चा कर चुके हैं बाढ़ की स्थिति में बाद में किस तरह बचाव किया जा सके।
1: सुनिएगा राम कुमार शाह जी, आपकी जिज्ञासा सही है, सही जिज्ञासा इसलिए भी है कि आप ही नहीं बल्कि ऐसा सोचने वाले बहुतेरे लोग हैं जिनकी कंसेप्ट है कि बांध जो है वो बाढ़ को लेकर फसाद की जड़ है। हमने नदियों के रास्ते को रोका है, नदियों के फैलाव को रोका है, तो उसकी उसके विध्वंस की पीड़ा भी हमें ही झेलनी पड़ती है। और आपने गाद की बात की कही है कि जो तलछट है उसमें मिट्टी जमा हो जाता है, बेहतर बताएंगे प्रणव राज जी।
2: राम कुमार जी नमस्कार, आपके जानकारी में से ही एक प्रश्न हम निकालते हैं। आपने बात की कि भूकंप में आपको सही और काफ़ी वो नहीं मिल पाता है जो शुरुआती वार्निंग होता है, इसमें हमारा सुझाव होगा अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो एक ऐप है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सचेत ऐप, उस पर यदि आप उसको इंस्टॉल करके उसमें अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन शेयर करते हैं तो वो आपको समय समय पर सभी आपदा जनित जो घटनाएं हैं उनकी पहले से आपको वार्निंग देता रहेगा। इसके अलावा भूकंप के संबंध में गूगल अर्थक्वेक अलर्ट है जो कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स पे आता है, ये भूकंप के जनरली 5-10 मिनट पहले आपको सूचना दे देता है। और जो आपकी जिज्ञासा थी कि पूरे विश्व में कहीं भी भूकंप हो रहा हो तो गूगल अर्थक्वेक अलर्ट से वो आपको मिल जाएगा। दूसरी रही बात बांधों की, तो बांधों का निर्माण नदियों के रास्तों को रोकने के लिए नहीं किया जाता बल्कि मानव सभ्यता को बचाने के लिए किया जाता है। ये बात भी सही है कि बांधों के बनाने से नदियों का गाद जमा हो जाता है तो उसके लिए सरकार डिसिल्टिंग की कार्रवाई करती है, समय समय पर गाद हटाया जाता है, लेकिन ये कहना कि बांध बनाना नदियों के रास्तों को अवरुद्ध कर देता है वो गलत है। चैनलाइज कर देते हैं हम लोग ताकि जो हमारे शहर हैं जो हमारी सभ्यताएँ हैं वो सुरक्षित रह पाए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार शाह जी।
0: वो भारत का जो बांध है उसकी चर्चा तो अभी तो समाचार पत्र आता है कि भाई उसको अवरुद्ध किया जाए। जी
1: जी जी, देखिए इस तरह की बातें तो आती हैं जरूर कि, और हमने जो सीखा है वो समय से सीखा है, परिस्थितियों से सीखा है, और जैसे जैसे समस्याएं सामने आती हैं तो हमारे जो विशेषज्ञ होते हैं उस तरह से ये बातें होती है। लेकिन किसी भी बांध को लेकर के, परियोजना को लेकर, ये नीतिगत मामले होते हैं उसको लेकर हम बहुत सहज स्थिति में नहीं होते हैं उस पर चर्चा करने के लिए। राम कुमार शाह जी ये ठीक है, आपकी जो जिज्ञासा है वो अपनी जगह पर सही है, वो जिज्ञासा होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जिज्ञासा व्यक्त न करें, चिंता है तो चिंता व्यक्त करने की जगह भी ये है, और जहाँ तक नीतिगत मामला है तो हमारे नीतिकार इस पर भी विचार करते अवश्य हैं। जहाँ भी जो मुश्किलें होती हैं उसके बारे में चर्चा भी होती है और एक बड़ा शिष्टमंडल भी होता है जो इस पर विचार करता है, और वैज्ञानिकों की एक टीम होती है जो अपने जो शोध पत्र है वो जारी करते हैं और उसके मुताबिक कार्य किए जाते हैं। तो हम समझते हैं कि इन सब चीज़ों को लेकर हम जहाँ तक अपनी बात है वहाँ हम अलर्ट रहे, जो हम कर सकते हैं वहाँ पर अगर हम बचाव के उपाय करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत ही धन्यवाद आपको राम कुमार शाह जी जुड़ने के लिए और जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए। कुछ मामले ऐसे हैं जैसे कि बांध के बारे में आपने कहा कि ये सुरक्षा के लिए, हर साल बाढ़ आती थी, हर साल फसल तबाह हो जाती थी, लोग परेशान हो जाते थे, एक बार मिट्टी आती थी खासकर कोसी क्षेत्र की जो स्थिति है, नदियाँ रास्ते बदल लेती थी, गांव के गांव साफ हो जाते थे, वो सब पीड़ाएं लोगों ने झेली हैं। लेकिन अब बांध के टूटने की बात जहां तक है, जिस तरफ टूट जाती है बांध दोनों तरफ से तटबंध जो खड़े किए गए हैं, अगर जिस तरफ से टूटना होता है ना तो वहां स्थिति ज़रूर खराब होती है, इसमें कोई दो मत नहीं।
2: इस संबंध में भी कि बांधों की जो अभी उठ रही है बांधों की, पहले तो ये माना गया था कि अगर यदि हम नदी पर बांध बांध देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अब ऐसा आ रहा है कि हमारी प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं हुई, ये नदियों के मार्गों को अवरुद्ध कर रहा है, तो उसके लिए भी हमारे नीतिकार फैसला कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप जो कोसी मेची लिंक योजना है, एक हिसाब से उसी परिदृश्य में एक कदम है कि यदि हम अपनी नदियों को जोड़ दे, लिंक कर दे, तो एक तरफ का जो पानी है, अधिक जल स्राव है, वो दूसरी तरफ चला जाएगा।
1: लेकिन प्रणव राज जी, आज की हमारे चर्चा का ये विषय है ही नहीं, है ना? हमारी चर्चा का विषय है कि भूकंप और बाढ़ में हम कौन सी सावधानी बरतें और कौन से बचाव के उपाय करें। हमारी चिंता आज इस कार्यक्रम में यही है। अभी तक हमने भूकंप की चर्चा कर ली है और

0: बड़े मोटे मोटे मोटे तौर पर आपने सारी चीज़ें कह दी हैं कि बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, किन स्थानों पर जा सकते हैं। एक बात और भी है कि अगर आप कहीं सुरक्षित बच गए हैं और आप चाहते हैं कि आप तक सहायता पहुंचे, तो उसके लिए भी कुछ नंबर्स हैं जो ये बाढ़ में भी काम आएंगे और भूकंप में भी काम आएंगे, तो वो कार्यक्रम के आखिर में प्रणव राज जी बताएंगे आपको, वो नंबर ज़रूर याद कर लीजिएगा और कार्यक्रम में बने रहिएगा। अंत तक 12 बजे तक का समय है इस कार्यक्रम का। इस समय हमारे एक श्रोता जुड़ गए, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार नमस्कार
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: प्रणाम प्रणाम
0: जी, प्रणाम, अपना नाम बताएं।
1: किशोर यादव, बहेरी प्रखंड के बुजरोली से बोल रहे हैं सर।
0: ब्रज किशोर यादव जी, बताइए क्या जिज्ञासा है ब्रज किशोर जी।
1: भूकंप का जो समय है आज आपके पास, घर में यदि बिजली लाइन लगा हो, पहला कंडीशन माने बिजली करंट बिजली वर्तमान में हो भूकंप आने के बाद, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि भूकंप के समय में हम दुमंजिला पर हैं
0: जी,
1: तो ये दोनों शर्तों के लिए हमको क्या सावधानियां बरतनी होगी श्रीमान।
0: अच्छा ब्रज किशोर यादव जी, सुनिएगा, बता रहे हैं प्रणव
2: जी, आपका जी। सवाल ये है कि आप दो मंजिली इमारत पर रहते हैं और बिजली का कनेक्शन यदि है, उस स्थिति में यदि भूकंप आता है तो क्या करें? पहले 5 से 10 सेकंड तो आप खुद को सुरक्षित करें जब तक कि झटके खत्म नहीं हो जाए। उसके बाद सबसे पहले उठ के आप बिजली का मेन स्विच बंद करें, क्योंकि यदि आप मेन स्विच बंद नहीं करेंगे और घर छोड़ के चले गए तो फिर हो सकता है कि पीछे से कहीं शॉर्ट सर्किट हो और आग लग जाए। तो मेन स्विच बंद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दो मंजिली इमारत पे यदि आप हैं तो पहले के 10 सेकंड्स में आप सीढ़ियों से भी नीचे जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग भागने की कोशिश करते हैं, निकल नहीं पाते हैं, बीच में फंस जाते हैं। झटकों के ख़त्म होने का इंतज़ार करें, उसके बाद सावधानीपूर्वक सीढ़ियों से नीचे उतरें। जितना खतरा पहली मंजिल पर है उतना ही खतरा दूसरी मंजिल पर, उतना ही ग्राउंड फ्लोर पर है। बहुमंजिली इमारतों की बात कुछ और होती है, यदि 3-4 मंजिला इमारत है तो हर जगह पर सेम खतरा है। तो यदि आप सोच रहे हो कि हम बालकनी से कूद के उतर जाए नीचे ताकि सुरक्षित स्थान पर चले जाए, तो ये सब दुर्घटनाओं का कारण बनती है उस समय में। तो शांति से किसी भी कमरे में, किसी भी कोने में, किसी डेस्क के नीचे, मेज के नीचे खुद को सुरक्षित करें और उसके बाद बिजली का स्विच ऑफ करते हुए, गैस का कनेक्शन ऑफ करते हुए बाहर निकले।
0: एक और श्रोता जुड़ गए। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: नमस्कार सर
0: जी, अपना नाम बताएं।
3: महाकांत हनुमानगढ़ टाउन से बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ महाकांत जी, बताइए क्या जिज्ञासा है।
3: सर जिज्ञासा तो बाढ़ और भूकंप का बहुत अच्छा विषय है। अभी एक श्रोता अरुण लाल दास भूमिका के बारे में कह रहे थे सर।
0: जी सर।
3: तो हेलो जिंदगी का मतलब ही हो गया है संजय जी। और आप जब 15 दिन पहले एक तो हेलो आकाशवाणी में भी कहा था कि मुझे प्रशंसा कोई करता तो असहज महसूस करता हूँ।
0: महाकांत जी, प्रशंसा में समय बिता देने से बेहतर है कि अगर भूकंप को लेकर कोई सवाल आप ऐसा कर दें जिससे बहुत लोगों को फायदा हो जाए, तो मेरी प्रशंसा की बहुत ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। धन्यवाद, वैसे प्रशंसा आपने की है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। सवाल पूछिएगा महाकांत जी। जी महाकांत जी पूछिए, सवाल पूछिए, जिज्ञासा व्यक्त कीजिए जी।
3: 88 में भूकंप आया था और 87 में बाढ़ आया था।
0: जी हाँ।
3: बाढ़ भी हम लोगों के गांव में 12 बजे रात में ही अचानक पानी आ गया, बांध टूट के सर हम लोगों के गांव में ही खड़े नदी है बिल्कुल 200 मीटर के आगे
0: जी।
3: तो जान माल की नुकसान नहीं हुई क्योंकि हम लोगों को तैरने आता था सर।
0: अच्छा,
3: आजकल के बच्चे को तो तैरने आता नहीं।
0: ये तो बात दीगर बात है, ये तो महत्वपूर्ण बात आपने कह दी है। बच्चे तैरना नहीं जानते हैं आजकल,
2: इस संबंध में
0: बताना चाहिए। बच्चे क्या, बड़े भी नहीं तैरना जानते हैं।
2: बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें अच्छा। इनकी जो समस्या व्यक्त की गई है महाकांत जी की, इसी को विशेष रूप में ध्यान रखते हुए कि बच्चे आजकल तैरना नहीं चाहते हैं, उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। जो चिन्हित हमारे गोताखोर होते हैं, प्रशिक्षित तैराक हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, उनको नीनी में पटना में ट्रेन किया गया है। तो उनके माध्यम से जिले के विभिन्न अंचलों में

0: 7 से 14 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे होते हैं उन्हें सुरक्षित तैराकी सिखाई जाती है। आपके इस सुझाव को हम अपने अग्रेतर जो हमारे अधिकारी हैं उन तक भी पहुंचाएंगे कि ये जो हमारा कार्यक्रम है उसको थोड़े और वृहद स्तर पर कराने की आवश्यकता है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद महाकांत जी। लेकिन
2: नमस्कार
1: सर,
2: सर, आप भी लगता
1: महाकांत जी आपने कहा है कि आप तैर कर निकल गए थे 1987 की बाढ़ में, है ना?
2: सही
1: तो
2: सर,
1: और वही
2: रात
1: वजह
2: में
1: है।
2: तो सब सामान तो घर में ही रह गया, जानवर
1: हाँ
2: जिसको तैरने आया, जो छोटे बच्चे थे उनको कंधे पर लेके हम लोग बांध पर गए थे सर।
1: सर, इसीलिए तो आज आप आपकी बातचीत और हमारी बातचीत आपसे हो रही है ना? जीवन की रक्षा सबसे पहली ज़रूरत है, और ये कैसे करनी है उसी को लेके हम कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि जिनको तैरना ठीक से नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है वो ये रिस्क न लें,
0: जी
1: है ना?
2: हम तो बच्चे को सर 1 महीने गांव ले जाते हैं और तैरना सिखाते हैं, गांव में बहुत
1: बहुत
2: तालाब है।
1: बहुत अच्छा करते हैं, और ये अच्छी बात है कि क्षेत्र विशेष में गांव घर में तालाब की संख्या है अभी भी, तो बच्चे सीख भी सकते हैं। लेकिन सीखने से पहले अकेले ना सीखें, बल्कि जो अच्छे तैराक हों उनके साथ वो सीखें पहले। जी
0: महाकांत जी का ये उदाहरण बाकियों के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। मिसाल है कि यदि आप तैरना जानते हैं तो आप खुद बच सकते हैं, लेकिन फिलहाल बाढ़ की स्थिति में हमारा यही सलाह होगा कि बाढ़ के पानी का बहाव बहुत तेज होता है, तो
1: हाँ
0: उसे तैर कर या फिर पैदल क्रॉस करने की कोशिश ना करें, या फिर वाहन से क्रॉस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि वहाँ पर पानी की गहराई कितनी है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप सहायता का इंतज़ार करें। SDRF की टीम होती है, बोट्स होती हैं, किसी ऊंचे स्थल पर जाए, वहाँ से लोग आपको रेस्क्यू कर लेंगे। यदि
1: इनका इनका कहना था कि वो जो दुरूह स्थिति थी जिसमें कोई विकल्प नहीं था, वहाँ
0: जी
1: इन्होंने तैर कर जान अपनी बचाई थी और बच्चे की भी बचाई थी। महाकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम सुनने के लिए, फ़ोन लगाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रणाम सर,
1: जी
2: आपको
1: प्रणाम।
2: आपके विशेषज्ञ।
1: एक बार फिर से बता दें, आज की हेलो ज़िंदगी का विषय है भूकंप और बाढ़ में सावधानी और बचाव के उपाय। बतौर विशेषज्ञ प्रणव राज, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी दरभंगा, आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं। 06-272-222-481 इस नंबर पर फ़ोन लगाकर भूकंप और बाढ़ में सावधानियों के बारे में, बचाव के उपायों के बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं प्रणव राज से। दूसरा नंबर 9430029353, 9430029353, ये नंबर भी काम कर रहे हैं, आप कॉल लगा सकते हैं। कार्यक्रम का समय 12 बजे तक का है। एक बार अपने श्रोताओं को बता दें, हमने तो कहा था कि प्रणव राज जी कार्यक्रम के आखिर में बताएंगे, लेकिन चलिए अभी बता देते हैं कि वो कौन सा नंबर है जिस पर लोग फ़ोन लगाकर सरकारी सहायता की गुजारिश कर
0: जी, इस
1: सकते
0: संबंध
1: हैं।
0: में दो नंबर है।
1: जी
0: पहला, दरभंगा जिले में हम लोग बैठे हुए हैं, तो प्रत्येक जिले का एक जिला आपातकालीन संचालन केंद्र होता है, तो जिला आपातकालीन संचालन केंद्र का नंबर है 06-6272-2450-55। इसके अलावा बिहार
1: एक
0: के
1: बार फिर से बोल दीजिए।
0: 06-6272-2450-55,
1: जी
0: ये दरभंगा जिले के आपातकालीन संचालन केंद्र का नंबर है। लेकिन हम जानते हैं कि आपके श्रोता विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं तथा बिहार के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, तो एक और नंबर हम बता देते हैं जो कि टोल फ्री नंबर है आपदा प्रबंधन विभाग का, 1070।
1: अच्छा
0: ये टोल फ्री नंबर है, इसमें आप बिहार के किसी भी कोने से कॉल करेंगे तो वहाँ से संबंधित जिले को सूचना दे दी जाती है तथा आपके पास तक मदद पहुँचा दी जाती है। 1000, ये टोल फ्री नंबर है।
1: और पटना में एक नंबर है हेल्पलाइन नंबर 06122294204। इस नंबर पर राज्य स्थित किसी भी जगह से अगर आपको कोई भी नंबर अगर रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा हो तो इस नंबर पर आप कॉल लगा
0: कॉल करके अपनी
1: करके
0: शिकायत दर्ज करेंगे, संबंधित जिले को वहां से सूचना दे दी जाती है। 24x7 24 घंटे ये नंबर चालू रहता है।
1: 06122294204 और एक और नंबर अंत में 205 भी है
0: जी,
1: पटना के लिए। कार्यक्रम के आखिर में हम कोशिश करेंगे कि ये नंबर एक बार फिर से बता दें। भूकंप को लेकर बहुत सारी चर्चा हो गई, बाढ़ की त्रासदी कहा जाता है कि जो ऊपर का पानी है यानी बादल का पानी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो उतनी तकलीफ़ देने वाला नहीं होता है, जो पानी नीचे से आता है वो ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला होता है।
0: जी इस क्षेत्र में बाढ़ का भी मुख्य कारण अक्सर अतिवृष्टि नहीं होती, बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल से जो जलस्राव बढ़ता है।

0: है नदियों का, इसी वजह से नदियों का मार्ग परिवर्तित भी होता है। कोसी जिसके लिए फेमस भी है कि
1: जी
0: रास्ता अपना बदल लेती है। तो नदियों में बढ़ा जलस्राव ही यहाँ बाढ़ का बहुत बड़ा कारण होता है। फिलहाल वैसे इधर बहुत सारे तटबंध बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ऊपर से हिमालयन नदियाँ हैं ये, तो हिमालयन नदियों में जलस्राव का प्रतिवर्ष प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आपकी अपनी तैयारियां रहती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जैसे कि 2024 में भी हुआ था कि काफ़ी अधिक जलस्राव हो गया था। ऐसी स्थिति में हमारे बहुत सारे गांव ऐसे हैं, क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी पानी लोगों के घरों में घुस जाता है तथा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 6-7 दिनों के लिए होता है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है अभी भी। वैसे गाँव विशेषकर जो दो बांधों के बीच में बसे हुए हैं, वहाँ ये घटनाएँ होती है। इस संबंध में, बाढ़ से बचाव के संबंध में यही कहना है कि जनरली बाढ़ को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले से सूचनाएं आ गई रहती हैं, बिहार मौसम सेवा केंद्र की भविष्यवाणी आई रहती है। इसके द्वारा प्रशासन के द्वारा समय समय पर आपको निर्देश निर्गत किए गए रहते हैं, उन निर्देशों का अनुपालन करना है। जनरली एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपको इवैक्यूएट वहाँ से कर लिया जाता है, जनसंख्या का निष्क्रमण कर लिया जाता है। वैसी स्थिति में जिद न करें कि हम अपने घर पर ही रहेंगे, अपने जरूरी सामान, जरूरी कागजातों को सुरक्षित कर ऊँचे स्थल, जैसे कि चिन्हित राहत शिविर होते हैं, बाढ़ आश्रय स्थल होते हैं, वहाँ पे चले जाए, वहाँ आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, बाढ़ के पानी का जो फ्लो होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, उसको खुद से क्रॉस करने की कोशिश नहीं करें। आप बहुत अच्छे तैराक होंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि नदी की धार में आपका बैलेंस बिगड़ जाता है या फिर सांसें आपकी टूटने लगती है। तो अच्छे तैराक होने के बावजूद यदि आपकी सांस नहीं रहती है तो आप बाढ़ के पानी में फंस जाते हैं। तो इसलिए बाढ़ के समय में ये सुझाव नहीं दिया जाता है कि आप तैरकर पानी को पार करने की कोशिश करें, किसी ऊंचे स्थल पर चले जाए, वहाँ से फिर जो प्रशासनिक मदद आती है उसके हिसाब से आप उनके साथ जाए, वो आपकी मदद करेंगे। बाढ़ के लिए भी हम आपको सुझाव देंगे कि एक इमरजेंसी किट अपने घर में तैयार करके रखें, जिसमें कि सूखा भोजन हो, पीने का पानी हो, जरूरी दवाएं हो, टॉर्च हो, रेडियो हो, आवश्यक कागजात, जेवर वगैरह, जो कि आप छोटे से शॉर्ट नोटिस पे भी निकल सके।
1: पहले से अगर अरेंज करके रखेंगे ना
0: जी
1: तो लेकर निकलने में आपको समय लगेगा नहीं। बाढ़ का पानी जब चढ़ता है तो बहुत तेज़ी से भी चढ़ता है, इसमें
0: जी
1: भी कोई दो मत नहीं है।
0: तो ज़्यादा आसानी होगी आपको निकलने में। और बाढ़ में एक चीज़ जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, वापस घर लौटने का, इसमें विशेषकर ध्यान देके प्रशासन के निर्देशों का इंतजार करें। जैसा हमने भूकंप के बारे में बोला कि वो स्वार्म्स में आते हैं झटके रह रह के, तो बाढ़ में भी कई बार ऐसा अक्सर होता है कि जो फाटक रहता है वो बंद कर दिया गया रहता है बैराज का, वहाँ से फिर पानी छोड़ा जाता है, तो फिर से दोबारा पानी उन क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है जहाँ से 1-2 दिन पहले वो निकल गया है। तो एक बार प्रशासन की सूचनाओं का इंतजार करें, तभी वापस अपने घर लौटे।
1: एक बात और भी है, जिनके घर मिट्टी के हों
0: जी
1: तो वो लोग बाढ़ की जब संभावना व्यक्त की जा रही हो तो उस समय उस घर को छोड़ दें, ज़रूरी सामान उचित जगह पर लेकर चले जाएं, जहां ऊंची जगह हो या कोई ऐसा मकान जो ईंट का बना हुआ हो।
0: ऐसे क्षेत्रों में पहले
1: जी
0: से ही प्रशासन द्वारा राहत शिविर के लिए जगह चिन्हित किए जाते हैं और बाढ़ आश्रय स्थल भी पहले से वहाँ से बना के रखे गए हैं, तो वहाँ एक गांव एक टोले के लोगों का आराम से एडजस्टमेंट हो सकता है। और लोग वहाँ पे साथ में अपने पशुओं को भी लेके जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मवेशी जो होते हैं उनके लिए भी वहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था रहती है, पशु शिविर जो वहाँ पे रहते हैं।
1: पीने के पानी की जो दिक्कत होती है बाढ़ के दिनों में वो
0: जी
1: सबसे अहम होती है।
0: क्योंकि पानी दूषित हो जाता है, इसलिए क्लोरीन टैबलेट आप खुद के पास भी रखें, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी उपलब्ध कराया जाता है। जो राहत शिविर होते हैं वहाँ इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि हाइजीन मेंटेन करके रखा जाए, आपको पीने का पानी प्योर
1: वहाँ
0: मिले।
1: ओआरएस के घोल भी
0: जी
1: मिल जाते हैं।
0: और ये प्रॉब्लम बाढ़ के दौरान से ज़्यादा बाढ़ के बाद होती है, जो कि चापाकल होते हैं उनमें बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया रहता है, तो इसके लिए उनको निसंक्रमित करने की ज़रूरत होती है, डिसइन्फेक्शन के लिए उसमें क्लोरीन टैबलेट डाले जाते हैं। तथा जो रास्ते होते हैं गाँव के, वहाँ भी बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें सड़ गई होती है, तो उनको भी संक्रमण मुक्त तथा साफ़ सफाई करना आवश्यक होता है। इसीलिए बाढ़ के बाद घर लौटने के समय ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो बसावट का क्षेत्र है वो साफ़ सफाई हो गई हो, वहाँ किसी संक्रमण के फैलने की आशंका नहीं हो, महामारी की आशंका नहीं हो, वैसी स्थिति में ही वापस अपने घर लौटे, घर को साफ़ सफाई करके आप वहाँ पर रहें।
1: एक और बात है, तबीयत अगर किसी की बिगड़ जाए,
0: जी
1: डिसेंट्री डायरिया की समस्या उस समय होती है,
0: जी
1: तो दवा की जो किट है ना उसमें वो सब ड्रग्स रखें अच्छे से।
0: आवश्यक दवाइयाँ जैसे कि डायरिया होता है, डिसेंट्री होता है, ये जनरली काफ़ी ज़्यादा इसके फैलने की आशंका होती है। पेयजल बहुत बार शुद्ध अवेलेबल नहीं होता है, तो पेयजल जनित जितनी भी बीमारियाँ होती है इन सब की दवाइयाँ अपने पास भी रखें। तथा जनरली उस समय में मेडिकल कैंप्स भी रहते हैं, तो निसंकोच उन मेडिकल कैंप्स को अप्रोच करें। दरभंगा इस क्षेत्र में एक अच्छा एग्जाम्पल था, वहाँ 2024 में बोट एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी, ताकि वैसे क्षेत्र जहाँ पे

0: दुर्गम हो गए थे, कुछ दिनों के लिए कनेक्टिविटी कट गई थी, वहाँ बोट एम्बुलेंस के माध्यम से दवाएं पहुँचाई जाती थी। तो इन सब चीज़ों को अप्रोच करें, खुद तक छिपा के ना रखें, और यथासंभव खुद के पास भी उन चीज़ों का अरेंजमेंट करके रखें ताकि आप खुद से खुद का बचाव कर सकें कुछ दिनों के लिए।
1: तो हम समझते हैं कि चलते चलते कुछ टिप्स दे दें, वो नंबर भी बता दें
0: जी जी
1: दरभंगा जिला का
0: दरभंगा
1: और
0: जिले
1: टोल फ्री
0: का
1: नंबर।
0: जो
1: जी
0: नंबर है आपातकालीन संचालन केंद्र का, 0-62-72-24-50-55, 0-62-72-24-50-55, ये दरभंगा जिले का आपातकालीन संचालन केंद्र का नंबर है।
1: टोल
0: किसी भी
1: फ्री
0: प्रकार
1: नंबर
0: की आपदा से संबंधित आप समस्या इस पे बता सकते हैं। बिहार राज्य का टोल फ्री नंबर है 1070। ऐसा ना सोचिए कि आपके जिले का कंप्लेन वहाँ नहीं जाएगा, वो राज्य का एग्रीगेट कंप्लेन वहाँ पे जाता है और संबंधित जिले को सूचना दे दी जाती है। पीछे से आपको कॉल करके भी बताया जाता है कि आपके द्वारा दी गई सूचना पे क्या कार्रवाई की गई। तो 1070 टोल फ्री नंबर है जिस पे आप संपर्क कर अपनी समस्या बता सकते हैं।
1: 1070,
0: जी जी दस
1: बस
0: सत्तर
1: ये नंबर याद रखें। और ये याद रखें कि आज एक कार्यक्रम में भूकंप और बाढ़ में सावधानियों को लेकर जितनी बातें प्रणव राज जी ने बताई हैं वो आपके ख्याल में रहे, आपके दिमाग में रहे, घबराएं नहीं और न बेचैन हो। बस इन बातों को जो जो आज हेलो ज़िंदगी में जितनी बातें हुई हैं, अगर इन बातों को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो संभव है कि आपका बचाव भी होगा, आप सावधान भी रहेंगे, सतर्क भी रहेंगे, आपके परिजन भी सुरक्षित रहेंगे। ये बताते हुए आज हम आपसे विदा लेंगे श्रोताओं, कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके आगे किसी की चलती नहीं है। बाढ़ सुखाड़ हो, आंधी तूफान हो, भूकंप हो, ये त्रासदियाँ लगी रहेंगी। प्रकृति का जो नियम है वो चलता रहेगा, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन हम सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसका ख्याल रखें। तो आज हेलो ज़िंदगी में विषय था भूकंप और बाढ़ में सावधानी एवं बचाव के उपाय। बतौर विशेषज्ञ सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी दरभंगा प्रणव राज, आपने अपना समय हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए निकाला। आपका हृदय से आभार,
0: धन्यवाद सर
1: बहुत बहुत
0: आपका।
1: धन्यवाद आपका। श्रोताओं, मिलेंगे अगले अंक में किसी और विषय, किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद, संयोजक अमित कुमार के साथ मुझे संजय को अनुमति दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: सखी वहीं सखी वहीं।
1: नमस्कार सखी बहिन, स्वागत अछि अहाँ सभक अपन कार्यक्रम सखी बहिन में। ठोर पर मुस्की आ चाहक चुस्कीक संग अपन सभक भोरक शुरुआत होइत अछि। ओहो मे रवि दिन कनी सुस्तिए लगैत अछि, काज तऽ हेबे करते, आराम से करब। मात्र एक दिन तो छुट्टी भेटैत अछि, एक दिन में की पहाड़ ढाई लेब, यह प्राय सब गोटे सोचैत छी। एतबे नहीं सखी बहिन, जखन पावन लग जाय लगैत अछि तखन तो मन अनेरे अशांत रहैत अछि कि कोना नीक सँ एकर ओरियान हैत। आंगूर पर दिन गौना लगैत छी, ओहो में विशेष रूप

सब है बहिन बला पाबनि, एहिमे तऽ बड्ड बेसिए उत्साहमे रहैत छी। ओहोमे भाय जिनकर बाहर रहैत छथिन ओ बहिन तऽ भरि दिन बाटे तकैत रहि जाइ छथि वा बहिन भायसँ दूर छथिन। सङ्ग सङ्ग खेलाइत खेलाइत केना समय बीत जाइए से बुझेमे नहि अबैत अछि सखी बहिन। स्नेहक डोर एतेक मजगूत रहैत अछि जे कतबो दूर रही मुदा बहिनक मंगल कामना सदैत सङ्ग रहैत छनि। ओ एतबे मनबैत रहैत छथि जे हमर भाय कतौ रहथि मुदा हुनकर ओरदा खूब बढ़नि आ सदिखन स्वस्थ रहथि। रक्षा सूत्र बनि कऽ हुनकर जीवनके रक्षा सदिखन होइन। तैं ई पाबनि बड्ड दिनसँ मनबैत एलहुँ अपनासभ, जे पैघ छथि अपनासभसँ श्रेष्ठ छथि हुनकोसँ अपनासभ एहि दिन रक्षा सूत्र बनबैत एलहुँ जे हुनकर आशीर्वाद भेटत, सङ्गे स्नेहक बन्धनमे सदिखन बन्हायल रही। सभसँ पहिने तऽ सखी बहिन मोन पड़ैत छथि जे देशक सीमापर ठाढ़ छथि हमर सभक रक्षा लेल, जे हमर सभक रक्षा कोना भऽ सकय, हमर सभक प्राण कोना बचि सकय, अपन प्राणक चिंता केने बिना ओहि भाई लेल सभ बहिन राखी पठाबी। जँ नहि पठा पाबी तऽ हुनकर मंगल कामना माँ भगवतीसँ तऽ अवश्य कऽ सकै छी ने। सखी बहिन, कार्यक्रम अहाँसभ सुनै छी एहि लेल अहाँसभके हृदयसँ धन्यवाद। इहो बुझल अछि जे रवि दिन काज बेसिए रहैत अछि, जतबे काल समय भेटैत अछि जँ कार्यक्रम सुनै छी तऽ हमरा सङ्गे जुड़ै छी आ जखन कार्यक्रममे अपनासभ जुड़ै छी तखन भावना आओर बेसी प्रबल होइत अछि, उत्साह बढ़ैत अछि। एखन कार्यक्रममे बहुत किछु बचल अछि तऽ कतौ जायब नहि सखी बहिन, तऽ कार्यक्रम सुनैत रहब। कार्यक्रममे सुनब आजुक कन्याके गप, फिल्म सङ्गीत, तकर बाद भानस भातक गप आ सङ्गहि सौन्दर्यके रक्षा कोना हुए। बरखा ऋतु जखने अबैत अछि तऽ केश जे छै से एकदमसँ रुख भऽ जाइत अछि, तऽ केशक सुरक्षा केना अहाँ सभ करै छी से अवश्य बतायब सखी बहिन। तऽ सखी बहिन, सब गोटे सब बहिन सब अपन भायके मंगल कामना लेल हुनकर ओरदा कोना बढ़नि, ओ कोना स्वस्थ रहथि, एहि लेल माँ भगवतीसँ निहोरा करै छी, प्रार्थना करै छी। तऽ सुनै छी अपनो सभ समवेद स्वरमे ई भगवत।

तो अखन अपना सब ई भगवती गीत सुनलो संवेत स्वर में। सखी बहन, अपन सबक जो संस्कृति रहल अछि ने, बट पुरान परंपरा रहल अछि, आदर्श परक संस्कृति रहल अछि। तो सखी बहन, अपन सबक संस्कृति कतेको आयाम अछि आ से एक से बढ़ कर एक अछि। एक कंठ से दोसर कंठ में एना पसरत गेल जे कोना अपना सब सीख लेलों से बुझ में नहीं आयल। आ जिनका नहीं अबे छन ओ बेर पर हुनका बड अखरे छन। जखन जखन विध होइया, व्यवहार होइया अपन सबके ओहिठाम गीत गायन के ओहि बेर में बजाओल जाइत छन, जे स्त्री लोकनि छथि ओ बचौने छथि, सहेजने छथि। संगीत मात्र कला नहि अपितु भक्ति अछि, ध्यान अछि, दैवीय ऊर्जाक माध्यम सेहो अछि। आ एकटा गप और, जे सब देवी देवताक अपन अपन वाद्य यंत्र छन जे हमरा सबके प्रेरणा आ संदेश दैत अछि। जेना गप करी कृष्णक बांसुरी के, जे स्नेह प्रेम राग सहजता आ मोनक अभिव्यक्ति आ हमरा सबके यह सिखबैत अछि जे जीवनक मधुरता तखने संभव अछि जखन राग द्वेष सँ दूर रही। बांसुरी जेना भीतर सँ एकदम खाली रहैत अछि, शून्य होइत अछि। हमरा बांसुरी तय मोन पड़ल जे आब कृष्णाष्टमी सेहो लग जा गेल। जतेक पावनि होइए सखी बहिन, सब पावनि बहुत किछु संदेश दैत अछि। संगीत तऽ प्रकृति के कण कण में विद्यमान अछि। तैं अपना सब सुनैत एलहुँ जे तानसेन जखन गबै छलखिन तऽ वर्षा आरम्भ भऽ जाइ छल। गायन वादन आ नृत्य तीनू मिलकर संगीत बनैत अछि जे प्रकृति के अपन अधीन कऽ लैत अछि। बरख भर पावनि तिहार में तो लगले रहित छी अपना सब, नव ऊर्जा आ उमंग संग में अबैत अछि। कोनो सफलता लेल आंतरिक ऊर्जा आने लेल सबसे बेसी आवश्यक ई भ जाइत अछि जे नव चीज सिखवा लेल जिज्ञासा रहे, ओहि काज लेल रुचि रहे। संघर्ष परिश्रम आ निरंतर प्रयास सँ सफलता भेटैत अछि। सदिखन प्रयास करैत रहबाक अछि। जतेक महान व्यक्ति सफल भेला ओकरा पाछू एकेटा गप अछि, कोनो एक दिनक चमत्कार सँ संभव नहि भेल अछि। जेना छोट छोट बुन्न मिलकर सागरक निर्माण करैत अछि, ओहिना छोट छोट प्रयास पैघ उपलब्धि के आधार बनैत अछि। कोनो किसान बीया बाग केला के बाद सब दिन ओकर देखरेख करैत अछि, प्रयास निरंतर चलैत रहैत अछि, एहि आशा पर जे खेत अवश्य लहलहायत। अहिक संग असफलता के सेहो स्वीकार करय पड़ैत अछि। अपन सभक जीवन में एहन बेर में नीक मित्रक संग भेटब माने अपन लक्ष्य के पूरा करबा में, अपन स्वप्न के पूरा करबा में हुनक विशेष योगदान रहैत छन्हि। एहि कार्यक्रम में जेना सखी

0: सबसँ गप केलापर मनोबल ऊँच भऽ जाइत अछि, अशांत मन शांत भऽ जाइत अछि। एहिमे आजुक कन्या सेहो अपन विचारसँ सब गोटाके प्रभावित करैत छथि, अपन समय निकालि कऽ सब सखी बैसल रहैत छथि जे आइ आजुक कन्यामे के छथि। ओहि आजुक कन्याके गप सुनब तऽ आजुक कन्या छथि स्नेहा झा। कतेको एहन बहिन सब छथि जे अपन करियर बनबैसँ बेसी बच्चाके भविष्य बनाबैमे लागि जाइत छथि। अपन जे स्वप्न रहै छनि, किछु करबाक जे इच्छा रहै छनि, ओ पाछू छूट जाइत छनि। स्नेहा झा एकटा कुशल गृहिणी तऽ छथि, सङ्गहि प्रतियोगी परीक्षा सभक तैयारीमे सेहो लागल छथि। राखी पाबनि लगचा गेल अछि, ओ की सब तैयारी केने छथि से सुनै छी जे ओ की कहऽ चाहि रहल छथि।
1: राखी माने रक्षाबंधन, ई जे छै से बहुत पैघ

0: ल छथि। राखी पाबनि लग जा गेल अछि। ओ की सब तैयारी केने छथि से सुनै छी जे ओ की कहऽ चाहि रहल छथि।
1: राखी माने रक्षाबंधन, ई जे छै से बहुत पैघ पाबनि अछि अपन सभक संस्कृतिके, जेकि बहुत हर्ष और उल्लास से मनाओल जाइत अछि। ई पाबनि भाई बहिनक प्रेमक प्रतीक अछि और हम कहब कि ई पवित्र स्नेह और अटूट विश्वास के एकटा बहुत पैघ उदाहरण अछि, जेकि श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि के मनाओल जाइत अछि। एहि दिन बहिन सब जे छथिन से अपन भाई के माथ पर टीका चानन लगा के दहिना हाथ में राखी बन्है छथिन। राखी मात्र एकटा धागा नहीं छे, राखी एकटा रक्षा सूत्र छे। राखी माने रक्षा सूत्र, जे बहिन अपन भाई के हाथ पर बने छथिन और हुनका ई पूरा विश्वास रहे छन कि हुनकर भाई हुनकर आजीवन रक्षा करथिन, हुनकर ध्यान रखथिन। आ बहिन सब जे छथिन से भाई के सुखी जीवन, यश और दीर्घ आयु के कामना करे छथिन। राखी के बनला के बाद मुँह मीठ कायल जाइत अछि। बहिन भाई के मिठाई खुआबै छथिन और भाई सब बहिन सब के बहुत अलग अलग तरह के उपहार सब दै छथिन। राखी भाई बहिनक स्नेह के प्रतीक छै ई पाबनि। ई पाबनि सबटा भेदभाव के मिटा दैत छै। मिथिला क्षेत्र में ई पाबनि पर पारंपरिक गीत संगीत और उल्लासपूर्ण वातावरण रहैत अछि। राखी एकटा छोट धागा मात्र नहि छै, बल्कि ई दुनू गोटा के जीवन भर लेल प्रेम के मजबूती रीति से जोड़ैत अछि। जीवन में सफलता के आधार निरंतर प्रयास और अटूट मेहनत छै। बिना लगातार मेहनत के कोनो व्यक्ति अपन सपना के पूरा नहीं कर सकैत अछि, क्याकि सफलता के कोनो शॉर्टकट नहीं होइ छै। सब दिन काज करे से मन मजबूत होइ छै और डर खत्म से होइ छै और संगे संगे आत्मविश्वास बढ़ै छै। अहाँ एक एक काज लगातार करैत रहबै तऽ अहाँके आत्मविश्वास जरूर बढ़त। मुश्किल तऽ सबके जीवन में अबै छै, एहन थोड़े नहि छै कि कोई बिना मुश्किले आगू बढ़ै छै, नहि, मुश्किल सबके जीवन में अबै छै। तैयो मनुख के कखनो रुकबाक नहि चाही, बल्कि धैर्य और अनुशासन संगे आगू बढ़बाक चाही। प्रयास जे छै से उपलब्धि सबके पाछू के प्रेरक शक्ति होइ छै, जेकि मनुख के बाधा सबके दूर करै छै। एकर अलावा निरंतर प्रयास सकारात्मक मानसिकता के बढ़ावा दैत छै और प्रगति के दिस लऽ कऽ जाइत छै। छोट छोट उपलब्धि सब सेहो बहुत महत्वपूर्ण मील के पाथर बनि जाइत छै। सफलता खाली एकटा मंजिल नहि छै, ई एकटा यात्रा सेहो छै। तैं समय प्रबंधन बहुत जरूरी होइ छै सफलता लेल। अहाँ समय से काज करबै कोनो तऽ अहाँके तनाव नहि होयत। अपन अभ्यास के हरदम जारी रखबाक चाही। ई नहि छै कि एक बेर केलहुँ, आइ केलहुँ, फिर कल नहि केलहुँ, नहि, हरदम अहाँके रोज रोज ओ काज करैत रहबाक चाही। और अभ्यास करै छै नव नव चीज सीखै के सेहो मौका भेटै छै और आत्मविश्वास बढ़ै छै। अहाँ सब खरगोश और कछुआ के कहानी तऽ सुनने हेबै कि केना कछुआ अपन निरंतर प्रयास से खेल के जीत गेलै। खरगोश सुतले रह गेलै, खरगोश सोचलकै कि हम बस आइ चल लै छी, कनी काल चल लै छी, फिर कनी काल सुति रहै छी, तऽ हम तऽ कछुआ से आगू चलै छी, तेज चलै छी, तऽ हम जीत जाएब, कियाकि ओकरा बहुत समय लगै छै। ओकरा भले बहुत समय लगै छै, लेकिन ओ रुकलै नहि, ओ लगातार चलते रहलै। ताहिसँ की बुझलियै कि अहाँके अपन लक्ष्य के प्राप्ति लेल लगातार चलैत रहबाक अछि, रुकबाक नहि अछि। निरंतर प्रयास, अपन अटूट प्रतिबद्धता और दृढ़ता के संगे खूब रास उपलब्धि के द्वार सब खोले छै और ई एकटा जीवन में बहुत पैघ भूमिका निभबै छै। तैं जीवन में सफलता पाबै लेल निरंतर प्रयास करबाक बहुत आवश्यक होइत छै।
0: स्नेहा झा, अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद जे अपन बहुमूल्य समय अहाँ सब सखी बहिन लेल निकाललो। तो आप की विचार सखी बहिन, फिल्म संगीतक आनंद लेल जाय मोन अछि ने? पहिने सिनेमा देखबा कतेक हिस्सक छल। विद्यालय जखन जाय छलहुँ तऽ वर्ग मे ओंघाइत रहै छलहुँ, नीक सँ गृह कार्य सेहो पूरा नहि होइ छल। आ शिक्षक बुझि जाय छलथि

एतबे नहि, जखन विद्यालयमे बायोस्कोप देखायल जाइत छल, विद्यालय जाय लेल उत्सुकता बढ़ि जाइत छल। बाल आधारित फिल्म सेहो देखायल जाइत छल, जाहिसँ बच्चा सभमे नैतिकताक विकास होइन। आब अपनो सभ उत्सुकता आ जिज्ञासा के शांत करी, सुनी फिल्म संगीत।

हाँ त सखी बहन, अखन हेमलता के स्वर में ई गीत सुने छलो तो वास्तव में युग युग धरि ई गीत अपना सब सदिखन दोहराबैत रहब।

जे स्नेहक डोर स्नेहक जे बंधन ई कखनो छूटत नहीं। तो आशा है जे ई गीत अवश्य सब गोटे के निक लागल हैत। काज करेत करेत दिन में अपनो सब तो थाक जायत छी, तो अपना सब कतौ घूमियो लेल जाय छी, तो सबसे पहिने यह तकैत रहे छी जे कतौ निक भोजन भेटे। तो जाय छी हम पहिने आ भनसा घर दिस। प्राय सब बहिन सब बोर होते सबसे पहिने भनसे घर जाय छथि आ रात तक भनसे घर में हुनकर समय बीते छनि। भानस पूर्ण नहीं होइत अछि ता धरि कोनो काज पूर्ण नहीं बुझाइत अछि, तैं तो स्त्री के अन्नपूर्णा कहल जाइत अछि। आ अने आनंद अछि जँ भरि मन अन्न खा लेलहुँ तऽ भरि दिन मन खनहन रहैत अछि। तऽ देखै छी की सब बनल आ की छूटल अछि। बरसातक समय में तो मेहनत और बेसी बढ़ जाइत अछि। सब सामान के रौद लगाएब, साफ सफाई निक से करब, किएक तऽ संक्रमण बड बेसी बढ़ जाइत अछि। खेनाइ जखन बनबै छी तऽ ध्यान रखैत बनबै छी अपना सब की सखी बहिन, जे ओ खेनाइ जे छै से झाँपल रहै। बरसात के मौसम में भोरे उठ कऽ सुसुम पानि में नेबो कनी दऽ कऽ बड लाभकारी अछि। कहबी अछि जुड़त रुचत आ पचत तीनू बड कठिन होइत अछि आ जिनका ई प्राप्त छनि ओ जीवन में सबसे बेसी सुखी छथि। आ सुखी रहबाक लेल आत्मसंतुष्टि धैर्य आ आत्मविश्वासक आवश्यकता होइत अछि सखी बहिन। जँ आत्मविश्वास अछि तऽ केहनो कठिन काज किया नहि रहै, ओ काज आसान भऽ जाइत अछि। एकटा हमरा खिस्सा मन पड़ि गेल। एकटा किसान छला जै पर खेती करै छला, ओ खेत बंजर छल मुदा हुनकर स्वभाव छलनि जे सब दिन भोरे उठि कऽ ओ खेत पर चलि जाइ छला। तऽ हुनकर गाम मे जतेक लोक सब छलनि ओ सब हुनका कहन जे ई खेत तऽ बंजर छै, किया अहाँ अनेरे जाइ छी खेत पर, एहिमे कोनो अहाँके फसिल हैत। मुदा ओ किनको गप पर ध्यान नहि दैत छलखिन ओ किसान। ओ लगातार अपन जे मेहनत छलनि ओ करिते रहि गेला। जे खेत उपजाउ छल, जे खेती करै छलखिन जे दोसर किसान, ओ बुझै छलखिन जे हमर खेत उपजाउ अछि, तऽ ओ अपन धीरे धीरे मेहनत करनाइ छोड़ि देलखिन। ओहिसँ की भऽ गेलै जे जते अनुपात में खेती हेबाक चाही हुनकर खेती नहि होइ छलनि। हिनका मे एतेक आत्मविश्वास छलनि ई किसान के जिनकर खेत बंजर छलनि, ओ सब दिन ओहिमे पानि दै छलखिन आ सब दिन ओहिमे कोरै छलखिन आ मेहनत करैत करैत करैत एक दिन एहन भेल जे खेत बंजर छल ओ उपजाउ भऽ गेल आ खूब नीक ओहिमे फसिल भेल। वास्तव में जँ आशावादी छी तऽ जीवन में कोनो टा काज कठिन नहि अछि, ओ निश्चित रूप से हमसब कऽ सकै छी। तऽ आब हम बढ़ै छी भनसाघर दिस, जाहिमे कि आइ हम बनेलहुँ छेना के रसगुल्ला। तो सखी बहिन अहाँ कोन विधि से बनबै छी अपन विधि अवश्य बताबी, किएक तऽ सब गोटे एक दोसर के देखिए कऽ सीखै छी। की कहू सखी बहिन, एक दिन दूध उठैत रही, दूध फाटि गेल, तऽ आब की करू। तऽ हम केलहुँ से अहाँके कहै छी जे केना बनेलहुँ छेना रसगुल्ला। तऽ सबसे पहिने छेना के सूती कपड़ा में दऽ कऽ ओकरा छानि लिअ। छानि कऽ पूरा ओकर पानि जखन निकलि जाय तखन ओकरा ठंडा पानि से ओकरा खूब नीक से धो लिअ। तकर बाद ओकरा खूब कसानू ओहि छेना के, जखन खूब नीक से जखन ओ सना जाय तखन हाथ में कनी घी लगा लिअ आ घी लगा कऽ ओकरा गोल गोल जेना रसगुल्ला बनबै छी ओकरा बना लिअ। हम बनेने रही कुकर में। कुकर में एक गिलास पानि दियौ, जँ अहाँके एक लीटर दूध है तऽ कम से कम दू गिलास अहाँ पानि दऽ दियौ ओहिमे आ चीनी दऽ दियौ। आ चीनी दऽ कऽ कुकर में जखन पानि जखन बुझा खोल गेलै तखन ओहिमे रसगुल्ला खसा दियौ आ खसा कऽ ओकरा बंद कऽ दियौ। जखन एक सीटी दऽ दिया तखन ओकरा तुरंत उतारि दियौ, ओकरा गैस पर बेसी काल चढ़ल नहि रह दियौ। आ ध्यान इहो राखऽ के अछि जे ओकरा खोलबाक नहि अछि, ओ अपने जखन खुजि जायत तखन ओकरा कोनो बर्तन में अहाँ रसगुल्ला निकालि कऽ राखि लिअ। गर्मा गर्म अहाँके छेना के रसगुल्ला तैयार अछि। तऽ कोनो चीज जे दूर भऽ जाइए तऽ अपना सब चिंतित भऽ जाइ छी तऽ आब करू।

0: पक्षी मुदा बहुत रास एहन तरीका अछि जाहिसँ कि बहुत तरहसँ चीज सब अपना सब बना सकै छी। तऽ एहिके सङ्ग आब जे छै सखी बहिन बेर लगचा गेल अछि जेबाक लेल, एहि विश्वासक सङ्ग जे अहाँ सबसँ फेर गप करबाक अछि। बहुत रास गप सखी बहिनक बीच तऽ अतेक गप बचले रहि जाइत अछि जे बुझाइए हमर सबके गप कखनो नहि खत्म होयत। मुदा एहि आशाके सङ्ग जे अगला रवि कऽ फेर आयब आ अहाँ सबसँ खूब गप करब, ता धरि अहाँ सब नव नव ढंगसँ खूब नीक नीक खेनाइ सब बना कऽ राखू, खूब नीक नीक खेनाइ सब सिखाउ आ सीखू। आ राखी पाबनि के हार्दिक शुभकामना, सदिखन हँसैत रहू, मुस्कुराइत रहू, प्रसन्न रहू, कखनो कोनो तरहके चिंता फिकिर नहि राखू। एहिके सङ्ग आब कार्यक्रमक प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसादक सङ्ग हमरा यानि नीतू के चलबाक आज्ञा दिय। नमस्कार सखी बहिन। सखी बहिन, सखी बहिन,
1: ये था कार्यक्रम श्रोता बहनों को संबोधित सखी बहिन, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। लीजिए अब सुनिए मैथिली नाटक गुरुआइन।

0: हे हम बेर बेर अहाँ के कहे छी जे हमरा से मुँह जुन लगाओ आ हे एने कर लियो अपन जनमल के आ करू गनी मेरा
1: एहन तो लोक नहीं देखलो महान चंडालनी पाला पड़ गेल छी मुदा करब की दोसर तो कोनो उपायो नहीं है लक्ष्मी लक्ष्मी अहाँ सरपा हमर भाग्य लक्ष्मी छी
0: अंगोरा छी धड़कल छी चूल्हा के छाव छी जाओ जाओ हम कतौ से एलहुँ भाग्य लक्ष्मी से रहितौ हमर इएह दुर्दशा रहित
1: हे देखू बच्चा सुत रहल एकरा अपना लग सुता लिया आ बाजू ने जे अहाँ के की कष्ट है हम सबटा दूर कर देव
0: लो जाओ अपन बच्चा के आ लुट्टी पसाही लाओ अहाँ के कमाई में हमरा ऐसे कौन लेना देना नहीं जैन कौन जन्मक अदला कर्म केने छलो जे अहाँ

0: सुनत
1: आखिर कोनो गप फरछा का बाजब तखन ने बुझबे हम तो सोझ लोग छी आ सोझ बात बुझै छी
0: आहा आहा यो आहा का अतरी तो 72 हाथक अछि आहा के तो हम ही ता चिन्है छी दोसर के चिन्हत आहा संग चंडाल कसाय आ निर्दय लोग ए दुनिया में कतौ नहीं छे
1: आहा के की कष्ट अछि से बुझब तखन ने
0: हमर कष्ट बुझब ए
1: हाँ हाँ बाजू ने
0: अच्छा अई मासक दरमहा जे उठेलिए से की केलिए
1: ओ आप बुझलिए तकरे ई सब नाटक भ रहल छै ने
0: ए यो सब त पर गाम पठा देलिए आ कहै छिए जे तकरे ई नाटक हे नाटक तखन शुरूए भेलै
1: हे अच्छा है नहीं भूखा लगी रुपया तो हिना रख ले छे अरे क्यों गांव जाय वाला हेते तखन ओकरा द्वारा पठेबै
0: एहि मास में गांव रुपया नहीं जेते
1: हैं से कोना हेते गांव पर माँ बाबूजी कतौ से की करथिन
0: से अपन जत से जे करथुन मुदा कह देलो है गांव रुपया नहीं जेते नहीं जेते
1: अहाक माथा ठीक है कि नहीं हैं कहू तो ओ बुढ़वा बुढ़िया ककरा लगदा का हाथ पसारते
0: बड़ मैं बाप भला भेला है कहल के जी लोग सब शहर में जमीन की नहीं है घर बन भैया अहिनका गांव में भागल जाए छे हमरा घर में एकटा टीवी नहीं फ्रिज नहीं जो लोग जे डेरा पर आबैया तो लाजे काठ भ जाए छी
1: लक्ष्मी अखन देर अहाँ के भगवान ज्ञान नहीं देलन लोग धिया पुताक लेल रने बने बौआत अछि कारण जे बुढ़ारीक लाठी बनत ताहि धिया पुताक ई काज जे अपने सब परिवार इलवाइश करे आ माँ बाप कष्ट भोगे
0: तब जाओ ना जे फुराई से करू हमरा तो बुझले अछि हमरा लेल ए घर में क्यों ने
1: अहाँ तो हमरा माथा खराब क के राख दे अरे लोग सुनत तो की कहत जे केहन लोग सब हमरा ए मोहल्ला में चल आयल जे कखनो शांति नहीं रही है तकर सबक कोनो विचार नहीं
0: हे कहत नहीं अपना तो कोनो विचारे नहीं छन आ
1: चुप एक बेर जब मुंह से आवाज निकाल लूं तो बहुत बेजाय बात भ जाए बुझलिए हे लियो रुपया आप जे मन फराय से करो।

0: दिन में तो कोनहुना पार लागल। नवादा वाली कनिया थोड़क मरवा देने रहथिन, मुदा आब की करबैक?
1: देखियो ने केहन समय साल खराब भ गेलै है, जे जमीनो नहि केओ भरना लेबऽ चाहै छै, आ जँ ककरो एक रत्ती मोनो डोलै छै तऽ चासक जे सबसे नीक जमीन सैह मंगैत अछि।
0: तऽ की करबैक, आश्रमी खेत तऽ नहि भरना लगायब, किछ सात करोटक खेत बेच लिया, यह ने छोटका छोड़ा बिलेट जेते, ओइ बाबू के की लगतन, कमाई छथि मौज करै छथि।
1: सर, आश्चर्य ई दुनिया अछि, ये हमरा नहि आशा छल जे मनोज सन बेटा एहन भ जायत। कुन धरानीये ओकरा पढ़ेलहुँ लिखेलहुँ, मन में छल जे कमायत खटायत सब दुख दूर भ जायत, पर हाय रे विधाताक विडम्बना, सब कल्पनाक शीश महल समयक झंझावात में चकना चूर भ गेल।
0: हाँ, अइमे ओकर कोनो दुख नहि छै, सबटा अहीं के कयल अछि। हम कहने रही ने, ओहि छोट लोक सभक ओहिठाम बेटाक विवाह नहि करू, मुदा हमर की सुनैया, टाका देलक एक ढाकी आ लोभे कऽ
1: लेलहुँ। ई गप अहाँ सत्ते कहै छी, जावत ओकर विवाह नहि भेल रहै 7 दिन पर नहि तऽ 15 दिन पर अवश्य गाम अबै छल। गाम घरक सब लोक से गप सप रखै छल, हे दरमाहा जे किछु भेटो, मुदा हमरा लोकनिक खर्च जोगर

0: टका तो अवश्य पठा दे छल
1: परंच जहिया
2: हम कहे रही ना ओई गांव विवाह नहीं करब ताहू में ऐसा घरक बेटी छिया छिया
0: हाँ ये गप तो सबटा ठीके कहे छी मुदा लोक ई सब जाने छले विवाह हो जन्म मरणश्च यदा यत्र भविष्यति
2: हम ई सब नहीं बुझे छिए सबटा अहाँ अगर जीत जेका के लौ तकरे ही फल अछि
0: तै न हमरे सबटा भोग पर रहल है नहीं तो जकर बेटा कमुआ रहते से बाप ए अवस्था में दू सेर अन्न आ दू टा टका के लेल दरवज्जे दरवज्जे भटकत रहते
2: देखू हम ये आहे माहे नहीं सुना चाहे छी ओ अपन निमेरा तो करिए कि न हमरे सब लेल ने ओकरा पाई छैक ई संपत्ति तो ओकर अर्जनु थी के आहा जमीन बेच का कन्यादान क लिय कारण समर्थ बेटी मातृ को गर्ने अछि घरक खर्ची सेहो चलाओ तखन कनिये छोटका छौरा ले होइए जे ई कोना पढ़ते लिखते समयो साल एहने छैक कतो नौकरियो चाकरी हेते कि नहीं हेते
0: अरे अहाँ तक कन्यादान नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई गप करऽ लगल आ घर में मुसरी दंड खींचे से ध्यान
2: तैं ने कहे छी कोनो उपाय तो अहीं ने करबै हम जे मौगी भऽ कऽ ककरो कहऽ जेबै सेहो तो अहीं सभक प्रतिष्ठा पर पड़त ई काज सब तो पुरखे पात्रक छियै कि ना
3: माँ
2: की बौआ फरवरी बीत रहल अछि किताब नहि किन लेबे
3: हाँ हाँ
2: पायक जोगाड़ करै छियै किया नहि किन देब अपना बौआ के किताब नहि किन देब तऽ ककरा किन देबै
3: तू फुसिए कहैत छा सब दिन पाइये के जोगाड़ करै छथिन क्लास में सब कत्तो से कत्तो आगू बढ़ गेल आ हम
0: सरोज एम्हर आओ बौआ अहाँ चिंता जुन करी कल चौक पर से आन देब
3: ठीक छै कल नहीं आन देब तखन ने
0: हाँ हाँ आन देब अवश्य आन देब जाओ पढ़ू गे
2: तो की सोचे छियै गे
0: सोचे थी जे ककरा लग जाए जे किछ टका के बंदोबस्त क दिए
2: एकटा बात पूछू
0: की पूछू ने
2: मुंशी बाबू आइ काल्हि दरभंगा नहीं जेथिन ओतो मुकदमा लाग क जात रहे छथिन हुनका दिया एक बेर आर समाज द क देखतियै कि जे
0: ओ तो आइयो भोर में भेटल छला है पूछबो कैलन जे बेटा को कोनो समाज बारी हुआ तक कह हम कल दरभंगा जाए
2: अहाँ किछ कहलिए नहीं
0: की कहती है इन समाज उन जने छत घरक हालत ओ अन्न नहीं घास खाई छत की आहा के एखनो धरि बेटा के ममता जा नहीं रहल है
2: दूर जा एमन कतो लोक बाजे यो हमरा कोना नहीं ममता रहत नौ मास धर अपन सोनित पिया पेट में रखलो ओ केहनो भौ जाए परंच हमर हृदय तो मायक हृदय अछि कि ना कोना नहीं ममता रहत
0: तै लई नहीं छी मुर्रा पठा दैय पढ़ल सुगा भूख भ गेल ये आब ओकरा की समाद देबै जेना भगवानक इच्छा हेतैन समय बिता लेब
2: कने हमरो बात सुनू ने एक बेर हुनका लग जाओ आ कहबन जे बुझा सुझा कर सब गप कहथिन भ सकैये हुनका से कहला से मन बदल जाए आ लाजे पछे
0: निर्लज के लाज होइ छै कि बेस अहाँ जिद करै छी तऽ हम जाइ छी
2: हे हुनका लग नहीं सब गप बाजि देबै झपले तोपल कहबन
0: से तो आब हम न बुझबै अहाँ हमरा बुझबै छी तऽ हम आब जाइ छी
2: बेस

0: चाह बनाओ। मंशी कका आयला है।
1: हम अखन कतौ नहीं जाए। यो हे देखियो ने, देखियो देखियो टीवी में कतेक सुंदर डांस दऽ रहल छै।
0: एको बिसिया ज्ञान नहीं अही।
1: मार बाहिन धब क कतौ कहां से के आबि क माथ पर बैठा जाइए। ए यो रैकियो में अही ठम रहथिन की?
0: ई बात सब पूछ वाला छै। एतेक अबेर क एलखिन है तऽ फिर कतौ जेथिन?
1: हे भगवान, आब एतेक गोटाक भानस कोना करब हम। मर जाएब हम एहि घर में। भगवान और दो कतेक टा दऽ देलन है हमरा से नहीं चाहिए।
0: अच्छा अच्छा भेल भेल, चाह बनाओ आ भ जाए तो कने कहब। काका गाम घरक हाल चाल सबटा ठीक छै ने?
2: तो अपन हाल चाल कह। गाम घरक कोन हाल चाल? सब ठीके छै।
0: हाँ, अहाँ लोकनिक आशीर्वाद से सब ठीक ठाक छै। मुदा गाम पर सब निके नाच छै ने?
2: हाँ सब ठीके छै।
0: एना किया बजलो?
2: कोना बाजू, कहलिया तो सब ठीक है।
0: लिया चाह पी लिया। अरे गप सब तकर बाद हेवे करते। एहि बेर उपजा बारी दस सुनलिए जे?
2: हाँ हो, एहन तो कहियो देखने नहीं रही। लोक अन्न अन्न के मर जात।
0: हाँ सह सुनलिए। बाबूजी कोनो समादो कहलन?
2: हो समाद तो एक ढाकी कहलथुन, मुदा ओ जे कहथुन से तो की नहीं जने छ?
0: हाँ से तो जनते छी, मुदा की करिए। अहाँ तो जनते छी हमर सभक हालत। सुखैल दरमाहा पर की करू। ताहू में एहि मास में एकटा टीवी आ फ्रिज लऽ लेलिए, तैं रुपया नहीं पठा सकलियन। दिक्कत तो हेवे करते। कहबन जे कोना कहू कह कोनो तरह समय काट लेता। काका अगला फसिल नीक छै कि नहीं?
2: हाँ अखन तो छै, मुदा लोक अगला फसिल तक बाँचत तखन कि नहीं?
0: से तो ठीक है। बड़ अघोर काल बीत रहल छै। सोचने रही जे कम से कम 50 टाका पैंच ल क पठा देतियन, मुदा आइ काल्हि तक क्यो ककरो नहीं पैंच दै छै।
2: हाँ से गप तो छै के, मुदा हो जखन तोरा सब सन कमौआ सब के क्यों एकटा पाई देनिहार नहीं छ, तखन गृहस्थ के की हालत हेतै एक से सोचला ह।
0: अच्छा काका, अहाँ के जो परमेश्वरा वाला केस छल तकर की भेले?
2: ओकरे आई तारीख छली है, अखन की हेतै? कोर्ट कचहरीक बात बुझल नहीं छ, तखन देखक त की होई छैक।
0: बाबूजी कोनो खास समादो कहलन है?
2: हो बाबूजीक समाद आब हम की सुनेबा तोरा? तो अपने समाद ततेक सुना देला।
0: से की?
2: नहीं किछ, सह कहलिया। हमरा जे बुझवाक छल से बुझलो, आब बुझवा में कोनो भांगट थोड़बे अछि।
0: नहीं नहीं स्पष्ट कहू ने।
2: स्पष्ट की कहू, ककरा कहू? हो लोकनि बहुत बेसी कष्ट में छथि। साँझक साँझ बीत रहल छनि,

0: संध्या काल हमरा कहो आयल छला जे अहां दरभंगा जात तो मनोज सं निश्चित रूप सं भेट क ओकरा एही ठामक सब गप कहबेक। मुदा हाय रे ईश्वर, जखन गाम पर सं निकल गेल रही भोर में तो मरना कहलक जे हुनका हार्ट अटैक भ गेलन। घबरेबाक बात नहीं, अखन तो ठीके छै, दवाई दारू चल रहल छन।
1: तेसर बेर हार्ट अटैक, तखन तो एक मिनट काका अबै छी। लक्ष्मी, अंध्याय भ गेल।
2: की भेल?
1: बाबूजी के तेसर बेर हार्ट अटैक भ गेलन।
2: तेसर बेर हार्ट अटैक?
1: लक्ष्मी तुरंत गाम चलू, जल्दी करू।
2: मुदा एना धड़फड़ में कोना की करबे?
1: लक्ष्मी जो बाबूजी के किछ भ गेलन तो
2: एते कतु लोक अबते? ये बूढ़ छलखी, हुनका सब लेल कतु एतेक?
1: लक्ष्मी ई गप अहाँ बाज रहल छी? काका हम सब अखने गाम जयबाक तैयारी कऽ रहल छी।
0: की विचार? उत्तम विचार, बस तऽ आब निकल गेल हेतै मुदा ट्रेन छैक
1: तऽ हमरा सबके तैयार भ जयबाक चाही ने।
0: हाँ हाँ, विलम्ब करबाक काज नहि,

0: डॉक्टर साहब की हालत छन?
1: बेसी चिंता करबा काज नहीं, परंच तेसर अटैक छन ते किछ कहब कठिन। ओना हम ई दवाई लिख दे छी, जब तुरंते ही पल जाए तो ठीक भ जेबाक चाही।
0: कतेक ई दवाई हेतै?
1: दवाई तो थोड़े महग छै, लगभग 500 टका तो चाही।
0: 500? हे भगवान, आब कोन उपाय करबै, ककरा कहबै?
1: बेसी चिंतित होबाक काज नै छै। चौक पर ककरो पठैयौ, छोटू बाबू के हमर नाम कहतै, ओ दवाई दऽ देथिन। दहे कने जल्दी में।
0: सरोज, हाँ मैं ककरो से साइकिल मांगि कऽ फुर्ती में दवाई लेने आबुआ। अच्छा जाइ छी। हिनका एना किया भऽ गेलनि डॉक्टर साहब?
1: हिनका हार्ट डिजीज छनि कि नहि? एहि बीच में बुझाइत अछि जेना बेसी मानसिक तनाव रहलनि अछि। हार्ट डिजीज वाला के बेसी चिंतित नहि रहबाक चाही।
0: चिंता तऽ जेना नहि यऽ बुझू, आखिर करबो की करथिन? भगवान एकटा बेटो देलथिन, लेकिन
1: एतना झुनका नहि, नहि तऽ अनर्थ भऽ जाय।
0: कानूनी तऽ की करू, कपार पर कन्यादान, सरोजक पढ़ाई लिखाई, आप परिवारक भरण पोखन के करते रहो दई।
1: हिनका हमर गप रहल छथि, बहुत विलम्ब भऽ रहलैए। आप पेशेंट के बचाय मुश्किल सन लागि रहल अछि। के सरोज, की भेल?
2: छोटू बाबू के दुकान बंद छले आ दोसर दुकान वाला उधारी नहीं देलक, लात कर लेलक जे दवाइये नहीं है।
0: तखन आप कौन उपाय कर देख डॉक्टर साहब?
1: काकी, आप दवाई कोनो प्रयोजन नहीं, अब आगे काज देख सकते हो।

बाबा बाबूजी बाबूजी लक्ष्मी बाबूजी माँ माँ हमरा माफ कर दिया माँ हमरा बात की के माफ कर दिया बउआ हमरा अपन पापी वसुंधरा पर दोसर क्यों नहीं।

0: संतान रहलो संता हमर कसर एते नीक जे बाबूजी के दाह संस्कार तक नहीं कर सकलो।
1: भाना करी छे जावत काल दे जीवे छला खोज पुछाई तक नहीं पार लगे छले। अन्य अन्य के मर गला बेचारे अखन देखुने नाटक लगे यजना केहन पितृ भक्त राम और श्रवण कुमार चैत अखन की भला जावत काल ए गुरु आइन कृपा रहत एना है। विचार तो होते नहीं इनका सबक इलवाइश में देखू दरभंगा में और गांव पर माए बाप अन्न दवाई दारू खाते मरे छन कुल अहंकार कुल कलंक नहीं सब नहीं
2: कौन करा छी आक्रोश माए हृदय तो गंगा

मैथिली नाटक गुरुआइन अभी आप सुन रहे थे। लेखक फूलचंद्र झा प्रवीण और निर्देशक सीताराम शर्मा थे। कलाकार थे नित्यानंद झा, मीरा झा, अरुण कुमार झा और कल्याणी कुमारी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आप हमारे कार्यक्रमों को रेडियो सेट के अलावा अपने मोबाइल फोन पर भी सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से, कभी भी कहीं भी। आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी दरभंगा।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी। एक ही क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।

0: भी समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।
1: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में श्री मोदी ने निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
2: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों

0: सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूरी पर यह दुर्घटना हुई। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। FIH हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विवरण में। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर होगा 1:15 पर। प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरें आप सुनते हैं हमारे पटना केंद्र से दोपहर 2:05 पर। रोजगार सूचना का प्रसारण समय होता है 2:10 पर। दोपहर समाचार आप सुनते हैं 2:15 पर। फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे आप 2:30 पर और कुछ विद्यापति गीत हम आपको सुनवाएंगे इस सभा में 3:00। ये थी जानकारी हमारे इस सभा के कार्यक्रमों की। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5:00 की जाती है। आज आप सुनेंगे कुछ गैर फिल्मी गीत और गजलें शाम 5:00 और कुछ फिल्मी गीत और गजल शाम 5:40 पर। शाम 6:10 पर आप सुनते हैं विद्यापति गीत। 6:25 पर मैथिली संवाद। 6:30 के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कार्यक्रम गुनगुनाइत मन शाम 6:30 पर और इसी कार्यक्रम में एक प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल भी आपको सुनवाएंगे। किसान श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम होता है खेती गृहस्थी शाम 7:00। जिले की हलचल के साथ प्रादेशिक समाचार अब सुनते हैं शाम 7:30 पर। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत रात्रि 8:15 पर।

समाचार संध्या आप सुनते हैं रात्रि 8:45 पर, 9:00 न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू खबरें। रात्रि 9:30 पर आनंद ले सकेंगे आप कुछ फिल्मी गीतों का। और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा।

रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे, 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। सभा की समाप्ति रात्रि 11:10 पर की जाएगी। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। मैं आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी कविता। स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का। उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और इस समय इंतज़ार कर रहे होंगे अपने कार्यक्रम का। तो हाजिर हूं मैं ढेर सारी चिट्ठियों और आपके पसंद किए हुए गीतों के साथ। कार्यक्रम का ये पहला पत्र शामिल कर रहे हैं हम, जो आया है हमारे पास रामपट्टी गौसनगर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं शुभ नारायण महतो, राजा बाबू, राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो, मनोज कुमार सिंह और मंजीत सिंह। इनामत टोला भगवतीपुर पंचायत से आप हैं नूतन सहनी, कंचन सहनी, बबीता सहनी, कोमल सहनी, नव्या सहनी, सुधा सहनी, विभा सहनी, ज्योति सहनी, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी, संतोष कुमार सहनी, रासो देवी, रिंकू देवी, रुचि कुमारी और एसके सहनी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म काजल का ये गीत आशा भोसले के स्वर में।

अगला अनुरोध आया है हमारे पास कुशेश्वर स्थान सलमगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद ईशा, सबीना नाज, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद आफ्ताब, सगुफ्ता प्रवीण, शाहिन परवीन, नेमत परवीन, रौनक परवीन, सुमैया फ़ातमा, सना आफरीन, सादिया नूर, नवासा, आरिश बाबू तथा भाई जग नारायण मुखिया। ये सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अनुपमा का गीत, जिसे लिखा है कैफ़ी आज़मी ने और संगीत दिया है हेमंत कुमार ने। इसी गीत के लिए एक और अनुरोध आया है हमारे पास गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं आप रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं आप दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। लीजिए आप सबों के अनुरोध पर ये गीत फिल्म अनुपमा से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। ये अगला अनुरोध आया है हमारे पास नाहर मंटोला से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद सलमान। छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

ये पत्र आया है हमारे पास झंझारपुर लंगरा चौक से। आप लिखने वाले हैं हरिराम पासवान, जयशंकर पासवान, काजल कुमारी और रानी कुमारी, ये सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है आस का पंछी।

अगला अनुरोध आया है हमारे पास शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से एक और पत्र आया है हमारे पास दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। ये सुनना चाहते हैं फिल्म अनजाना का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के लिए एक और अनुरोध आया है हमारे पास। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाडोदे, चंद्र प्रभा वाडोदे, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये पत्र आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। पटेल नगर मलोट पंजाब से आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। लीजिए सुनिए आप सबों के अनुरोध पर फिल्म अनजाना का ये गीत।

अगला अनुरोध आया है हमारे पास जतुका किशनपुर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, सवाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से आप हैं फिरोज़ आलम, नाज प्रवीण, अर्श बाबू और अरसलान बाबू। आप सुनना चाहते हैं फिल्म मेरा साया का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खान और संगीतकार मदन मोहन। इसी गीत के लिए एक और पत्र आया है हमारे पास, यह है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से। मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, कलेर बिहार से आप हैं बेगम निकहत परवीन, सदफ आरजू। इंदिरा विहार रायगढ़ से आप हैं अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वली उल्लाह अंसारी। राजनांद गांव से आप हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिवा तिवारी। आप सबों के अनुरोध पर पेशे नज़र है फिल्म मेरा साया का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म राखी से। गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत निर्देशन रवि का। और इस गीत के लिए अनुरोध आया है हमारे पास गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मिका बिरक। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से आप हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य। आदर्श नगर मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से आप हैं भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली सकरा से आप हैं जयंत कुमार बैरागी। महादेव घाट अमलेश्वर से ये पत्र आया है हमारे पास, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रयांश ठाकुर। लीजिए सब लोग सुनिए फिल्म राखी का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

कार्यक्रम आपके अनुरोध पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। इस कार्यक्रम के लिए आप अपने पत्र भेज सकते हैं हमें। हमारा पता है कार्यक्रम आपके अनुरोध पर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा और हमारा पिन कोड है 846004। तो हमें पत्र लिखिए यदि आप सुनना चाहते हैं कोई भी गीत अपने नाम और पते के साथ, गीत के बोल, फिल्म का नाम, कलाकार का नाम लिखकर हमें भेजिए। हम आपके पत्रों को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे और आपके फरमाइश किए हुए गीतों को भी ज़रूर सुनाएंगे। और इस समय ये पत्र है मेरे हाथ में जो आया है हमारे पास लाल पोखर दरभंगा से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद कलीम दीवाना, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अमन, मोहम्मद शरफराज, मोहम्मद अमाज, शोनी बेगम, खुशबू परवीन, शाइस्ता परवीन, शमा परवीन, डॉली परवीन और मेहरा परवीन। ये सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अभिमान का ये गीत।

आर्य अभयनंद, आर्य परमानंद, आर्य पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। इन्होंने कहा है कि आप हमारी फरमाइश को किसी भी फिल्म के साथ पूरी करें, तो हम आपको शामिल कर रहे हैं फिल्म अभिमान के इस खूबसूरत गीत में।

जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत निर्देशन सचिन देव बर्मन का। इसी गीत के लिए एक और अनुरोध आया है हमारे पास कुटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद।

और ये है इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। फिल्म हमराज से महेंद्र कपूर की आवाज़ में अनुरोध करने वाले हमारे श्रोता हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिमा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से आप हैं वली उल्लाह फ़कीर, डब्लू उल्लाह फ़कीर, परवीन आसमा फ़कीर, बुलंदशहर से आप हैं बद्रू वली अंसारी, फ़र्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी, दौलतबाग मुरादाबाद से आप हैं जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी।